0: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, माँ बाप भाई यहां तक कि।
1: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
0: डरता हूं कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और दोबारा चोट खाने की हिम्मत।
1: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.

0: Hey, relax.
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

चाहत से ज्यादा समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

जान मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: बुधवार 15 जुलाई रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। सुप्रभात आप सभी को। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं और समय हुआ है अभी के लिए समाचार का।
3: आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज। आस्था से नमस्कार।
4: नमस्कार, 6 बजे की समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ अहम खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के समाचारों में। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। अब दूसरे सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। इस मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। मॉरिशस में कल फ्रांस का राष्ट्र दिवस मनाया गया। फ्लोरियाल स्थित फ्रांस के राजदूत के सरकारी निवास पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति धर्म गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। इस दौरान दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। राष्ट्र सभा में कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने प्लास्टिक की बोतलों पर 2 रुपये के एक्साइज ड्यूटी को लेकर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को लागू होने वाले इस टैक्स से मिलने वाली आय पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं में उपयोग की जाएगी। साथ ही सरकार ने अगले 10 वर्षों में प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री मॉरिशस के लिए एक रोड मैप तैयार करने की घोषणा की। आज सुबह पेलग्रैन ट्रियानो लिंक रोड का उद्घाटन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सेंट जॉन और M1 मोटरवे पर यातायात का दबाव कम होगा। उधर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ा। अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र में ईरानी ठिकानों पर नए हमले शुरू किए हैं, जबकि ईरान ने बहरीन और जोर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
5: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
4: पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान है कि आज सुबह और दोपहर बाद भी रह रहकर देश के पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर बरसात होगी और ऊंचाइयों पर धुंध भी छाई रहेगी। ऊंचाइयों और हवाई ढलानों पर शाम को भी मौसम कुछ खराब ही रहेगा। रात को ऊंचाइयों पर वर्षा जारी रहेगी। हवा उत्तर उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम

0: 24 से 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम शहरी इलाकों पर 22 से 24, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 7:45, सूर्यास्त 5:46 पर होगा।
1: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
2: चलिए इस नए दिन के साथ, इस नई शुरुआत के साथ हम भी आ चुके हैं आप सभी का साथ देने के लिए रेडियो मॉरिशस पर भोर की बेला। इस प्रोग्राम में सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। बुधवार 15 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6:04 होने को है। नया दिन निकल चुका है और आज के दिन की बात करें तो इस ओर तो दिन बरसाती है, काफ़ी ठंड है, तो आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और अच्छे विचारों के साथ और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आज के इस दिन का आरंभ करिएगा। और सुप्रभात आप सभी को, नए दिन की ढेर सारी मंगल कामनाएं। कहते हैं ना कि एक अच्छा विचार पूरे दिन की दिशा को बदल सकता है। तो चलिए यहाँ पर आप सभी जुड़ चुके हैं सवेरे सवेरे भोर की बेला इस प्रोग्राम में, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज है बुधवार, तो कुछ क्षणों में हम बढ़ेंगे कार्यक्रम सनातन धारा की ओर और उसके बाद जो है चंद खूबसूरत भावगीत आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस पर। 6:30 समय होगा पूरा समाचार का। तो चलिए आज की इस भोर की बेला का आरंभ हम करते हैं सनातन धारा इस कार्यक्रम से, सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी। तो आइए आचार्य जी को हम सुनते हैं।
3: आइए सुनिए श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय ओमकार की उपासना का महत्व। ओम, ओमकार तथा प्रणव आदि ओम के पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए कहा गया ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानी योगिना मोक्षदम कामदम चैव ओंकाराय नमो नमः। परमात्मा का सबसे समीप वती नाम ओम है। ओम परमात्मा का प्रियत नाम है, प्रियतम नाम है। ओम का उच्चारण करने पर परमात्मा प्रसन्न होता है। जिस प्रकार साधारण लोग अपना प्रिय नाम उच्चारण करने पर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी मूर्ति आदि के समान ओम परमात्मा का प्रियतक सिद्ध होता है। इस प्रकार नाम और प्रतीक रूप से ओम परमात्मा की उपासना का उत्तम साधन है। कठोपनिषद में प्रसंग है कि नचिकेता यमराज से कहता है कि धर्म और अधर्म से अतीत कार्य और कारण रूप संपूर्ण जगत से भिन्न तथा तीनों कालों से भिन्न

जिस तत्व को आप जानते हैं उसे आप बतलाइए। यमराज उत्तर देते हैं, संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप जिस पद का लक्षण कराते हैं तथा जिसको चाहने वाला साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। वह ओम ऐसा यह एक अक्षर है, यह ओम ही परमात्मा का स्वरूप है और यही परब्रह्म है तथा इस तत्व को जानकर साधक जिसको चाहता है वही उसको मिल जाता है। ओम का आलंबन श्रेष्ठ तथा परम आलंबन है। इस रहस्य को जानकर साधक ब्रह्मलोक को महिमावती होता है। माडुंग्योन उपनिषद में के अनुसार यह बहुत सुंदर से ओम ऐसा यह अक्षर अविनाशी परमात्मा का वाचक है तथा वह संपूर्ण जगत उसके निकटतम महिमा का लक्ष्य कराने वाला है। भूत जो हो चुका, वर्तमान जो हो रहा तथा भविष्य जो होने वाला है, यह सब का सब जगत ओमकार ही है जो त्रिकाल अतीत है, वह भी ओमकार ही है। परब्रह्म परमात्मा के तीन पद वैशानर विश्व के धारण करने वाला, तेजस प्रकाश का स्वामी, सूत्र आत्मा हिरण्य गर्भ तथा प्रज्ञा सर्वप्रज्ञा स्वरूप प्रज्ञा परब्रह्म के वाचक ओम की कर्मशः तीन मात्राएं अकार अ उकार उ और मकार म है तथा चतुर्थ पद तुरीय मात्र रहित ओमकार है। मुंडक श्रुति मुंडकोपनिषद के पात्र में ओमकार का महत्व सुंदर रूप द्वारा समझाया गया है कि ओम मानो धनुष है, जीव आत्मा मानो बाण है और परब्रह्म परमात्मा ही उसके लक्ष्य है। अर्थात जीवात्मा रूपी बाण को उपासना द्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसको प्रणव रूप में धनुष पर भरी भांति चढ़ा करके परमात्मा रूपी लक्ष्य भेदा जा सकता है। यानी ओम की उपासना से अविनाशी परमात्मा में प्रवेश किया जा सकता है। श्वेताश्वर श्रुति के मंत्र में भी अरणि काष्ठ की उपमा देकर प्रणव की उपासना से परमात्मा को अनुभूति होने का उल्लेख किया है। अपने शरीर को नीचे की अरणि तथा प्रणव को ऊपर की अरणि बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहते से साधक अरणियों में छिपी हुई अग्नि को भांति हृदय में स्थित परम देव परमात्मा को देखता है। प्रश्न उपनिषद 5 प्रश्नों के सत्य काम महर्षि पिपिलाद से ओमकार की उपासना ध्यान करने का फल पूछता है। महर्षि पिपिलाद, ओम इस अक्षर की उसके लक्ष्य भूति पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम के साथ एकता रख करते हुए कहते हैं, यह जो ओम है वह अपने लक्ष्य भूत पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यही पर ब्रह्म है और यही उन पर ब्रह्म से प्रकट हुआ उनका विराट

0: रूप अपर ब्रह्म है। यदि साधक एक मात्रा से युक्त ओम का भली भांति ध्यान करें तो ऋग्वेद की ऋचाएं उसे मनुष्य लोक में पहुंचा देती है। दो मात्र से युक्त ओमकार का ध्यान करने पर साधक तेजोम सूर्य लोक में जाता है तथा वहां से सामवेद के मंत्र साधक को ब्रह्म लोक में पहुंचा देता है और वह यह साधक परम पुरुष पुरुषोत्तम को साक्षात कर लेता है। विवेकशील साधक केवल ओमकार रूप अवलंबन के द्वारा उस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेता है। तृतीय योनि उपनिषद की शिक्षा वलिही के अष्टम अनुवाक में ओम की महिमा का वर्णन किया गया है कि ओम यह परब्रह्म परमात्मा का नाम होने से साक्षात ब्रह्म ही है। यह प्रत्यक्ष दिखाने देने वाला समस्त जगत ओम है, अर्थात ब्रह्मा की स्थूल रूप है। ओम यह अनुमोदन का सूचक है। ओम का उच्चारण करने के ही आचार्य शिष्यों को उपदेश देने प्रारंभ करते हैं। जब भी कोई कार्य या पूजन प्रारंभ होता है तो हमेशा ओम शब्द का सबसे पहले उच्चारण किया जाता है तथा सामवेद का गान करते हैं। यज्ञ करते हुए ऋत्विक ओम इस प्रकार उच्चारण करके तद्विषक मंत्र का पाठ करते हैं। यज्ञ कर्म करने वाला और भी ओम का उच्चारण करके ही मंत्र को उच्चारित करता है। यज्ञ में ब्रह्मा चतुर्थ ऋत्विक ओम का उच्चारण करके ही यज्ञ कर्म करने की अनुमति प्रदान करता है। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी भी अध्ययन से पूर्व ओम का उच्चारण करता है। तैतृय योनि उपनिषद की शिक्षावली के चतुर्थ अनुवाक में भी ओमकार का परमात्मा की निधि बताया गया है। छंदो उपनिषद के अनुसार ओम यह अक्षर उदित्य है। सामवेदीय स्तोत्र विशेषक का नाम उद्गीय है तथा ओमकार उसका अंश है। इसकी उपासना करनी चाहिए। ओम ऐसा उच्चारण करके यज्ञ के उद्गाता उद्गान उच्च स्वर से सामगान करते हैं। जो उपासक उदित्य रूप अक्षर ओम की उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ओम अनुमति सूचक अक्षर है। इस अक्षर ओम से ही ऋग्वेद आदि रूप का कल्याण होता है। इति सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति। इति शुभम।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा। तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा, सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने। इस कार्यक्रम के लिए आचार्य जी को हम धन्यवाद देते हैं।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सवेरे के 6:18 हो रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीबी विलाज दे शातो बनारस, विलाज दे शातो बनारस यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है कि यहाँ पर आज बुधवार 15 जुलाई को

0: आज बुधवार 15 जुलाई को यहाँ पर सवेरे के 9 बजे से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
1: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
0: जी हाँ, कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अपने आप में अच्छा होता है, क्योंकि जिस भी सफ़र की हम शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं जाकर उसका अंत तो होना ही होता है। ज़िंदगी भी ऐसे ही है, ज़िंदगी में जिस भी कार्य को हम करते हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। जिस तरह जन्म के साथ मृत्यु जो है ये निर्धारित है, मतलब के आगमन के साथ समापन निर्धारित है, उसी तरह से आरंभ के साथ अंत भी समापन की ओर हमें ले जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी अंत से हमें डरना नहीं चाहिए, किसी भी समाप्ति से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने आप में अंत एक नई आशा की किरण लेकर आती है कि एक नई शुरुआत होगी। और आज का ये दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक नई उत्साह का प्रतीक है, एक नई उम्मीद का प्रतीक है। तो चलिए आशा करते हैं जो दिन आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए और पूरे दिन में जो है जिस भी कार्य को आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ जो है इस सुंदर गीत के साथ हम भोर की बेला इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। ये कौन चित्रकार है, अनुप जी की आवाज़ में, अनुप जलोटा जी की आवाज़ में आप सभी के नाम

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: चलिए, ये वही चित्रकार है जिन्होंने इस सुंदर संसार को रचा है, इस सुंदर संसार की रचना की है, हमें ये जीवन दिया है, तो उस परमपिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। कहते हैं ना कि हर एक दिन का आरंभ एक कृतज्ञ हृदय से होना चाहिए, क्योंकि जिस हृदय में कृतज्ञता नहीं उसे जो भी मिले वो कम ही लगता है। तो जो कुछ मिला है बस ईश्वर की कृपा से बहुत मिला है, और ईश्वर ही के दिखाए हुए मार्ग पर हम चलने का प्रयास करें तो जीवन में इससे सुंदर और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए, भोर की बेला ऐसा कार्यक्रम के हम जो है लगभग अंत तक आ गए हैं। सवेरे के 6 बजे से आप हमारे साथ साथ हैं, आगे भी साथ ऐसे ही देते रहिएगा। 6:30 बजे जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर, और फिर 6:30 बजे के समाचारों के बाद 7 बजे के उस पार शुरुआत होगी सुबह का नजराना इस कार्यक्रम की, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो चले, नए दिन की ढेर सारी मंगल कामनाएं एक बार फिर से आप सभी को। नया दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, सुख शांति एवं समृद्धि लेकर आए, और सफलता ही सफलता आपके साथ हो।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह की ठीक 6:30 बज रही है। बुधवार 15 जुलाई की सुबह 6:30 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली, अब उसकी नजर विश्व चैंपियन बनने पर है। दूसरे सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। इस मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। मॉरिशस में फ्रांस का राष्ट्र दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया। दोनों देशों के मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। जॉन मिक मार्टिंगेल की मौत से जुड़ी न्यायिक जांच के तहत बोबासैं केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया गया। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने प्लास्टिक की बोतलों पर लगाए जाने वाले 2 रुपए के एक्साइज ड्यूटी को लेकर स्पष्टीकरण दिया। सरकार ने प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री मॉरिशस के लिए 10 वर्षीय रोडमैप की भी घोषणा की। पेगांत्रियानों लिंक रोड का आज उद्घाटन। सरकार का कहना है कि इस नई सड़क से यातायात सुगम होगा और जाम की कमी आएगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा। नए सैन्य हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही प्रभावित। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। विश्व कप फाइनल का टिकट अब स्पेन के नाम हो गया है। डालास में खेले गए सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर शानदार अंदाज में अपनी दावेदारी पेश की। पूरे मुकाबले में स्पेन ने गेंद पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा। मजबूत रक्षा और तेज आक्रमण के दम पर फ्रांस को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। अब सबकी नजरें फाइनल पर टिकी हुई हैं, जहां स्पेन विश्व चैंपियन बनने से सिर्फ एक जीत दूर है। तो विश्व कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाली मुकाबले को लेकर उत्साह चरम पर। फुटबॉल प्रेमी इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समर्थकों से उनकी राय ली गई है, किस टीम की होगी जीत, क्या रहेगा स्कोर और किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। आइए जानते हैं प्रशंसकों की राय।

0: Les petits, DN, à toi, tout le monde était, tout, mon frère.
1: On était, écoutez, parce que nous sommes la première ligue dans Maurice, comme d'habitude. Après, mon équipe Manchester United, mais il y a beaucoup de fans, l'équipe qui supporte la ligue Angleterre. Mais à travers ça, nous supportons l'Angleterre. Ben, vous pensez, du point de football DN, on travaille en Angleterre. À cause du travail, un peu tough, quand l'équipe est dans le football là, ben, on sait quoi dire, nous, il y a l'ambition de football. Nous là, et nous comptons que le football. Ben, nous pas que tout match, mais.
2: Mon pays supporte l'Angleterre. Quand le man joue là, on comprend le football. Après 90 minutes de prolongation, après espérons l'Angleterre.
3: Moi, anglais, mais c'est moi en Zika qui a gagné. Et après, sur 20 jours, sur 20 expériences, j'oublie beaucoup.
4: Aujourd'hui, c'est la guerre pour ça. Que l'Angleterre, si peut faire bien, Kane, tout ça là. Mais c'est moi maman goût de Lionel Messi parce que ça se là pas pour retrouver dans le lifetime en cours là. C'est même pas finir. Comment il finit là, football fini là. C'est moi un amant entre man. Ben Mbappé, Haaland, Lanimaria, Lamine Yamal. Mais c'est moi Lionel Messi là, lui, quoi, ma camarade, un cousin.
5: मोशेस मिकल फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया। इस अवसर पर फ्लोरियल स्थित फ्रांस के राजदूत के सरकारी निवास पर एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति धरम गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, सरकार के सदस्य, राजनयिक समुदाय तथा मोशेस में रह रहे फ्रांसीसी समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अपने संबोधन में फ्रांस के राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन ने मोशेस और फ्रांस के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों की मॉरिशस यात्रा और इस वर्ष फ्रांस अफ्रीका समिट में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की भागीदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री को 10 और 11 नवंबर को फ्रांस में आयोजित होने वाले पेरिस पीस फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। सुनते हैं फ्रांस के राजदूत को।
6: Cette visite a donné à voir ce qui constitue à mes yeux la force singulière de la relation entre nos deux pays, l'amitié et la confiance. Nos deux pays savent que, face aux défis du climat, des océans, de la sécurité ou du développement, aucune nation ne peut prétendre agir seule. L'avenir nous donnera, j'en suis certain, de nouvelles occasions d'avancer ensemble, Monsieur le Premier ministre. Et vous êtes d'ailleurs invité à participer au mois de novembre prochain au Forum de Paris pour la paix. Dans la période que nous traversons, le mot « paix » pourrait presque sembler fragile ou désuet. Je crois au contraire qu'il faut le prononcer avec force. La paix n'est pas la naïveté, elle n'est pas le renoncement. Elle suppose de la volonté, du courage et de la constance. Elle suppose surtout que des États qui partagent une même conception du dialogue et du respect du droit, continuent à se mobiliser ensemble.
5: जॉन मिक माउटिंगेल की मौत से जुड़े न्यायिक जांच के तहत कल बोबासिन केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया गया। जिला मैजिस्ट्रेट ड्यूनी विलियन और डीपीपी के प्रतिनिधियों ने उस सेल का दौरा किया जहां 8 सितंबर 2024 को जॉन मिक माउटिंगेल की मौत हुई थी। इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण स्थानों जिनमें कंट्रोल रूम भी शामिल हैं का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि जॉन मिक माउटिंगेल को 29 अक्टूबर 2022 को एसएसओ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। एक यूक्रेनी यात्री मरिया पेरेसुल्किना ने उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचान की थी जिसने उसे 44 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य के तरल मादक पदार्थ से भरी दो बोतलें दी थी। इस न्यायिक जांच की अगली सुनवाई 21 जुलाई को रोजिल जिला अदालत में होगी। राष्ट्रसभा में कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने प्लास्टिक की बोतलों पर लगाए जाने वाले 2 रुपए के एक्साइज ड्यूटी को लेकर कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए। सांसद चेतन बाबूलाल के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इस टैक्स से 2026-2027 के दौरान लगभग 135 मिलियन रुपए की आय होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 38 प्रकार की वस्तुओं को इस टैक्स से छूट मिलेगी। इस समय डेयरी प्रोडक्ट्स, शिशुओं का भोजन, कुकिंग ऑयल, बटर, शहद और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस टैक्स से मिलने वाली राशि कंसोलिडेटेड फंड में जमा होगी, किसी अलग पर्यावरण फंड में नहीं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2.5 बिलियन रुपए क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी फंड में ट्रांसफर किए जाएंगे जबकि 3.5 बिलियन रुपए विभिन्न मंत्रालयों की पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए

0: दी जाएंगी।
1: प्रधानमंत्री ने सांसद बाबूलाल के एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया कि प्लास्टिक की बोतलों पर 2 रुपए का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी 38 श्रेणियों के उत्पादों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इसका आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है और फिलहाल इनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
2: The House may wish to note that there's already a climate and sustainability fund to support national initiatives to protect, manage and invest and as well restore our natural ecosystems and combat the effects of climate change. For the financial year 2026-2027, government will transfer 2.5 billion rupees from the consolidated fund to the climate and sustainability fund. There is presently a scheme operated by the Mauritius Revenue Authority which provides for a financial incentive to be granted to exporters and local recyclers of waste PET bottles to encourage the removal of waste plastic bottles from the waste stream. Under this scheme, exporters of waste PET bottles are refunded an amount of 15 rupees per kilogram of waste PET bottles exported and local recyclers an amount of 30 rupees per kilogram of waste PET bottle which are recycled locally. Given that the excise duty will be extended to cover plastic bottles, the refund scheme will also be extended to cover waste public plastic bottles to be exported or recycled, whether they are subject to excise duty or not.
1: सांसद दोहयाऊ ने नफरत भरी भाषणों की निगरानी और रोकथाम विशेष रूप से ऑनलाइन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। प्रधानमंत्री ने इस विरासत को संरक्षित करने और लागू कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
2: In a bid to oppress the previous government, close access to social media and slowed internet debit. When we came to power, we vowed that never again should we allow our shared peace to be corroded by totalitarian minds. We condemned any attempt to muffle expression. This is an imperative in a multicultural and pluralistic democratic society. Madam Speaker, I shall be ruthless against anyone, and I repeat, against anyone who jeopardizes national unity and social cohesion. Government remains resolute in its determination to preserve the unity of our nation and to assure that Mauritius continues to be peaceful, inclusive, and a harmonious society. Any new measure must remain proportionate and consistent with the constitutional protection for freedom of expression.
1: सांसद झमन का प्रश्न फरवरी 2025 में तेहूज में 114 मिलियन रुपए की बरामदगी की जांच से संबंधित था। प्रधानमंत्री ने गिरफ्तारियों का घटनाक्रम प्रस्तुत किया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी भी शामिल है।
3: Can the Honorable Prime Minister inform the House whether the FCC is enough equipped, has a required technical expertise and manpower to carry such cases, as there is a long list of cases pending at the level of the FCC?
2: That is actually the case, and I think I must accept what the Honourable Member is saying, that we need experts to deal with all those things. They're not trained enough for that. That is why we have people from former Scotland Yard officers who are actually helping them, assisting them in the inquiry.
1: डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने सांसद का जैन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान 6 नई विदेशी एयरलाइनों ने मॉरिशस के लिए कमर्शियल उड़ानें संचालित करने हेतु आवेदन किया है।
2: गवर्नमेंट इज पर्सुइंग ए पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ऑफ एयर एक्सेस थ्रू बायलैटरल एग्रीमेंट्स। दिस अप्रोच एम्स टू एनहांस एयर कनेक्टिविटी व्हाइल एंश्योरिंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंटिन्यूड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आवर नेशनल carrier that is Air Mauritius Limited. Madam Speaker, air connectivity is extremely important for the development of our country. Any decision for opening up our airspace to any airline would be taken after a thorough assessment has been made as to the benefits that may accrue to Mauritius from such an agreement.
1: सांसद अंकुचिल का प्रश्न ट्रियानो के सबवे में कैमरे लगाने के बारे में था। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि सेफ सिटी प्रणाली के कैमरे सबवे के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए मॉरिशस टेलीकॉम नई तकनीकी विशिष्टताओं पर काम कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की कि एमओरए की रिफंड योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब ये केवल पेट बोतलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि सभी प्लास्टिक की बोतलों पर लागू होगी। सरकार ने अगले 10 वर्षों में प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री मॉरिशस के लिए एक रोड मैप तैयार करने

0: की भी घोषणा की। क्या भविष्य में मेट्रो एक्सप्रेस से सीधे हवाई अड्डे तक पहुंचना संभव होगा? फिलहाल इसका जवाब नहीं है। राज्यसभा में भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कहा कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में मेट्रो एक्सप्रेस को हवाई अड्डे तक बढ़ाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि 2023 के अनुमान के अनुसार गेजुई से कुद्दो तक दूसरी लाइन बढ़ाने की लागत लगभग 1.7 बिलियन रुपये प्रति किलोमीटर होगी। हालांकि मंत्री ने कहा कि भविष्य में प्लेन मान्यों तक मेट्रो सेवा शुरू करने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि क्रॉस रेल इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इस परियोजना से लगभग 1.7 बिलियन रुपए के आर्थिक लाभ का उल्लेख किया गया है। इसी के मद्देनजर भूमि परिवहन मंत्रालय अगले 20 वर्षों के लैंड ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी किया करेगा। मंत्री उस्मान मोहम्मद को सुनते हैं सुमेर अकबर अली।
1: One day, should the financial situation of the country allows for it,
2: एक दिन जब देश की आर्थिक हालत में सुधार आएगा तो सरकार मेट्रो को हवाई अड्डे तक विस्तार देने के विचार को मद्देनजर रख सकती है। ये एक उचित मार्ग होगा क्योंकि ज्यादातर मुल्कों में लाइट रेल सिस्टम हवाई अड्डे से जुड़ी होती है। दुख की बात तो ये है कि पिछली सरकार ने इसे प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि स्पष्ट वजहों से कुद्दो और सहपिया तक मेट्रो ले जाने की परियोजना बेहतर सूझी। मेरे मंत्रालय ने 20 सालों के लिए लैंड ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय बिडिंग कार्रवाई की लॉन्चिंग की है ताकि सलाहकारी सेवाएं हों। UNDP का सहयोग भी मिलेगा।
1: including to the airport.
0: इसी के मद्देनजर भूमि परिवहन मंत्रालय 20 वर्षों के लैंड ट्रांसपोर्ट प्लान के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी करेगा। वर्तमान में मेट्रो एक्सप्रेस के पास दो लाइनों पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है। इसकी 18 ट्रेनों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 47,000 यात्री सफर करते हैं। राज्यसभा में कल मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल पर भी बहसें शुरू हुई। भूमि एवं आवास मंत्री शकील मोहम्मद द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज की स्थापना करना है। ये नई इकाई देश के समुद्री क्षेत्रों का सर्वेक्षण और आधिकारिक जानकारी तैयार करने का काम करेगी। मंत्री ने कहा कि ये कानून मॉरिशस की समुद्री संप्रभुता को मजबूत करेगा। उन्होंने शागोस पर देश के अधिकार और समुद्री संसाधनों के आर्थिक महत्व का भी उल्लेख किया। मंत्री शकील मोहम्मद को सुनते हैं गीता सुनारन।
1: Three converging realities have made this bill urgent. First, legal.
3: कई वास्तविकताओं के आधार पर ये विधेयक जरूरी है। पहला, कानूनी स्तर पर मॉरिशस अनक्लॉस और सुलास के 5वें अध्याय के 9वें रेगुलेशन के प्रति कटिबद्ध हैं, जिससे हर एक सरकार को हाइड्रोग्राफिक डेटा एकत्र करना चाहिए और समुद्री जानकारियों के प्रकाशन के लिए भी हमने इस कटिबद्धता का पालन किया है। ये विधेयक इसे कानून में बदलता है।
1: La deuxième réalité, madame la présidente, est d'ordre géographique. Elle est décisive.
3: दूसरी वास्तविकता भौगोलिक है और निर्णायक। 22 मई 2025 को मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम ने शागोस द्वीप समूह पर समझौता तय किया था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने पूरे द्वीप समूह पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता को मान्यता दी थी। कॉन्टिनेंटल प्लेट के सीमा निर्धारण आयोग को ये सुपुर्द किया गया था, जो रोड्रिग्स इलाके से संबंधित था, करीब 183 वर्ग किलोमीटर पर, और साझा संचालन क्षेत्र जो सेशल्स के साथ और मास्कारेंस पर भी आधारित था।
1: L'espace maritime placé sous notre souveraineté figure désormais parmi les plus vastes de tous les petits états insulaires de l'océan Indien.
3: हमारी प्रभुसत्ता में आने वाले समुद्री क्षेत्र हिंद महासागर में सभी छोटे टापुओं में शामिल हैं, जिसका माप नहीं लिया गया है, उस पर संचालन नहीं कर सकते, जिसकी मैपिंग नहीं की गई है, उसकी प्रतिरक्षा नहीं कर सकते। तीसरी वास्तविकता है अर्थव्यवस्था। 4 सबमरीन टेलीकम्युनिकेशंस केबल हमारी अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक का 98% से ज्यादा भाग इस पर आधारित हैं। पोर्टविस हमारे विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ज्यादातर भाग पर काम करता है।
1: Land on our shores carrying more than 98% of our international data traffic. Port Louis handles the vast majority of our

0: मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश इस नई सड़क का उद्घाटन करेंगे। इससे सेंट जॉन और M1 मोटरवे पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद। इसके बाद मंत्री फिकोफ्लैक बाईपास परियोजना का भी निरीक्षण करेंगे। लगभग 4.8 किलोमीटर लंबी ये सड़क जाविये कुपियेफो से जोड़ेगी। इसमें कस्कावेल और बुसोंज के बीच पालमा रोड B2 तक एक नया मार्ग भी शामिल होगा। इस सड़क परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1 बिलियन रुपए है। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की अपील अदालत में आज लंदन में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इसको लेकर ब्रिटेन की लेबर सरकार ने 31 मार्च के उस फैसले को रद्द करने की अपील की है, जिसमें मिसले मौदागैं सहित 6 श्रगस मूल के लोगों को पेरोस बानुस में रहने की अनुमति दी गई थी। ये सभी 16 जनवरी फरवरी को इल्जिकोएं पहुंचे थे। ब्रिटेन का कहना है कि उन्हें वहां स्थायी रूप से रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वहीं संबंधित श्रगस मूल के लोगों का कहना है कि यह फैसला उनके पैतृक द्वीपों पर लौटने के अधिकार की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सुनवाई सार्वजनिक होगी और मॉरिशस के समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी। मॉरिशस में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस मॉरिशस और एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स ने एबेन में क्लब डेज एंटरप्रेन्योर डे इकोनॉमी सर्कुलर का एक नया सत्र आयोजित किया। इस दौरान दो प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की गई। पहली परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में खतरनाक कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए है, जिसमें मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव्स और कोमोरोस शामिल हैं। दूसरी परियोजना सर्क्यू हब भवन और निर्माण सेक्टर को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में सहयोग करेगी। सुनते हैं अमोजिन ओदो ओदो रोने को।
1: Jeff Island's project. La finalité sera d'avoir des consultations.
2: इस परियोजना से हम सलाह मशवरे कर पाएंगे ताकि हम एक रणनीति विकसित कर सकें। इस तरह हम खतरनाक कचरों का संचालन करना भी जानेंगे। हम इन्हें बाहर तो नहीं भेज सकते, स्थानीय स्तर पर भी इनका संचालन करना मुश्किल है। इसके अलावा मॉरिशस में सर्कुलर इकोनॉमी पर एक रोड मैप पेश किया जाएगा। सर्क्यू हब परियोजना के तहत हम निर्माण क्षेत्र के सभी साझेदारों और ऑपरेटरों को आमंत्रित करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग होगी, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का समर्थन भी मिलेगा।
0: इस अवसर पर एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैमुअल मोजॉन ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी के विकास में सबसे बड़ी चुनौती एक प्रभावी कानूनी ढांचे की कमी है। उनके अनुसार कचरे की छटाई और रिसाइकलिंग उद्योगों के लिए प्रोत्साहन जैसी कई पहले से मौजूद हैं, लेकिन उन्हें और मजबूत नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। उन्हें सुनते हैं, विवरण है सुमेरा अकबर अली का।
2: इस परियोजना को लागू करने के लिए उद्योगों के बीच सहयोग होना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी का मकसद एक नए कारोबार की शुरुआत करना भी है। छोटे उद्योग अपने अपने हिसाब से योगदान दे रहे हैं, लेकिन असल में एक कानूनी ढांचे की जरूरत है ताकि सब एक ही दिशा में एक ही मंजिल की तरफ बढ़ें। हम अच्छी राह पर हैं। कई रोड मैप को तैयार किया जा रहा है सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, प्लास्टिक के लिए और दूसरे पहलुओं के लिए भी।
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगाने की अपनी घोषणा वापस ले ली है और उसकी जगह खाड़ी देशों के साथ बड़े व्यापार और निवेश समझौतों की बात कही। इसी बीच अमेरिकी सेना ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में जहाजों की सुरक्षा के नाम पर ईरान के ठिकानों पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। जवाब में ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। लगातार बढ़ते तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही में भारी कमी आई है, जिससे वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ रहा है। चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रही अस्थिर बादलों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान और दोपहर बाद भी देश के पूर्व और सेंट्रल प्लाटो पर रह रहकर बरसात होगी और ऊंचाइयों पर धुंध छाई रहेगी। ऊंचाइयों पर और हवाई ढलानों पर मौसम कुछ खराब ही रहेगा दिन के दौरान। रात को ऊंचाइयों पर बरसात जारी रहेगी। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी।

रहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के बड़े समुद्र खराब रहेगा, समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम शहरी इलाकों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 7:45 बजे, सूर्यास्त 5:46 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजन, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। धनुष लेन लोशेत्या रूज में 36 साल के 36 ईयर्स ओल्ड के धनंजय मन बुधवा की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राजीव मेकानिसिया के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उन्हीं के मकान त्यागूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। गानम रोड वाकवा में 25 साल की 25 ईयर्स ओल्ड की पुरमाले वीरप्पन नारायणन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उन्हीं के मकान से वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो टुडे एट 3 PM। ओयेता वाकवा में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की पुष्पा गोकानी जानतीला की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गोकानी। उनकी अर्थी आज उठाई जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए आली भ्रियों वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। समय के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। सोजिए स्ट्रीट वाली पीटू में 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड की प्रेमिला चेदी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम किस्त। लोग उन्हें रेणुका के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके पति देवन चेदी के मकान वाली पीटू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो पोटवी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। तमाहा रोड शामुनी में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड की श्री गोइंदा रेंगासामी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बल्कि लोग उन्हें मौदी के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज एक बजे उन्हीं के मकान शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए महाजानी रोजबल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। आउटोलेन प्लेनमानियों में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की प्रभाती जोड़ी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम धयन। लोग उन्हें मामा करुणा के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके बेटे श्याम जोड़ी के मकान प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। एवेन्यू ड्रेपर्स कैट्रोबोन में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के चिनाया सीताना की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सीराम के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज 11:30 बजे उनकी पत्नी के मकान कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कैट्रोबोन की खुशबुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। डिस्पेंसरी रोड कॉबे में 33 ईयर्स ओल्ड के कासीनाथ केविन हरी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी एक बजे उनकी माता के मकान कॉबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्त्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रिजर्वर रोड गुडलैंड्स में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की ईश्वरलाल रामगुलाम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सोना के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 12:15 बजे उनके बेटे ब्रिजनन रामगुलाम के मकान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:15 PM। रॉयल रोड मेलरोज में 81 ईयर्स ओल्ड के श्री एसोहंत लक्सिमो की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें

0: के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं के मकान में गौसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM एवेन्यू दे वेग ग्लेनपार्क वाकवा में 74 ईयर्स ओल्ड की मुनेश्वर जीतन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें इंदाल के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 9:30 बजे उन्हीं के मकान ग्लेनपार्क वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलेपुरियो कास्टेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। Cremation today at 9:30 AM One Way Street, Chemin Grenier, 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की बिंदा रंगासामी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें तिहा के नाम से अधिक जानते थे। पैदाइश नाम तिहा, लोग उन्हें सुरेखा के नाम से अधिक जानते थे और वे मेलोडी दुकान की मालकिन थी। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके पति सदा रंगासामी के मकान वन वे स्ट्रीट श्रमेघोनिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM रॉयल रोड लावांचुआ में 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयमंती रामफल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम चमन, लोग उन्हें मानती के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी एक बजे उनके बेटे विजन रामफल के मकान लावांचुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM टागोर रोड घोंगोब में 17 साल की माइनर जय आर्या गर्भू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें आयुष के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी 11 बजे उनके पिता जगराज गर्भू के मकान खोंगोब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोंगोब की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 11 AM अली देसाकासिया बुवालों में 61 साल के गासन यासिमुलू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बॉलन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान बुवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 10 AM कोंकावाल क्यूपिप में 86 ईयर्स ओल्ड के 86 साल की सोनवंती सिहरी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामधुनी, लोग उन्हें शांति के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी एक बजे उन्हीं के मकान क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM कोंकाहोल केनिया में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के हरिदत्त बिसुनी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम, बल्कि लोग उन्हें राज के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी दो बजे उनके बेटे हरीश बिसुनी के मकान केनिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंकाहोल केनिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM एवेन्यू सियामोने कानू में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के बलराम कुदनी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान कानू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 10 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: स्वास्थ्य मंत्रालय आम जनता को सूचित करता है कि गुरुवार 16 जुलाई 2026 को दिन के 10 से शाम 4:30 बजे तक सर अनिरुद्ध जगन्नाथ हॉस्पिटल फ्लैक में सीबी द्वारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के चलते बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इसके चलते हॉस्पिटल की रेडियोलॉजी और लैबोरेटरी सेवा सिर्फ इमरजेंसी के लिए कार्यरत रहेगी।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
4: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंची स्पेन की टीम। बहुत लोग भूल गए थे कि स्पेन यूरोप की चैंपियन टीम है। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एक संगठित डिसिप्लिन टीम के खिलाफ कमजोर पड़ गई। फ्रांस 0-2 ऑलराउंड परफॉर्मेंस से स्पेन ने फ्रांस को एलिमिनेट किया। फ्रांस की टीम जैसे फुटबॉल खेलना

भूल गई थी। फर्स्ट हाफ में मिकेल ओयोज़ाबाल का गोल पेनाल्टी पर, सेकेंड हाफ में पेड्रो पोरो ने स्कोर किया। नो पेन स्पेन के लिए, पर फ्रांस में पेन किलर आउट ऑफ स्टॉक है। 14 जुलाई बास्टी डे को फ्रांस वर्ल्ड कप से स्वतंत्र हुआ, बाहर हुआ। ओ रिवॉर आ बिएंटू स्पेन फाइनल में, जबकि फ्रांस को छोटा फाइनल तीसरे स्थान के लिए थर्ड प्लेस मैच खेलना होगा इस शनिवार को। 3 out of 3 स्पेन के लिए जामे 203 की बात सच साबित हुई। 2024 में यूरोपियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में, फिर पिछले साल नेशंस लीग में, इस बार वर्ल्ड कप में फिर से सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हराया। 37 मैचों में अनबीटन, मतलब स्पेन की जीत होती आ रही है। स्पेन के कोच लुइस डेला फुएंटे ने कहा कि 4 सालों का परिश्रम है, सफल नतीजे सामने आ रहे हैं। एक ऐसी टीम है जिसमें हर खिलाड़ी एक होकर टीम स्पिरिट से खेलता है। यूरोपियन चैंपियन स्पेन अब वर्ल्ड कप से केवल 1 कदम पीछे है। फाइनल इंग्लैंड या अर्जेंटीना के खिलाफ होगा। दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच। 1966 से इंग्लैंड की टीम फाइनल में नहीं जा पाई है। सामने है वर्ल्ड चैंपियन मेसी का अर्जेंटीना। इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना ये केवल एक मैच नहीं बल्कि इंटरनेशनल फुटबॉल की सबसे बड़ी राइवलरी है। 1986 में डिएगो माराडोना के हैंड ऑफ गॉड गोल से लेकर 1998 में डेविड बेकहम के रेड कार्ड तक इन दो टीमों के बीच मैच में ड्रामा ही ड्रामा। 8 साल पहले मॉस्को में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया था। इस बार 1 कदम आगे जाना चाहते हैं, फुटबॉल को वापस घर लाना चाहते हैं। इंग्लैंड के सामने है वर्ल्ड कप अर्जेंटीना। पहली बार मेसी इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। इंग्लैंड के डिफेंस को मेसी पर खास ध्यान देना होगा। नॉकआउट राउंड में काफी कठिनाई हुई थी अर्जेंटीना को। लाइनअप इस प्रकार है: पिकफोर्ड, कोनसा, स्टोन्स, ग्वेई, ओरेली, राइस, एंडरसन, माडुएके, बेलिंगम, गोर्डन और हैरी केन। अर्जेंटीना के लिए इमिलियानो मार्टिनेज गोलकीपर, फिर मोलिना, रोमेरो, मार्टिनेज, तागलियाफिको, सिमियोने, मैक अलिस्टर, पारेडेस, एंजो फर्नांडेज, मेसी और जुलियन अल्वारेज। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी जूड बेलिंगम और हैरी केन 6-6 गोल स्कोर कर चुके हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। द एनालिस्ट बाय ओप्टा के अनुसार अर्जेंटीना 32%, इंग्लैंड 38%, ड्रॉ 30%, मतलब इंग्लैंड फेवरेट है। इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना आज रात 11 बजे स्पेन न्यूयॉर्क में इंतजार कर रहा है। फ्रांस न्यूज, यूरी टिलेमांस अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का खिलाड़ी बन गया है। 35 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर उसे एस्टन विला से खरीदा गया। एंड्रे सांटोस और गोलकीपर कॉल डॉलो के बाद टिलेमांस यूनाइटेड की तीसरी साइनिंग है। क्रिकेट, इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में कल टीम इंडिया की आसान जीत हुई। 6 विकेट से भारतीय टीम जीत पाई। इंडिया के 262 रनों के जवाब में शुभमन गिल 80 नॉट आउट, अक्सर 57 और वाशिंगटन सुंदर 52 रन बना पाए, अक्सर 4 विकेट ले पाया। टूर डी फ्रांस साइकिलिंग की बात करें हैं, इसमें कल लीडर तादेज पुगाचा की जीत हुई। ये उसकी तीसरी स्टेज विन है। येलो जर्सी तो उसी के पास है। पुगाचा की लीड अब 3 मिनट से ज्यादा हो गई है। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, स्पेन की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में और ओरेवॉ फ्रांस। फिर मिलेंगे 8:40 पर RM2 पर। तब तक नमस्कार, आप सभी को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

0: बुधवार 15 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 7:10 यहाँ पर हो रहे हैं और रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। चलिए एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं आपके साथ सुबह का नजराना इस म्यूजिकल प्रोग्राम को लेकर। अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। सुप्रभात आप सभी को। नया दिन यहाँ पर आता है तो नए दिन के साथ हम आ जाते हैं आपका साथ देने के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्रामों और अच्छे अच्छे गानों के जरिए। तो चलिए ये जो नया दिन है सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते, ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए, जितने भी दुख है, जितने भी परेशानियां हैं, जितनी भी चिंताएं हैं सब दूर हो जाए और आप जीवन के हर एक पल को बहुत ही खुशी से बिताए। तो चलिए इन्हीं विशेष के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के इस सुबह का नजराना प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं चिंतन से, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर जमन की प्रस्तुति में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: इतिहास की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन के नाश हो जाने पर कुछ नष्ट नहीं होता, परंतु इतिहास के नष्ट कर देने पर विनाश निश्चित है।

0: जी हाँ, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, और इस थोड़े से ही कभी कभार जीवन में हमारा जो है गुजारा हो जाता है। लेकिन कभी कभार हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हम ज़्यादा की चाह में अपने मन के सुकून को खो देते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: और चलिए, यहाँ पर इस समय आप रेडियो मॉरिशस पर हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी के लिए जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ सुन लीजिए। सीबी जो है विलाज दे रियोबेल सुरीनाम मौसलमा दनपत सैली श्यमेर रियोबेल यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है कि यहाँ पर गुरुवार 16 जुलाई को, यानी कि कल गुरुवार 16 जुलाई को सुबह के 9 बजे से सपैर के 4 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही क्रोमोडल के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, क्रोमोडल के खास कर चैपमैन व्यू एवेन्यू सेरिसिया मौसलमा मोत्रियाल नंबर 1 नंबर 2 पुलिस क्वार्टर्स और आसपास के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 15 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच और फिर आज ही दोपहर के 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ ही तमारा के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, तमारा के खासकर मौसल मोकोलोस एवेन्यू जाकारांडास एवेन्यू बुआकोराय यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर गुरुवार 16 जुलाई को, यानी कि कल गुरुवार 16 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से सपैर के 4:30 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशियस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस,
3: डोंट मिस इट।
0: बिल्कुल, इस मौके को बिल्कुल मत गवाइएगा और वन डे आरजे बनने का मौका जो है इसका पूरा जो है फायदा उठाइएगा। 7:20 यहाँ पर हो रहे हैं और चलिए अब आ रही है आपको बताने की कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। ऐसे आज है बुधवार 15 जुलाई और खूबसूरत गानों का सिलसिला तो सवेरे से ही यहाँ पर शुरू है। और यहाँ पर इस आपको बता दें कि अभी के लिए जो सुबह का नज़राना है ये चलेगा 9 बजे तक, इसी के अंतर्गत यानी कि लगभग 7:40 से हम शामिल करेंगे आपके डेडिकेशंस के लिए आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस हमें सवेरे से मिल रहे हैं 4028085 और साथ ही 5251705 पर आपके मैसेजेस। 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 बजे आप सुन पाएंगे आ खेल खेले हम इस प्रोग्राम को, एक छोटा सा क्विज होगा। 8:30 बजे आप सुन पाएंगे मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में कार्यक्रम परिवार नियोजन। 8:50 पर किरण जानकी जी से आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस प्रोग्राम को, और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रत्ना। 10 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी से। 11 बजे होगा समाचार, उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। दोपहर के 12 बजे विश्मा की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सौंदर्य लहरी। 12:30 बजे प्रीति की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में कार्यक्रम। दोपहर के 1 बजे तमिल भाषा में प्रोग्राम प्रस्तुत करेगी आरसी। 2:15 बजे गुजराती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे अमिता की प्रस्तुति में। 2:30 बजे से उषा आपका साथ देगी आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंद यह कार्यक्रम जारी रहेगा। सपहर के 4 बजे श्रीमती धर्मिया की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में कार्यक्रम विविधा। 5 बजे फारे की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे खेती बाड़ी पर आधारित विशेष कार्यक्रम। 5:15 बजे से रोशन और उषा आपका साथ देंगे अंताक्षरी इस कार्यक्रम में। 6 बजे समय होगा पूरा समाचार का। साढ़े 6 बजे हक्का भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे डेविड। 7 बजे तमिल भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे पुवना से। 7:30 बजे राजेंद्र की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम। 7:50 पर मराठी भाषा में प्रोग्राम गीत गंगा, इसे आप सुन पाएंगे नितिन बापू द्वारा। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करेगी रोशनी। 8:40 पर अविनाश की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। रात के 9 से 11 बजे के बीच भोजपुरी तड़का प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे प्रताप, और रात के 9 से 11 बजे के बीच भोजपुरी तड़का प्रोग्राम आप सुन पाएंगे प्रताप की पेशकश में। 11:00 बजे सुनहरे पल इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करेगी गिनीशा, और 12:00 बजे से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने

चलिए, यहाँ पर सभी अपने हैं, कोई बेगाना नहीं है, कोई पराया नहीं है, और आप अपनों का प्यार इतना हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहते ना कि अपनों का साथ होता है तो ज़िंदगी का ये जो सफ़र है बहुत ही अच्छे से कट जाता है। फिर चाहे वो अपने हमारे रिश्तेदार हो, हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे दोस्त हो, हमारी सखिया हो, हमारे कलीग्स हो, है ना, और इन सब के साथ ज़िंदगी का ये सफ़र इतने अच्छे से बीतता है, इतनी अच्छी अच्छी यादें होती है कि क्या कहें। और ज़िंदगी के हर एक लम्हे को अगर किसी कोई खुशी का पल है तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए, उस खुशी को बांटने के लिए ऑब्वियसली अपनों की ज़रूरत पड़ते ही है। अगर दुख है तो उस दुख को बांटने के लिए भी हमें अपनों की आवश्यकता पड़ती है। तो बस आपके जीवन में कोई ऐसा अपना है, कोई ऐसा साथी है तो बस उन्हें बनाए रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और चलिए, सुबह का नजराना जो प्रोग्राम है खूबसूरत गानों के जरिए आगे बढ़ता जा रहा है। आशा फिल्म का ये तराना आप सभी के नाम, आशाओं के सावन में, लता जी, रफ़ी साहब और साथियों की आवाज़ों में। और शुक्रिया अपने डेडिकेशंस हम तक पहुँचाने के लिए। थोड़ी देर में शामिल करेंगे इन सभी डेडिकेशंस को।

जी हाँ, जहाँ आशा होती है वहाँ पर निराशा बिल्कुल नहीं होती, और कहीं ना कहीं निराशा इस शब्द में भी तो आशा छुपी हुई है। तो बस जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें अपने भीतर जो आशा है उसे मत खोइएगा, उसे हमेशा बनाए रखिएगा। और चलिए यहाँ पर शुरुआत होती है आपके डेडिकेशंस की, आपके फरमाए मतलब कि आपके डेडिकेशंस की। जी हाँ, सवेरे से आप प्यार से साथ दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर इस समय हमारे साथ कृष्णावती जी हमारा साथ दे रही हैं, बड़े ही प्यार से हमें सुन रही है। सभी MBC टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णावती जी, आपका प्यार आपका साथ यूँ ही बना रहे। एक मैसेज आया है, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद माला जी इस खूबसूरत पंक्तियों के लिए। बस आपका प्यार हमें यूँ ही मिलता रहे और आपका विश्वास हम पर यूँ ही बना रहे। चलिए अगले तराने को आपके नाम करते हैं, शुभ सवेरा आपको भी, पूरे सुमारू परिवार को भी। ऐसे कल जब हम रेडियो मनोरंजन पर काम कर रहे थे, जब लाइव थे, तो किसी ने आपका जिक्र किया था कि आप उनकी सहेली हैं। मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। हमारे रेडियो के ज़रिए कितने एक दूसरे से दोस्त बन जाते हैं। कितने लोग तो कहते हैं कि रेडियो पर ये इनसे सुनकर हमारी मुलाकात हुई, हमारा मिलना हुआ। ऐसे बहुत सारे सहेलियाँ हैं जो रेडियो के ज़रिए मिली हैं। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना जो है जाता है यहाँ पर, धन कमाए ईमानदारी से, रिश्ते निभाए दिलदारी से। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मादालबेर से अनीता जी ने ये लिखकर हमें भेजा है। अनीता जी, अगला गाना आपके नाम हम बिल्कुल करेंगे, और आपकी ओर से ये गाना जो है जाता है करुणा के लिए, अमृता के लिए और आपके सभी प्यारे दोस्तों के लिए। लीला जी बौशेरी से साथ दे रही है, कह रही है अगला गाना इनकी भतीजी प्रीति भंजन के नाम हो जाए, जो कनाडा से आई है और शनिवार को चली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं प्रीति जी मॉरिशस में आपका जो समय है वो बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। प्रीति जी आपके नाम अगला तराना, साथी आपके पति संजय के लिए, सभी भंजन परिवार के नाम जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर शिवरानी जी ग्रोबा से साथ दे रही है, कह रही है कि आपके प्रोग्राम को हम एंजॉय कर रहे हैं, गानों को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4028085 है नंबर हमारा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी डेडिकेशन हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 5251700 5 पर। और अभी के लिए खूबसूरत सा गाना आप सभी के नाम।

जी हाँ, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, और ये छोटी छोटी आशाएं, ये छोटी छोटी उम्मीदें हमें जीवन में बहुत दूर तक ले जाती हैं। चलिए अभी के लिए आपकी फरमाइशों को हम, आपके डेडिकेशंस को हम शामिल करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम

में। तो चलिए, जितने भी सुनने वाले जो है आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं, आप सभी को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं, और जीवन में आपको ढेर सारी सफलता मिले, जीवन में आपको ढेर सारी कामयाबी मिले, सभी दुखों से, सभी परेशानियों से आप हमेशा दूर रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, अपनों का प्यार आपके जीवन में हो, बड़ों

हार्दिक शुभकामनाएं, खासकर आपकी पत्नी शीला की ओर से, पुरदूर विलास के रामायण मंडली की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में पूरे परिवार ने आपको बधाई शुभकामनाएं दी है। यहाँ पर पूनम है, रोशनी है, आपके सभी दामाद की ओर से, सभी गणेश परिवार और सभी राजकुमार परिवारों की ओर से सुमेर जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर साजिद और नौशीन अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। साजिद जी और नौशीन जी, आप दोनों को बधाई आपकी माँ जैबुन और पापा कासम की ओर से। साथ ही फैजुल्ला अपना जन्मदिन मना रहे हैं। फैजुल्ला, आपको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं मामा रुखसार और पापा असाद की ओर से। पूरे बिहारी परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई। साथ में यहाँ पर जहीरा भी है, असगर है, मिहाद है, सभी बिहारी परिवारों ने ढेर सारी बधाइयां भेजी है। यहाँ पर आपके नाम, फिल्म खट्टा मीठा का गाना बहुत अच्छा था। थोड़े में ही संतुष्टि होना इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, आपको गाना पसंद आया, और आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए भी धन्यवाद। आपको भी शुभ दिन हम कहेंगे, ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए। इंदिरा लौटन जी साथ दे रही है, कह रही है लंदन से उनके सभी बच्चों के नाम अगला तराना। बिल्कुल अगला तराना आपके नाम हम करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ इस समय सूरज शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अगला गाना सभी सजादा परिवार के नाम चलाएंगे। और माला जी, आपका मैसेज हमें मिला इतने सुंदर गाने चलाने के लिए, धन्यवाद। तो चलिए माला जी, आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पिछित्रित्रित से आप हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगला गाना सभी जरी परिवार के नाम हम करेंगे, और आपकी बेटी रीमा का जन्मदिन भी था शायद, तो उनको भी जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। और ये जो अगला गाना है, आप सभी के नाम हम करते हैं जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, या कोई ख़ास मौका है जिसे आप अपनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहते हैं ना कि खुशी जो है बांटने से बढ़ती है, दुख जो है बांटने से कम होता है। तो चलिए, खुशियों को जहाँ तक हो सके हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इन प्रोग्रामों के ज़रिए, हमारे इन अच्छे अच्छे गानों के ज़रिए।

चलिए, आप खुश तो हम भी खुश, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और चलिए, खुशियाँ और भी बढ़ जाती है जब आपके डेडिकेशन यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो अगला गाना जाता है यहाँ पर, सभी के लिए आज का दिन मंगलमय हो। दागोचे से सुनीता जी सभी को शुभकामनाएं दे रही है। बिहारी परिवार के नाम अगला गाना विदाउट फॉरगेटिंग मम्मा विद्वंती, जो क्यूपिप से हमें सुन रही है। ग्रॉन्गप की सुनीता जी, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं, तो अगला गाना आपके लिए भी हम करते हैं। आफेज जी हमेशा हमारा साथ देती है लावण्या से, तो आपको भी हम नहीं भूले हैं आफेज जी। यहाँ पर शोभा जी वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गाना जाता है आपकी बेटियों के नाम, श्रवीना है, अनुषा है, आपके पति के लिए, आपकी सभी सहेलियों के लिए। यहाँ पर डियर सिस्टर और सभी एमबीसी स्टाफ को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। यहाँ पर लक्ष्मण सिंह गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी को नए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं इस गाने की ओर, छोटे से गाने के साथ जो है आज का सुबह का नजराना का पहला घंटा समाप्त हो जाएगा। 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार। हम आपसे मिलेंगे सुबह का नजराना के सेकेंड आवर में, साथ देते रहिए हमारा, धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बजे के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार। नमस्ते, सुना भोजपुरी में समाचार। अब विश्व कप के फाइनल में स्पेन पहुंच गल बा। डालास में खेलल गल सेमीफाइनल में स्पेन फ्रांस के 2-0 से हरा देलक। पूरा मैच में स्पेन के खेल परी पकड़ मजबूत रहल, हर मोर्चा परी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन दिखल। अब सबके नजर फाइनल पर बा, जहां स्पेन विश्व चैंपियन बने से बस एगो जीत दूर बा। अब नजर बाद दूसर सेमीफाइनल परी, जहां आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने हुई। ये बहुचर्चित मुकाबला के लेके फुटबॉल प्रेमी में जबरदस्त उत्साह बा के जीती स्कोर का रही और फाइनल के टिकट केकरा मिली। मॉरिशस में काल फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस आधिकारिक रूप से मनावल गल। ये मौका परी फ्लोरियल में फ्रांस के राजदूत के सरकारी निवास परी एगो स्वागत समारोह आयोजित करल गल। इस समारोह में राष्ट्रपति धर्म गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, सरकार के सदस्य, राजनयिक समुदाय और मॉरिशस में रहत फ्रांसीसी समुदाय के प्रतिनिधि लोगन मौजूद रहलन जा। अपन संबोधन में फ्रांस के राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन कहलन कि मॉरिशस और फ्रांस के बीच दोस्ताना संबंध लगातार मजबूत बा। वो बतैलन कि दोनों देश के सहयोग के और आगे बढ़ावे खातिर कई पहल जारी बा। इस दौरान प्रधानमंत्री के नवंबर महीना में फ्रांस में होके वाला पेरिस पीस फोरम में भाग लेवे के निमंत्रण देवल गल। जॉन मिक मॉटिंगेल के मौत से जुड़ल न्यायिक जांच के तहत काल बोबासें केंद्रीय जेल के निरीक्षण भल। जिला मजिस्ट्रेट डेनी विलियन और डीपीपी के प्रतिनिधि उसल के देखलन जा, जहां 8 सितंबर 2024 के मॉटिंगेल के मौत भल रहल। कंट्रोल रूम समेत दूसर जरूरी जगह के भी निरीक्षण करल गल। याद रहे कि जॉन मिक मॉटिंगेल के 29 अक्टूबर 2022 के एसएसओ हवाई अड्डा पर ही गिरफ्तार करल गल रहल। अगला सुनवाई 21 जुलाई के रोजेल जिला अदालत में हुई। राष्ट्रसभा में काल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम प्लास्टिक के बोतल पर ही लगियोला 2 रुपया एक्साइज ड्यूटी के बारे में जानकारी देलन। वो बतैलन कि 1 अक्टूबर से लागू होकेला ई टैक्स से लगभग 135 मिलियन रुपया की आमदनी होके के अनुमान बा। साथ ही यह स्पष्ट कहलन कि 38 तरह के सामान जैसे शिशु भोजन, डेयरी सामान, खाना बनावे के तेल, मक्खन, शहद और दवाई से जुड़ल सामान पर ही ई टैक्स नहीं लगी। प्रधानमंत्री इहो घोषणा करलन कि एमओरए की रिफंड योजना अब खाली पेट बोतल ले सीमित नहीं रही, अब ई सब तरह के प्लास्टिक बोतल पर लागू रही। सरकार प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री मॉरिशस खातिर 10 बरिस के रोड मैप भी तैयार करी। का भविष्य में मेट्रो एक्सप्रेस सीधा हवाई अड्डा ले जाए, फिलहाल त ई परिकाम नहीं हो सकी। राष्ट्रसभा में भूमि परिवहन मंत्री उस्मान महमूद कहलन कि मौजूदा आर्थिक हालात में ये परियोजना संभव नहीं बा। हालांकि वो कहलन कि भविष्य में प्लान मान्योले मेट्रो एक्सप्रेस बढ़ावे के संभावना पर ही विचार करल जा सकेला। ये खातिर सरकार आवत 20 बरिस के लैंड ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करे खातिर विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त करी। आज पिलखेंथ्रियानो लिंक रोड के उद्घाटन हुई। उम्मीद बा कि इसे सेंट जॉन और M1 मोटरवे पर ही ट्रैफिक जाम कमती हुई। आज लंदन में ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के अपील अदालत में एगो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। ब्रिटेन सरकार उ फैसला के चुनौती देवता, जिनमें मिसले मौदारे समेत 6 शगोसियन के पेरोसपानुस में रहे की अनुमति मिलल रहल। दूसर देश के खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुस से गुजरे वाला जहाज पर 20% शुल्क लगावे

0: के फैसला वापस ले ले हवन। बीच अमरीकी सेना ई समुद्री सीमा में ईरान के कई ठिकाना पर नवा हमला शुरू कर लेबा। जवाब में ईरान, बहरीन और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकाना के निशाना बनावे की दावा कर लेबा। बढ़त तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज के आवाजाही काफ़ी कम हो गलबा। असर अब वैश्विक तेल बाजार पर दिखता। तो यह रहा हमने के भोजपुरी में समाचार, हमने के सुन लजा, धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: कोंकाहोल केन्या में 70 बरिस के सुसंजीजों के हरिदत भी सुनी गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे केन्या से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कोंकाहोल केन्या के शमशान भूमि ले जावल जाए। कोंकावाल क्यूपिप में 86 बरिस के 87 के सुनवंती सिहरी गुजर गल हवन। पैदाइश नाम राम धोनी। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उन्हें के घरे क्यूपिप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर भी कहा के शमशान भूमि ले जावल जाए। नंबर 9 अली दिजाकासिया बुवालो में 61 बरिस के 63 के गासन नियसिमुलू गुजर गल हवन। उनकर माटी आज फजीर के 10 बजे उन्हीं के घरे बुवालों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर यूनियन वेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। टागोर रोड खोंगुब में 17 बरिस के जय आर्या गर्भु गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनके पिता जयराज गर्भु के घरे खोंगुब से उठा के अंतिम संस्कार खातिर खोंगुब के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड लावोंचुआ में 89 के जयमंती रामफल गुजर गल हवन। पैदाइश नाम चमन। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा विजन रामफल के घरे लावोंचुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावोंचुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। वन वे स्ट्रीट शमन घोनिया में 64 बरिस के 64 के बिंदा रंगासामी गुजर गल हवन। पैदाइश नाम तीहा। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर पति सदा रंगासामी के घरे वन वे स्ट्रीट शमन घोनिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कांगोपाल शामुनी के शमशान भूमि ले जावल जाए। गैनपोक वाकुआ में 74 बरिस के 64 के मुनीश्वर जीतन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 9:30 उन्हीं के घरे वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आले भैया कास्तल के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड मेलरोज में 81 ईयर्स ओल्ड के ईसोहंत लक्सिमो गुजर गल हवन। उनकर माटी रॉयल रोड मेलरोज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोताब्रॉन्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। समय 2:00। रिजर्वर रोड गुडलैंड्स में 73 बरिस के 63 के ईश्वरलाल राम गुलाम गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 12:15 उनकर बेटा ब्रिजनन राम गुलाम के घरे गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। डिस्पेंसरी रोड ग्रॉबी में 33 बरिस के 33 के काशीनाथ केविन हरी गुजर गल हवन। उनकर माटी दिन के 1 बजे उनकर माँ ममन हरी के घरे ग्रॉबी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तेमिनी स्त्रियोली के शमशान भूमि ले जावल जाए। एवेन्यू ड्रापेज कटोबोन में 80 बरिस के चिनाया सीताना गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 11:30 उनकर पत्नी के घरे कटोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर खुशबुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। आउटोलिन प्लेन मानियों में 83 बरिस के 83 के प्रभाती जोड़ी गुजर गल हवन। पैदाइश नाम दयान। उनकर माटी आज दिन की 2 बजे उनकर बेटा श्याम झोरी के घरे आउटोलिन प्लेन मानियों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लेन मानियों के शमशान भूमि ले जावल जाए। तमारे रोड शामुनी में 64 बरिस के श्री गोविंदा रंगासामी गुजर गल हवन। उनकर माटी दिन के 1 बजे उन्हीं के घरे शामुनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मारी जानी रोज बल के शमशान भूमि ले जावल जाए। सोजी स्ट्रीट वाली पिटू में 56 बरिस के 2nd season के प्रेमिला चेदी गुजर गल हवन। पैदाइश नाम किस्तु। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर पति देवन चेदी के घरे वाली पिटू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थोंगबो पोटलुई के शमशान भूमि ले जावल जाए। और ये था वाकुआ में 88 बरिस के 88 के पुष्पा गुकानी जंतिला गुजर गल हवन। उनकर

कि आज दिन के बल्कि आज दिन के दौरान उठावल जाए समय के बारे में बाद में सूचित करल जाए। अंतिम संस्कार अली प्रियों वाकुआ के शमशान भूमि में करल जाए। खानम वाकुआ में खानम रोड वाकुआ में 25 बरिस के पुरमाले वीरापेन नारायणन गुजर गल हवन उनकर माटी आज सपहर 3 बजे उन्हीं के घरे वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थमा मेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। धनुष लेन लो शेत्य रूस में 36 बरिस के थॉन्सीजों के धनजय नन बुधुआ गुजरगल हवन धनजय नन बुधुआ गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 2:30 बजे उन्हीं के घरे त्यागूश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बमौशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। एवेन्यू सिमोनी कानू में 75 बरिस के शोषण के जों के बलराम कुदनी गुजरगल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घरे कानू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोताय सैं पिया बॉम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोकग्रस्त परिवार संगे हमनी सहानुभूति प्रकट कर थैं जा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस और रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्तियां सुन लीजिए। विलाज दे शातो बेनारस, विलाज दे शातो बेनारस, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर बुधवार 15 जुलाई को, यानी कि आज बुधवार 15 जुलाई को सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही कोरोमोंडल के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, कोरोमोंडल के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक चैपमैन व्यू एवेन्यू सेरिसिया मोसलमा मोथ्रियाल नंबर 1 नंबर 2 पुलिस क्वार्टर्स और आसपास के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी आज बुधवार 15 जुलाई को यहाँ पर सुबह के 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच, यहाँ पर आज सुबह के 8:30 से 9:30 बजे के बीच और फिर दोपहर के 2:30 से 3:30 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य सम्पन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी

0: चलिए यहाँ पर सुबह का नजराना के इस सेकंड आवर में आप सभी का स्वागत हम करते हैं, आप सभी का वेलकम है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। और चलिए इस दूसरा घंटा शुरू हो गया है और हम भी आ चुके हैं खेल खेले हम इस छोटे से क्विज को लेकर। आज का जो सवाल है, एक ऐसी गायिका पर है जिनका निधन 11 जुलाई को हुआ। 11 जुलाई यानी कि 11 जुलाई 2026 को वे चल बसी। आपको हमें इस गायिका का नाम बताना है जिनका निधन अभी कुछ दिनों पहले यानी कि पिछले शनिवार को हुआ, 11 जुलाई 2026 को। ऐसे प्लेबैक के सिंगिंग में इनका काफ़ी नाम है। इन्होंने ऐसे तो दक्षिण भारतीय फिल्मों में काफ़ी गाने गाए हैं, ये कंपोज़र भी रह चुकी हैं और साथ ही हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। ऐसे हिंदी फिल्मों के सफ़र की बात करें तो ये जो है इनके करियर का बस एक हिस्सा रहा है, लेकिन जितने भी गाने इन्होंने गाए हैं लेट 70s, 80s के दौरान, 90s, अर्ली 90s के दौरान ऐसे यहाँ पर तो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े कंपोजर्स के साथ, काफ़ी बड़े बड़े गायकों के साथ इन्होंने गाना गाया है। तो उस गायिका का नाम बताइए जिनका निधन पिछले 11 जुलाई को हुआ। और चलिए हमारे पहले श्रोता से मिलते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्ते
0: जी, आपका स्वागत है। कौन बोल रही है?
1: मैं सुमति हूँ वाकवा से।
0: कैसी है सुमति जी?
1: अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक है सुमति जी। और बताइए क्या है जवाब?
1: एस जानकी।
0: ओके, एस जानकी, आपके जवाब को हमने नोट कर लिया है सुमति जी। कुछ एस जानकी जी का कोई गाना है जो आपको पसंद है?
1: आखिरी रास्ता में उन्होंने गाया है, बहुत अच्छे गाने हैं।
0: ओके जी, बहुत धन्यवाद सुमति जी आपके इस जवाब के लिए। जुड़े रहिएगा, थोड़ी देर में बताएंगे कि सही जवाब क्या है। धन्यवाद। एक और श्रोता है। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार,
0: आपका स्वागत है जी। कौन है?
2: मैं इंद्रानी हूँ लिस्कारिये से।
0: कैसी है इंद्रानी जी?
2: बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक है जी। और बताइए इंद्रानी जी क्या है जवाब?
2: सुमन कल्याणपुर।
0: सुमन कल्याणपुर, चलिए आपके जवाब को भी हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रानी जी। ऐसे जो ऐसे हम पूछ रहे हैं कि पिछले शनिवार यानी कि 11 जुलाई को एक बहुत ही मशहूर गायिका का निधन हो गया, उनका नाम हमें बताएं। 4028085 पर प्लेबैक सिंगिंग में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। इन्होंने काफ़ी थोड़े बहुत गाने कंपोज भी किए हैं और जो है हिंदी फिल्मों में तो ऐसे इन्होंने नाम कमाया ही है, साथ ही दक्षिण भारतीय फिल्मों में इन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं। एक और श्रोता से हम मिलते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार।
3: नमस्कार सुमित जी।
0: नमस्ते जी। लाइन यहाँ कट गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए। हेलो नमस्ते।
3: हेलो नमस्ते
0: जी, कौन है?
3: हम आंटी बोल रहे हैं कोंपुकोट।
0: आंटी जी कैसी है?
3: हाँ बहुत ठीक है।
0: और बताइए क्या है जवाब आंटी जी?
3: वो एस जानकी है।
0: ओके जी, एस जानकी का कोई गाना,
3: गाना आप चला सकते हैं हम तुम्हारे लिए।
0: ओके, हम कोशिश करेंगे। ओके धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।
3: नमस्ते।
0: और यहाँ पर एक जवाब हमें मैसेज से भी मिला है माला जी की ओर से, एस जानकी वो कह रही है। एक और जवाब हमें मिला है यहाँ पर महालक्ष्मी अय्यर। चलिए आपके भी जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अगले श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते।
4: हेलो सुमित जी।
0: नमस्कार जी, कैसी है राधा जी?
4: नमस्कार जी, मैं अच्छी हूँ, आप अब अच्छी है ना?
0: बिल्कुल ठीक है जी, बताइए क्या है जवाब
4: जी? एस जानकी।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद इस जवाब के लिए। और कुछ जोड़ना चाहेंगे एस जानकी जी के बारे में?
4: जी उनकी गुड्डी फिल्म में जो गाया है बोल रे पपिहरा,
0: ओके,
4: और वो हमको मन की शक्ति देना, ये सब गाने उनके काफी मशहूर हुए थे।
0: ओके
4: हाँ, और बहुत ही अच्छी गायिका थी।
0: ओके जी, बहुत धन्यवाद।
4: जी धन्यवाद आपको।
0: ओके, और शुभ दिन आपको भी। चलिए एक और श्रोता से हम मिलते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो नमस्कार।
5: हेलो नमस्कार
0: जी, कौन है जी?
5: मैं अमृता हूँ।
0: कैसी है अमृता जी?
5: मैं ठीक हूँ।
0: ओके, और क्या है जवाब अमृता जी?
5: जवाब शायद

0: कल्याणपुर।
1: ओके, चलिए, आपके जवाब के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अमृता जी। और एक और श्रोता की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो, नमस्ते।
2: नमस्ते
1: जी, कौन है?
2: हम तारा हैं।
1: तारा जी, कैसी हैं आप?
2: हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक है जी। और बताइए, क्या है जवाब आपके पास?
2: एस जानकी।
1: ओके, चलिए, आपके भी जवाब को हमने नोट कर लिया है। तारा जी, कुछ कहना चाहेंगे एस जानकी जी के बारे में?
2: हाँ, उसका गाना बहुत सुंदर है, हम बहुत खुश हैं, उसका गाना को बहुत पसंद करती है उसका गाना।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी। एक और अंतिम कॉल हम लेंगे। हेलो, नमस्कार।
3: हेलो, नमस्ते जी,
1: आपका स्वागत है जी। कौन है?
3: इंदिरा बोलते हैं।
1: इंदिरा जी, बताइए क्या है जवाब?
3: जवाब है एस जानकी जी।
1: चलिए, आपके जवाब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, शुभ दिन आपको कहेंगे। एक और श्रोता, हेलो, नमस्कार।
4: नमस्कार सिमी जी।
1: नमस्ते जी,
4: मैं अनीता।
1: अनीता जी, कैसी हैं आप?
4: मैं अच्छी हूँ, आप अच्छी हैं ना?
1: बिल्कुल ठीक है जी। बताइए क्या है जवाब?
4: एस जानकी।
1: ओके, आपके जवाब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन। यहाँ पर एक और जवाब आया है, यहाँ पर निवग्रोव से। मेरा जवाब है एस जानकी, लेकिन आपने तो अपना नाम ही नहीं लिखा। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, जितने भी लोगों ने जवाब दिया, ज़्यादातर लोगों ने हमें सही जवाब दिया। ऐसे सुमन कल्याणपुर जी का निधन भी अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, तो नहीं, हम ढूंढ रहे हैं उनका नाम जिनका निधन पिछले 11 जुलाई को, यानी कि पिछले शनिवार को हुआ। सही जवाब है एस जानकी जी। जी हाँ, एस जानकी जी जो है 11 जुलाई 2026 को वे चल बसी। लगभग 88 ईयर्स की थी वो। ऐसे ज़्यादा नाम इन्होंने साउथ इंडियन की फिल्मों में गाना गाकर गाया कमाया है, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने जितने गाने गाए हैं काफ़ी लाजवाब रहे हैं। जिस तरह से लता जी को नाइटिंगल ऑफ इंडिया कहा जाता था, इस तरह से एस जानकी जी को नाइटिंगल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी लोगों ने भाग लिया हमारे इस छोटे से क्विज़ में, आप सभी का धन्यवाद। और एस जानकी जी की आवाज़ में ये गाना आप सभी के नाम।
5: ओके, आई विल टेल यू अ स्टोरी, बट एवरीबडी विल सिंग विथ मी। ओके।

0: चलिए यहाँ पर एस जानकी जी साथ में मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ों में ये गाना अभी आप सुन रहे थे। 8:30 बज चुके हैं और अभी के लिए समय हुआ है परिवार नियोजन इस कार्यक्रम का, जिसे हम सुनेंगे मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे मिस्टर भजन, तो आइए उनको सुनते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: नमस्कार श्रोताओं, मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन के परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम हम आपके लिए लाए हैं विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल का थीम है युवाओं की उम्मीदें और आकांक्षाओं को पूरा करना, उनका आज और उनका भविष्य, यानी कि रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे मोजैन यूथ फ्रेंडली सर्विसेज के बारे में। कई सालों से हमने मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये निरीक्षण किया है कि आज के बच्चे और युवा ज़्यादातर मोबाइल्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। COVID-19 के दौरान हम कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन नहीं कर पा रहे थे स्कूलों में, और उसी दौरान बहुत सारे साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन के मामले रिपोर्ट किए गए थे, क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे और कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि युवाओं और किशोरों में गर्भावस्था के मामले बढ़ गए हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस HIV/AIDS के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ युवक मादक द्रव्यों के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे उनको अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए हमने एक नया प्रोजेक्ट लिखा था, जो कि यूरोपियन यूनियन ने फंड किया था, जिसका नाम है ई सेक्सुअल हेल्थ फॉर जेन ज़ेड। इस प्रोजेक्ट में हमने 3 ऑब्जेक्टिव लिखे थे। पहला ऑब्जेक्टिव में हमने कहा था कि हम एक नया चैटबॉट का निर्माण करेंगे, जो कि बच्चों और युवाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। दूसरे ऑब्जेक्टिव में हमने ये कहा था कि हम

कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करेंगे युवाओं के लिए, एनजीओस के लिए और अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए। और तीसरे ऑब्जेक्टिव्स में हमने ये कहा था कि हम एक यूथ फ्रेंडली सर्विस का निर्माण करेंगे। इसी संदर्भ में हमने एक नया सेंटर का निर्माण किया जो कि स्थित है फर्स्ट फ्लोर इकाइस बिल्डिंग फॉफारों पोर्टविस, और इसका नाम है मोजैन यूथ फ्रेंडली सर्विसेज। यूनाइटेड नेशन के अनुसार हमें युवाओं के भविष्य के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। 9 जुलाई 2026 को यूरोपियन यूनियन और आईपीपीएफ के सपोर्ट और अन्य महानुभावों के प्रेजेंस में इस सेंटर का लॉन्चिंग किया गया था। और इस सेंटर का, जैसे कि हमने कहा था, नाम है मोजैन यूथ फ्रेंडली सर्विसेज, जो कि बच्चों और युवाओं के लिए कई सेवा उपलब्ध हैं यहाँ पे। यहाँ आपको कौन से सेवा मिलेंगे? पहला है मनोवैज्ञानिक समर्थन और मेंटल हेल्थ सपोर्ट, दूसरा है स्वास्थ्य सेवा और यौन और प्रजनन सेवा, तीसरा है एचआईवी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्टिंग, चौथा है पीयर एजुकेशन और ग्रुप सपोर्ट, और पांचवा है डिजिटल एक्सेस जेन जी चैटबॉट के माध्यम से। मोजैन यू फ्रेंडली सर्विसेज का उद्देश्य क्या है? हमारा ये उद्देश्य है कि युवाओं और किशोरों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य प्रदान करना। इन्हीं सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमने दो ज़रूरी सेवा का आरंभ किया है। पहला है युवाओं के लिए ये सेंटर जो कि मोजैन यूथ फ्रेंडली सर्विसेज हैं, जिनमें से आपको कई सेवा उपलब्ध होगा, और दूसरा है जेन जी चैटबॉट। इसका इस्तेमाल से बच्चों और युवाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में कई ज़रूरी जानकारी प्राप्त हो सकता है, जैसे कि गर्भावस्था, यौन विकास, यौन शोषण, ऑनलाइन मादक द्रव्यों का गलत इस्तेमाल, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, एचआईवी एड्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में जानकारी, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक विकास, परिवार और प्यार, गर्भ निरोधक तरीकों का सही इस्तेमाल, उनका लाभ और हानि और अन्य चीज़ें। आप जेन जी चैटबॉट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जेन जी चैटबॉट का इस्तेमाल बहुत आसान है। युवा और किशोर को बस genzmauritius.com यानी कि genzeemauritius.com वेबसाइट में जाना चाहिए, जहां उनको एक चैटबॉट मिलेगा। और अगर उनको यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई प्रश्न पूछना है तो वे उस चैटबॉट को पूछ सकते हैं और वो चैटबॉट आपको एक जवाब देगा। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो वो आपको एक फ़ोन नंबर देगा जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वो चैटबॉट इंग्लिश, फ्रेंच और क्रियोल में चैट कर सकता है। ये चैटबॉट पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है और आपको कोई जज नहीं करेगा कि आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। उसमें कॉलमिंग म्यूजिक है। जब समस्या गंभीर हो गई तो आपको एक फ़ोन नंबर मिलेगा संपर्क के लिए और एक ऑफिसर आपके सहायता के लिए उपलब्ध होगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी बच्चे या युवक को किशोरावस्था में जानकारी चाहिए तो वो genzmauritius.com चैटबॉट में जा सकता है, जहां वो पूछेगा यानी कि टाइप करेगा किशोरावस्था इंग्लिश, फ्रेंच या क्रियोल में, और उसको वो सब जानकारी मिल जाएगा। और फिर चैटबॉट उसको हर बार पूछेगा कि क्या उसको ज़्यादा जानकारी चाहिए। अगर उसको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो चैटबॉट उसको ज़्यादा जानकारी देगा और अंत में एक फ़ोन नंबर भी देगा अगर उसको ज़्यादा गंभीर समस्या होगी। इस तरह उस युवक को आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। मोजैन यूथ फ्रेंडली सर्विसेज में आपको कई सेवा मिलेंगे और आप हमारे सेंटर से संपर्क बना सकते हैं या आप वहाँ आ सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप सब प्रिकॉशन लें अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पे, ताकि आपको

प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े बाद में जाकर। जैसे कि ध्यान रखने की बात है कि आप और आपके पार्टनर का 18 साल उम्र से ज़्यादा हो गया है यौन संबंध बनाने से पहले। दूसरा, आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन HIV एड्स के बारे में जानकारी ढूंढें और उससे बचने का तरीका जानें। तीसरा, आप एक कंडोम का सही इस्तेमाल करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन HIV एड्स से बचने के लिए। चौथा, आप रेगुलर टेस्ट करवाते रहें अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं। पांचवा, अगर आपको कोई ज़बरदस्ती यौन संबंध करने का प्रेशर डाले तो इसे यौन शोषण कहते हैं, आप इस मामले को रिपोर्ट करें। आप अपने पार्टनर से वफादार रहें, ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स ना बनाएं क्योंकि इससे आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको अपने स्वास्थ्य या यौन स्वास्थ्य में कुछ भी असामान्य या सस्पिशियस दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं क्योंकि कभी कभी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। ध्यान रखें कि असुरक्षित यौन संबंध के 72 आवर्स होने से पहले आपको डॉक्टर के एडवाइस से आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली ले लेना चाहिए गर्भावस्था से बचने के लिए, और 72 आवर्स से पहले ही डॉक्टर के पर्चे पर आपको पेप मेडिकेशन लेना चाहिए HIV एड्स से बचने के लिए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे सेंटर से संपर्क बना सकते हैं, मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन ला रिव फोर्स पोर्टविस, या फिर हमारे नया यू फ्रेंडली सर्विसेज मुजैन यू फ्रेंडली सर्विसेज जो कि फर्स्ट फ्लोर 21 बिल्डिंग फॉफाओ पोर्टविस पे स्थित है। आप हमें इन फ़ोन नंबरों में कॉल कर सकते हैं 2114101 या 2089233 या 2186283। ये ज़रूरी है कि पीड़ित बच्चे ये जाने कि हम आपके साथ हैं आपकी सहायता और सुरक्षा के लिए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और शुभ दिन।

0: तो अभी हम सुन रहे थे परिवार नियोजन इस कार्यक्रम को मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मिस्टर भजन ने इस कार्यक्रम के लिए, उनको हम धन्यवाद देते हैं।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

0: चलिए, खूबसूरत गानों के बीच अब समय हुआ है यहाँ पर हमारी धरोहर इस प्रोग्राम का। और आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, किरण जी जो है लाइव एंड डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है। नमस्कार किरण जी, कैसी है आप?
1: नमस्कार सुमिता जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी धरोहर इस प्रोग्राम की।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ।
1: हमारी धरोहर में आप सबको के बहुत बहुत स्वागत बा। आज फजीर से चर्चा चलता फ्रांस के, कहे कि वर्ल्ड कप में फ्रांस के अभी हार हो गल बा, तो जितना कोई निराशा वजह फ्रांस के और आपके दिल जुड़ल बा, तो चला आज पेरिस शहर के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बा ओकर पर ध्यान दे जा। पेरिस के जो पूरा केंद्रीय शहर है वो एगो

वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पेरिस के आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू और विशेषता ई कार्यक्रम में देखब जा। पेरिस शहर सेन नदी के तट पर बनल बा, खास तौर पर और दुगो नदी के संगम पर। और यहाँ पर विश्व विरासत जोन स्थल बा उमें यहाँ के नदी के जोन पुल है, यहाँ के जोन के है, इस सब कर में आवेला। सेन नदी के ऐतिहासिक अंश यानी कि पों दे सुली पों जीना

0: एकदम मनमोहक है। ई नदी में इल दे ला सिते और इल सैन लुइबा दुगो छोटा छोटा टापू और ई नदी के सैर ओकर उत्तर से दक्षिण तट करे के प्रावधान करा गल बा। हियाँ पर के निर्माण और ई नदी के प्रवाह के विभाजन ई पूरा भौगोलिक और ऐतिहासिक तत्व के दर्शावेला। हियाँ पेरिस के इतिहास के कितने परत बाटे। ई राजधानी यूरोप के पहला राष्ट्र देश में से एगो है जोन की एगो साम्राज्य बनल। हियाँ पर विकास चलल और एकर जोन आर्किटेक्चर बा उ अलग से बनल। त ई खातिर ई एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करल गल। ई सैन लुइस से पोनोफ तक, लूव से एफल टावर तक और प्लास दे ला कोंकोर्ड से लेके ग्रैंड और पेटी पाले तक पेरिस की जोन इवोल्यूशन बा ओकर इतिहास रिवियर सेन से आपके सब कुछ लौकेला। ई नदी किनारे फ्रांसीसी राजधानी के कितने मॉन्यूमेंट्स बनल बा। नोत्र डेम कैथेड्रल और सेंट शापेल मध्यकाल के आर्किटेक्चरल मास्टरपीस हवन सा। पोनोफ फ्रेंच रेनेसांस के झलक दिखावेला और ले मारे और इल सैन लुइस डिस्ट्रिक्ट के बीच जोन कड़ी बा उ 17वीं और 18वीं सदी के पेरिजन टाउन प्लानिंग के दर्शावेला। तो जैसे देखत हवा यहाँ के जोन पूरा आर्किटेक्चर यहाँ के जोन टाउन प्लानिंग बा वो बहुत ही विशेष है। 17वीं सदी से ई शुरू होल बा और आज भी ई एगो ऐसा शहर है जहाँ पर दुनिया के बहुत पर्यटक आवेला। बल्कि पेरिस और फ्रांस के ही जितना जनता हवन जा उ लोग खुद ई इलाका के बहुत पसंद करेलन जा। और जैसे तोहरा बोल ली ई साइट के एगो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है और ई आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू एकर विशेषता के बचावे खातिर यहाँ पर ट्रैफिक यहाँ पर प्रदूषण और पर्यटन के जोन संचालन बा उ बहुत ही साइंटिफिक तौर पर करल जाला। यहाँ पर देखबा था कितने इलाका में खाली आपके चाहिए चले के और यहाँ पर छोटा छोटा जो नौका बा उ भी यहाँ पर नियमित रूप से चलेला। और एकर जोन शहर बा एकर सैर करबा तो एक दिन बस नहीं होवेला आपके परी एगो पूरा सप्ताह यहाँ पर सैर करते रहे के हर एगो इलाका के आनंद उठावे के। यहाँ पर सकब जा बोले और 6 लिस्टेड साइट बा ई वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जोन है एवालिद शॉन दू मॉस जॉन दे दू ट्रोकाडेरो और नोत्र डेम कैथेड्रल। तो इस तरह से पेरिस जोन बा वो खाली प्रेमी प्रेमिका के एगो मिले के शहर नहीं है बल्कि एकर पीछे बहुत ही गहरा इतिहास भी और विरासत भी जुड़ल बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनल बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलब जा। नमस्ते।
1: धन्यवाद किरण जी इन सभी जानकारियों के लिए। नमस्कार, शुभ दिन आपको।
0: नमस्कार सुमिता, शुभ दिन।
1: और चलिए इसी के साथ हम सुबह का नजराना इस प्रोग्राम के लगभग अंत तक आ गए हैं। सवेरे के 6 से आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर साथ देते रहिएगा हमारा। आपको बता दें कि एक भोजपुरी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। 9 आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर तो होगा ही, साथ ही इसे आप लाइव देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप देख पाएंगे MBC प्ले ऐप पर भी। तो ज़रूर साथ दीजिएगा आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। अभी के लिए इस खूबसूरत गीत के साथ हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। हमारी ओर से मिलेंगे हम आपसे 10 भक्तिधारा इस कार्यक्रम में।
2: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: 19 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं आस्था, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते आस्था।
2: नमस्कार, 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब दूसरे सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। इस मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मॉरिशस में कल फ्रांस का राष्ट्र दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया, जहाँ फ्लोरियाल में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति धरम गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और कई गणमान्य अतिथि शामिल रहे। इस अवसर पर मॉरिशस और फ्रांस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। जॉन मिक माइटिंगेल की मौत से जुड़ी न्यायिक जांच के तहत बुबासा जेल का निरीक्षण किया गया। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को रोसेल जिला अदालत में होगी। और कल राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने प्लास्टिक की बोतलों पर 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को लेकर स्पष्टीकरण दिया। नई परियोजनाओं पर उन्होंने बात की, साथ ही इस क्षेत्र के लिए मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। विदेश स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में नए सैन्य हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक तेल बाजार पर भी असर दिख रहा है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए, आगे दीजिए नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: बुधवार 15 जुलाई, आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर मैं हूँ रत्ना, आ पहुंची हूँ आपका साथ देने के लिए आज के इस कार्यक्रम को लेकर। आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे, जो मनाया जाएगा 24 जुलाई को, और इसी पर आधारित आज का ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दाऊशंकर पौंगे बसावन जी, एक बार फिर आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर जी।
1: नमस्ते।
0: और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पर, जो बहुत ही लाजवाब सा टॉपिक है, और इस दिलचस्प टॉपिक में खुद की केयर कैसे करनी है, इस पर हम बात को जारी रखेंगे। तो आइए आज के इस पहले सवाल के साथ जुड़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस क्यों मनाया जाता है।
1: सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये लोगों को याद दिलाता है कि जब हम दिखाते हैं हमारे सेहत के यहाँ हमको का ध्यान करते हैं, वो सिर्फ डॉक्टर को दिखाना के यहाँ नहीं है, कि जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी जहाँ डॉक्टर देखते हैं कि जिम्मेदारी नहीं है, वो बल्कि एक व्यक्ति का अपनी जिम्मेदारी भी है
0: खुद के प्रति।
1: अगर हम देखते हैं आज के फास्ट पेस लाइफ में, हम अपनी जॉब, बिजनेस, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहते हैं, तो हम अपने हेल्थ का को कैसे छोड़ देते हैं। हम उसका
0: ध्यान प्रायोरिटी नहीं देते।
1: प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पीछे जाते हैं, भागते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पर ये ध्यान रखना, हमारे सेल्फ केयर जो बोलते हैं, ये डॉक्टर के लिए या हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है, ये बल्कि हर खुद का जिम्मेदार है। इसीलिए सेल्फ केयर डे हमें ये मैसेज देता है कि हेल्थ को प्रायोरिटी
0: देना,
1: बनाइए, हेल्दी खाना खाइए, एक्टिव रहिए, अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस को काबू में रखिए, और नींद को अच्छी तरह से लीजिए, ज़रूरत पे हेल्थ चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप पर
0: करना बहुत ज़रूरी है,
1: जाइए।
0: तो डॉक्टर जी, ये जो 24 जुलाई है, ये सेल्फ डे के लिए घोषित किया गया है, तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे आजकल तो सभी लोग, ज़्यादातर हम ये नहीं कहते कि कोई हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देता, लेकिन बहुत उतना ज़्यादा हम दे नहीं पाते, बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा एंगेज रहना पड़ता है कामों में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
1: इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत सी मैसेज है। जैसे 24/7 का मतलब

0: 24 जुलाई ओके तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 24/7 तो कुछ लोग सोचते हैं कि संडे को ये दिन है व्यायाम करने के लिए या कुछ एक्सरसाइज करने के लिए तो ये सेल्फ केयर डे है और मंडे टू
1: सैटरडे तक काम करते रहो मंडे टू फ्राइडे काम करो सैटरडे पार्टी करो और संडे फिर थोड़ा व्यायाम करो ओके
0: तो ये लोग सोचते हैं कि ये संडे पर ये नहीं है ऐसे नहीं है क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक दिन का इम्पोर्टेंस नहीं है वो 24/7 होना चाहिए तो इसीलिए 24 जुलाई को ये
1: दिन मनाया जाता है ओके यानी सेल्फ केयर का मतलब जैसे आपने कहा कि स्वस्थ रहना हेल्दी खाना खाना पौष्टिक आहार लेना समय पर नींद लेना और साथ ही साथ व्यायाम करना ये सारी चीज़ें सेल्फ केयर में आती हैं और आज के समय में ये हम दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं दूसरी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि हम अपनी सेहत का ध्यान करना भूल जाते हैं और जैसे आपने शुरू में कहा कि जब हेल्थ बिगड़ती है तब लोग डॉक्टर के पीछे भागते हैं और ये सोचते हैं कि डॉक्टर या हेल्थ केयर सेंटर्स की ये जिम्मेदारी है कि अब वो हमारा हेल्थ ठीक करे बिल्कुल हेल्थ ठीक करने के लिए डॉक्टर्स हैं पर हमारा जो हेल्थ खराब होता है उसमें बिल्कुल हमारा ही कहीं ना कहीं हाथ होता है ये समझना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे जो 24 जुलाई को मनाया जाएगा जैसे डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया 24/7 24 घंटे सातों दिन हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है तो चलिए पहले स्वयं खुद रखें स्वस्थ और फिर तभी दूसरों को हम स्वस्थ रख पाएंगे डॉक्टर जी इस बात में कितनी सच्चाई है क्योंकि हम कभी कभी दूसरों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं पर खुद के स्वास्थ्य को नहीं देखते
0: मैं कहूँगा इस बात में 100% सच्चाई है एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जब हम एयरप्लेन में जाते हैं तो वहाँ क्रू मेंबर है ना तो वो जब हवाई जहाज में बैठते हैं तब क्रू मेंबर आते हैं हमको बोलते हैं कि ओके अपना ऑक्सीजन मास्क पहले अपना पहनो फिर दूसरों के मदद कीजिए तो ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही है अगर मैं खुद हेल्दी नहीं रहूँगा तो मैं कैसे जैसे मैं डॉक्टर हूँ कैसे पेशेंट को देखूँगा अगर एक माँ खुद हेल्दी नहीं है तो वो कैसे बच्चों का ख्याल रखेगी अगर एक टीचर खुद मेंटली एग्जॉस्टेड है तो वो कैसे स्टूडेंट को इंस्पायर करेगा
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए ख्याल रखना स्वास्थ्य नहीं है ये एक जिम्मेदारी है
1: तो डॉक्टर जी जब हम खुद के देखभाल की बात करते हैं तो कई बार हम अंदर ही अंदर हमें एक ऐसी गिल्ट फीलिंग आती है कि सेल्फ केयर करना कहीं सेल्फिशनेस तो नहीं है इस पर आप क्या कहेंगे
0: नहीं बिल्कुल नहीं सेल्फिश होना और सेल्फ केयर करना दो अलग सी बात है सेल्फिश एक इंसान सिर्फ अपने पर दिखता है अपने पर सोचता है पर सेल्फ केयर करना करने वाले व्यक्ति अपनी हेल्थ का ध्यान इसलिए रखता है ताकि वो अपने फैमिली अपने काम और समाज के लिए भी बेहतर तरीके से योगदान दे सके अगर आप हर रोज 20 या 30 मिनट वॉक करते हैं हेल्दी खाना खाते हैं या अच्छी नींद लेते हैं 7-8 घंटा तो आप किसी से कुछ छीन रहे हैं नहीं
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अपना सेल्फ केयर जो करते हैं वो सेल्फिश हैं

0: self-care is not selfish. Self-care is self-respect.
1: ये बहुत बड़ी बात आपने कही डॉक्टर जी. और जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं और खुद की बात करते हैं तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेल्फ केयर की बात भी आती है. तो डॉक्टर जी, इस पर थोड़ा सा आप खुलासा कर सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक यानी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सेल्फ केयर में क्या अंतर है?
0: बहुत अच्छा सवाल. अक्सर लोग सिर्फ हेल्थ को सिर्फ बॉडी से जोड़ते हैं, लेकिन असल में हेल्थ तीन हिस्सों में बांटते हैं. पहले फिजिकल, दूसरे मेंटल और इमोशनल. ओके, तो हम पहले फिजिकल हेल्थ में कुछ बात करते हैं. तो हेल्दी खाना खाना, 7-8 घंटे के नींद लेना और हर रोज़ 20 या 30 मिनट वॉक पर जाना, ये फिजिकल हेल्थ है. जब हम मेंटल हेल्थ पर आते हैं तो इसका मतलब दिमाग को हेल्दी रखना. जैसे देखते हैं आजकल के ज़माने में स्ट्रेस ज़्यादा होता है.
1: बिल्कुल.
0: स्ट्रेस जब हम देखते हैं, हम काम पर जाते हैं, ये पहले से ही जल्दी में जाते हैं क्योंकि देर हो गया.
1: बिल्कुल, हड़बड़ी में दिन शुरू होता है.
0: तो ये एक स्ट्रेस शुरू होता है इधर शुरू से, दिन के शुरुआत से ही.
1: बिल्कुल.
0: फिर जब हम ऑफिस या काम में जाते हैं, जो पीयर्स हैं हमारे, तो वो भी थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा. काम में स्ट्रेस है, खाना नहीं खाते टाइम पर, ये भी एक स्ट्रेस हमारी ऑर्गन पर डालते हैं, हमारे स्टोमक पर डालते हैं. तो ये सब प्रेशर पहले से मेंटल हेल्थ से शुरू होता है.
1: बिल्कुल.
0: और हम अगर हम तीसरे को देखते हैं, वो इमोशनल सेल्फ केयर. अगर आप उदास हो, परेशान हो या गुस्से में हो, तो ये सब एक क्लाउड बनाता है हमारे जजमेंट पर, हमारे इंटेलेक्ट पर. तो ये क्लाउड जब बनाता है तो हम ठीक से सोच नहीं पाते. तो ये इमोशनल हेल्थ है. तो जब इमोशन तीनों
1: कनेक्टेड
0: हैं, जब इमोशन को देखते हैं, तो इमोशन वो हमारे इंटेलेक्ट को क्लाउड करते हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ है.
1: बिल्कुल सही.
0: अगर जब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो हम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी नींद नहीं आता है.
1: हाँ, बिल्कुल.
0: या जो मन नहीं करते हैं कुछ करने का,
1: तो ये हमेशा लेजीनेस फील होगा.
0: लेजीनेस फील होता है. तो ये तीनों मिलकर एक इंसान को हेल्दी बनाता है और भी उसको अनहेल्दी भी बना सकता है.
1: बिल्कुल.
0: तो ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं को देखने के लिए, जैसे कि इमोशन, एंगर,
1: एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें
0: हमको देखना चाहिए कि हम कैसे उसको काबू में रख सकें.
1: बिल्कुल. यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मेंटली कहीं पर भी डिस्टर्ब होते हैं तो उसका फिजिकल पर भी असर पड़ता है और डेफिनेटली आपके इमोशंस भी डगमगाते हैं. जो भी आप डिसीजंस लेते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गलत डिसीजन हमेशा हेस्टीली आप लेते हैं, या कई बार हम इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी. और जैसे आजकल साइकोसोमैटिक डिजीज़ का ज़माना है, जहाँ पर हमारे मानसिक और भावनात्मक फीलिंग्स या भावनात्मक जो हमारी एस्पेक्ट्स है, उस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है. जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पर, जहाँ पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ये सारी चीज़ें इंसान को किस तरह से हेल्दी भी रखती हैं, अगर ना किया जाए कोई सेल्फ केयर तो किस तरह से नुकसान भी पहुंचाती हैं, इसी पर आज का ये कार्यक्रम आधारित है. हमारे साथ बने रहिए. आज हमारे साथ डॉक्टर बसावन हैं और हमारी टेक्निकल टीम पर इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं फैज़ान, साथ है हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका और प्रोड्यूसर हमारे

रितेश मोहाबिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर और MBC के तीसरे चैनल पर आप देख पा रहे हैं। चलिए इस कार्यक्रम को एक गीत के ब्रेक के साथ जोड़ते हैं, थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं आज की चर्चा कार्यक्रम को लेकर। आज की

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं और आपको एक बार फिर याद दिला दें, इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। अगर कुछ मिस हो जाए, कुछ छूट जाए, तो दोबारा से आप कैचअप कर सकते हैं इसी कार्यक्रम को। जी हाँ, आज की चर्चा का कार्यक्रम जो आज का ये टॉपिक है, इंटरनेशनल सेल्फ केयर।

0: डे 24/7 यानी 24 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन, और बिल्कुल सेहतमंद रहना ये हमारा जन्मसिद्ध हक है, लेकिन आज हम सब कुछ करते हैं हमारे सेहत को छोड़कर, यानी सेहत पर हम अपना फोकस बिल्कुल नहीं रख पाते, और जब हेल्थ खराब हो जाती है तब जाकर कहीं दिमाग की घंटी बजती है कि अब टाइम आ गया है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल करना है। पर अगर आप डे वन से यानी पहले से ही अगर आप अपने सेहत का ख्याल करना करने की आदत रखें तो बीमार पड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी पर छोटी छोटी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं, और जैसे कि हम जानते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा निवेश करता है, पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें पूरी तरह से ख्याल रखना है, और आज डॉक्टर बसावन हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर जी से आइए जानते हैं। डॉक्टर जी, अगर हम डेली रूटीन की बात करें, आज हर कोई इंसान भाग दौड़ में लगा हुआ है, रेस में लगा हुआ है, तो 5 मिनट का सेल्फ केयर रूटीन अगर हमें बनाना है जस्ट फॉर 5 मिनट्स, तो कैसे तैयार करें?
1: देखो, लोग अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब, मेरे कैबिनेट में डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं कहूँगा कि अगर 5 मिनट हैं तो वही से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट के लिए हम रिलैक्स करते हैं। कैसे रिलैक्स करना है? तो धीरे धीरे सांस अंदर लेना है और उससे धीरे सांस बाहर देना है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये 1 मिनट से कीजिए, तो ये इससे क्या होता है, इससे बॉडी रिलैक्स हो जाता है। फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, जैसे हमारे कंधों के, नेक के, हमारे घुटनों, नीज के
0: जी,
1: तो थोड़ा सा मूव कीजिए। जैसे आप ऑफिस में, जो भी ऑफिस में काम करते हैं वो ज़्यादातर बैठे ही रहते हैं
0: जी,
1: तो क्या करना चाहिए, ये थोड़ा स्ट्रेचिंग, एक घंटे के बाद आपने जो भी है कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी से
0: थोड़ा उठिए,
1: थोड़ा मूव कीजिए। उसके बाद ग्रास वाटर, पानी, हम जब देखते हैं पेशेंट को तो ये होता है कि हर कोई कम पानी पीते हैं आजकल के ज़माने में,
0: भूल जाते हैं।
1: तो ये एक हमको सेल्फ केयर में, एक ये 5 मिनट में जो भी थोड़ा मूव कीजिए, पहले से अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं, फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग, फिर एक ग्लास और पानी, और फिर जब हम देखते हैं वो मोबाइल हैं, सोशल मीडिया या फेसबुक या स्क्रोलिंग करते हैं, 5 मिनट मिला हमको 5 मिनट मिला ये रिलैक्स करने के लिए, बल्कि हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं। सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं, खून या
0: जो भी एक्सीडेंट, जो भी है, मतलब अनवांटेड इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं।
1: तो ये अनवांटेड इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को काम करते हैं,
0: बिल्कुल
1: डिस्टर्ब करता है
0: जी।
1: तो ये सब जब ये 5 मिनट हम लेते हैं हमारे लिए
0: जी,
1: हर रोज जब काम में हैं, जो भी हम करते हैं, ये 5 मिनट से शुरू होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: इसमें एक जैसे मंत्र है, जब हम ये पॉजिटिव बात करते हैं, जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे अंदर से, तो कहूँगा कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगा,
0: ये एक मंत्र है।
1: हाँ,
0: मंत्र के तौर पर इसे रिपीट करना है।
1: तो ये जब हम कहते हैं हमसे, तो क्या होता है, अगर लंच में जो ऑफिस में काम करते हैं लंच पर जाते हैं और थोड़ा

0: ऑयली फूड खाएंगे वो नहीं खाएंगे क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए.
1: मतलब आपको कहीं ना कहीं वो याद दिलाता है कि क्या आपके शरीर के लिए अच्छा है, क्या आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है. यानी ये बार बार आपने दिमाग को ये मंत्र रटते रहना है कि मैं अपने हेल्थ का ख्याल रखूँगा या रखूँगी. तो ये एक मंत्र जो डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल हर कोई ये मंत्र जाप कर सकता है कि मैं अपने शरीर का पूरा ध्यान रखूँगा या पूरा ध्यान रखूँगी. ये बार बार आपके शरीर को आपको याद दिलाना है, क्योंकि दिमाग बहुत ही चंचल है और वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है. कई बार हम कहते हैं ना कि हम टेम्प्ट हो जाते हैं, हमारे सामने भाई कोई लगा दे थाली और लाजवाब उसमें हो व्यंजन, तो खाने का मन तो हर किसी को करता है. पर ये बात हमेशा याद रखना है कि ये हमारे लिए सेहतमंद है या नहीं. हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल कोई भी अच्छा स्वादिष्ट खाना ना खाएं, लेकिन आपके शरीर को पौष्टिक आहार की ज़्यादा आवश्यकता है. स्वादिष्ट तो चलो कुछ मिनट के लिए होता है, लेकिन फिर उसके बाद आपके बॉडीज़ में कितनी कैलोरीज आप इनपुट करते हैं ये भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. चलिए जब हम हाइड्रेटेड रहने की बात करते हैं तो डॉक्टर जी, सेल्फ केयर में हाइड्रेटेड रहना, मूव करना, मेडिटेट करना, क्या ये इतना सा काफ़ी रहता है हेल्दी रखने के लिए अपने आप को?
0: ये तीनों जो आपने बोला भी, हाइड्रेटेड रहना, मूवमेंट करना और मेडिटेशन, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं पर काफ़ी नहीं है. हेल्थ एक पजल जैसा है
1: जी,
0: जो एक पीस मिसिंग हो तो पजल पूरा नहीं होता.
1: सही बात.
0: तो हाइड्रेशन ज़रूरी है. हमारे बॉडी के 60% वाटर हैं, तो हमको पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब हम चलते हैं, सांस लेते हैं, तो ये सब पानी जाता है, तो हमको पानी रिप्लेस करना चाहिए. ये पहले हाइड्रेशन के लिए. दूसरे मूवमेंट के लिए, हमारे बॉडी चलने के लिए बनती है. और अगर हम पूरा दिन सिर्फ बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो ये एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाता है ना.
1: बिल्कुल.
0: तो ये अगर पूरा दिन हम ऐसे करते हैं तो एक चीज़ पक्का, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्टेरोल, दिल का बीमारी, ये सब हो सकता है. तो इसीलिए मूव करना ज़रूरी है. मेडिटेशन भी ज़रूरी है क्योंकि वो स्ट्रेस को कम करता है, हमारे लक्ष्य को दिखाता है, ऑब्जेक्टिव को.
1: जैसे आप बता रहे थे, क्लाउडीनेस जो हमारा फॉर्म हो जाता है उसे वो क्लियर करता है. तो बिल्कुल सोचने की जो क्षमता है वो क्लियर होती है, फोकस रहने में हमें वो सहायता करता है जी. तो डॉक्टर जी, जब हम बात करते हैं एक्सरसाइजिंग की, खाने की, आराम करने की, तो ज़्यादातर लोग जो हम नॉर्मल आम इंसान जो है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या इग्नोर करता है, सबसे ज़्यादा मतलब किस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जिसके कारण हमारा जो हेल्थ है उस पर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है?
0: मुझे लगता है कि समय में सबसे ज़्यादा नींद, स्लीप, स्लीप को हम इग्नोर करते हैं. लोग सोचते हैं कि काम करना, तो जब हम सोते हैं तो काम कम करेंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो क्या करते हैं, हम अपने नींद घट लेते हैं और काम को ज्यादा करते हैं.
1: बिल्कुल.
0: महिलाओं
1: बिल्कुल
0: हर रोज सुबह से शाम तक
1: बहुत मैं समझती हूँ, हर घर की ये समस्या है कि महिलाएं सबसे पहले उठती हैं और सबसे लास्ट जाती हैं सोने के लिए.
0: तो जब हम देखते हैं एक एक एक तरफ, जापानीज बोलते हैं 8-8-8,
1: ओके,
0: 8 घंटा सोना.
1: हाँ,
0: 8 घंटा अपना काम करना और 8 घंटा बाकी.

0: हाँ जी बिल्कुल,
1: वो आध घंटा में अपना हर दिन का जैसे नहाते हैं, ब्रश करते हैं, जो भी हमारे सर्व का कुकर जैसे खाना पकाते हैं, वो सब वो आध घंटे में होता है। तो इस आध घंटे में थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक्सरसाइज करे, या ये सही है। पर रिसर्च बताती हैं जो नींद है, अगर हम उसे कम या इग्नोर करते हैं तो वो पहले इम्यूनिटी को कम कर देता है, दूसरे वो मेमोरी को
0: घटाता
1: है, दूसरे तीसरे ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि आप सिर्फ काम कर रहे हो। तो ये तीनों के लिए अगर हम नींद अच्छे से लेते हैं तो वो मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेस कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा, मूड खराब नहीं होगा, जैसे खिचखिचाना, ऐसे
0: चिड़चिड़ापन।
1: हाँ, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि स्लीप लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसको इग्नोर
0: नहीं करना चाहिए। और मैं समझती हूँ जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी में भी रिपेयरिंग चलती है, हमारे बॉडी में भी रिजुविनेशन होता है, यानी जो भी जो सेल्स है जो बहुत थक गए हैं एक तरह से उन्हें आराम मिलता है। जिस तरह से हमारी जो गाड़ी होती है एक टाइम के बाद उसे सर्विसिंग पर भेजना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये जो स्लीप है, ये जो नींद है, ये एक तरह की सर्विसिंग है जो हमारे शरीर को बिल्कुल 8 घंटे उसको मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती तो सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं शुरू होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, डॉक्टर जी बता रहे थे कि हम हमेशा बहाना बनाते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो डॉक्टर जी इसका तोड़ कैसे निकाला जाए? जैसे आप बता रहे हो कि टाइम नहीं है सेल्फ केयर के लिए, आप बता रहे थे 5 मिनट का तो हमें लगभग करना ही है, अगर हमें बीमार नहीं पड़ना है तो अगर आप एटलीस्ट 5 मिनट हर 1 घंटे या हर 2 घंटे में 5 मिनट अगर आप अपने आप को देना शुरू करेंगे, वो 5 मिनट का रिलैक्सेशन, वो 5 मिनट का यानी पानी पीना, उस टाइम के अंदर आप अपना जैसे वॉशरूम जाना वगैरह जो भी आप कार्य करते हैं 1 या 2 घंटे के अंतराल में, तो ये 5 मिनट आप अपने आप को डेडिकेट कीजिए, मोबाइल को दूर रखें, ये सारी चीज़ें सेल्फ केयर में गिनी जाती हैं। आज का ये कार्यक्रम इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस पर आधारित रखा गया है। तो चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा को कार्यक्रम को जारी रखते हैं। इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पर आधारित आज का ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस। डॉक्टर बसावन आज हमारे साथ है। डॉक्टर जी, आज का जो दुनिया, आज की जो दुनिया है, आज का जो समय है, वो तनाव से भरा हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि तनाव सिर्फ बड़े लोगों को है, तनाव बच्चों को भी है, तनाव जो वृद्ध लोग हैं उनको भी है, तनाव सभी ओर है। तो तनाव को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं?
2: आज के समय में तनाव यानी स्ट्रेस लगभग हर इंसान के जिंदगी का भाग हो गया है। थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, लंबा चलता है, तब वो हमारी हेल्थ को नुकसान करता है। तो ये स्ट्रेस जब हम देखते हैं, हमने अभी कहा था कि हम जब काम पर जाते हैं, शुरू दिन से ही 10 मिनट के बाद घर निकला तो 10 मिनट का लेट हो गया।
1: हाँ।
2: तो स्ट्रेस वहीं पर शुरू होता है।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: तो ये स्ट्रेस को मैनेज के लिए क्या करना है, तो मैं कहूँगा रोज 20 या 30 मिनट वॉक पर जाइए। अगर रोज नहीं तो एक हफ्ते में 3 बार या 4 बार चले जाए। तो इसमें क्या होता है, जब हम वॉक पर जाते हैं तो हम सोचते नहीं हैं हमको खाना बनाना है, हमको ये करना है, वो करना है, जो भी घर का चीज़ है या काम का चीज़ है, हम वो नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं ओके, हमको वहाँ जाना है। तो इसमें थोड़े म्यूज़िक लगाते हैं, फिर चलते हैं। मैं बोलूँगा कि म्यूज़िक नहीं, जाकर थोड़े ये फॉरेस्ट में
1: या नेचर
2: में वॉक कीजिए। तो जब हम वहाँ पर वॉक करते हैं तो स्ट्रेस इमोशन पहले बाहर आते हैं, वो स्ट्रेस को कम करता है। और जब हम वॉक पर वापस आते हैं तो एक्सरसाइज भी किया,
1: बिल्कुल,
2: तो फिजिकल
1: मेंटल भी
2: हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जी, यहाँ पर इशारा है कि एक फोन कॉल है, हम हेडसेट लगा लेते हैं ताकि हम अपने कॉलर को सुन पाएं, उनका क्या सवाल है, आइए जानते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते जी, आपका स्वागत है।

0: और डॉक्टर जी को भी नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते।
0: और बहुत धन्यवाद उनको।
2: हाँ जी।
0: तो मैं भी कुछ जोड़ना चाहता हूँ।
2: हाँ जी।
0: जबकि एक परिवार में चार लोग रहते हैं तो और तीन लोग घर के काम में हाथ, तीन लोग घर के काम कुछ नहीं करते, सिर्फ एक ही व्यक्ति पर सब काम छोड़ देते हैं करने के लिए, तो वो उनको वो सो नहीं पाते, स्ट्रेस और वो बीमार हो जाते, और उनकी जितनी कला भी है भजन या संगीत सब छूट जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारा परिवार हमारा धन है, हमें अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहिए। धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बिल्कुल सहमत हैं अब आपकी बात से, क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ पर कई बार जब हम घर के कामों की बात करते हैं और बर्डन केवल एक पर आ जाता है, तो जैसे हमने शुरुआत में कहा कि इसमें एक इंसान सेल्फ केयर कैसे करे, क्योंकि उसे सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर जी?
1: जब ये हम देखते हैं तो जब एक इंसान सारा काम करता है तो कौन सा शिकार होता है उसको?
2: सही बात।
1: उसको बर्नआउट का शिकार होता है, जो अभी
2: यस्मान
1: भाई जी ने कहा
2: जी।
1: एक इंसान वो सारा काम करता है और तीन
2: आराम से
1: बैठते हैं, तो पहले वो एक इंसान पर स्ट्रेस हो जाता है, मेंटली और इमोशनल थकान हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: तो फिर उसको कुछ करने में उसको उसका मन नहीं है, कुछ कोई भी काम है जो घर का है या बाहर का है, जो भी है उसको ये काम का
2: एक जैसे जोश होता है, खुशी होती है, वो नहीं है।
1: फिर चिड़चिड़ापन बन जाता है।
2: सही बात।
1: कभी कभी फिर नींद भी घट जाता है, क्योंकि वो सोच में रहता है। तो ये सब उसको काबू में रखने के लिए ये एनवायरनमेंट के बाहर जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वॉक। उस एनवायरनमेंट के बाहर जाइए और वो कीजिए। जब वो करोगे तो कुछ हमारे इंटेलेक्ट भी काम करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: हमारे जो फिजिकल हैं वो भी रिलैक्स, जो हमारे शरीर हैं वो भी रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जब हम घर पर जाएंगे तो वहाँ पर ये चिड़चिड़ापन, ये स्ट्रेस का, ये गुस्सा का की फीलिंग,
2: यानी उस माहौल से बाहर निकलना है,
1: माहौल
2: उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलिए, थोड़ी देर के लिए वॉकिंग कीजिए। हो सकता है कि उस सिचुएशन को एट दैट टाइम हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी हमें साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, कपड़े घड़ी करने, बहुत सारे काम होते हैं घर के, बहुत सारे कामकाज होते हैं, पर उसमें से भी थोड़ा सा टाइम निकालिए और निकलिए उसमें से बाहर, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, और रिलैक्स करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जैसे डॉक्टर जी ने बताया कम शब्दों में कि सेल्फ केयर करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में, अपनी लिस्ट में पहला होना चाहिए, और जैसे शुरुआत में हमने बताया कि खुद का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। दूसरों का ख्याल तो हम रखते ही हैं, पर अपने आप को बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे पाते। और जब महिलाओं की भी बात करते हैं तो महिलाओं पर ये ज़्यादा पड़ता है प्रभाव, क्योंकि महिलाएं हैं जो सबसे पहले उठती हैं, बच्चों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, काम पर भी जाना, पति का ख्याल रखना, और साथ ही साथ समाज में कई ऐसे रिश्ते हैं जो वो निभाती हैं। तो क्या महिला के लिए, जैसे अभी आपने बताया कि ये प्रभाव बहुत उन पर असर पड़ता है, इसीलिए जैसे डॉक्टर जी ने हमें समझाया कि थोड़ा समय निकालिए केवल आपके लिए, कम से कम 30 मिनट्स दिन का आप अपने लिए, खुद के लिए निकालिए। तो डॉक्टर जी, क्या सेल्फ केयर में काउंसलिंग जैसी चीज़ हेल्प करती हैं?
1: काउंसलिंग जब हम देखते हैं तो ये एक बुरी बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो वो पागल है।
2: बिल्कुल।
1: तो नहीं, साइकोलॉजिस्ट जैसे हमें डायबिटीज

0: हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हाथ टूट गया तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के यहाँ जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: अगर आई का कुछ प्रॉब्लम है, आँख का कुछ प्रॉब्लम

0: वो है साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिक। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ये एक बात नहीं है कि ये
1: दिमागी तौर पर उनको कोई बहुत समस्या है,
0: एक टाबू की तरह है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो ये टाबू हमको तोड़ना है, क्योंकि अगर मेंटली थक चुके हो, एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग देता है तो ये आपको सही कर देता है।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलती है कि हमें क्या करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पाते और ऐसी हालात में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो नहीं होना चाहिए। और जहां पर अगर हम किसी एक व्यक्ति का या एक डॉक्टर का एक सहायता लेते हैं, जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि अभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर काउंसिलिंग करवाना, ये भी कोई गलत बात नहीं है। खुद की सेल्फ केयर कैसे करनी है, अगर आपको कोई अच्छे से गाइड करता है तो में कोई गलत बात नहीं है। और बिल्कुल, एक और ऐसा महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर जी, आज के समाने में हम जब सेल्फ केयर की बात करते हैं तो कोई हमें ये भी कहेगा कि ओ हो, अब अलग से खर्च करना पड़ेगा सेल्फ केयर के लिए, मतलब अब कोई हेल्दी खाने के लिए हमें अलग से खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि आज बाजार में आप जाके देखिए, कोई कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बाज़ार में जाओ तो आपको दिखाई देगा कि ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, या ऐसे भी है कि जो हेल्थ को लगती हुई चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हो सकता है हमारे बजट को एक्सीड करे। तो डॉक्टर जी, ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या सेल्फ केयर करने के लिए हमें अलग से कोई बजट बनाना ज़रूरी हो जाता है?
0: अलग से नहीं, क्योंकि जब हम सोचते हैं सेल्फ केयर, वो स्पा या हॉलीडे पर जाना, उसका ये मतलब नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप या ये
1: एक्सपेंसिव खाना, बायो वाले जो ऑर्गेनिक खाना। हाँ जी,
0: अब ये कुछ मैं प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा कुछ प्रोडक्ट है वो बोलेगा ओके, ये प्रोडक्ट आप तीन एक आपके लिए सही है, तो एक मार्केटिंग है। तो ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो आप ले सकते हैं, ये सब सेल्फ केयर का भाग नहीं है। सेल्फ केयर का भाग है जब सुबह हम जागते हैं वो फ्रेश हवा में वॉक करना,
1: इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते,
0: इसको पैसे नहीं लगते। डीप ब्रीफिंग करना, पैसे नहीं लगते। योगा यूट्यूब पर देखना, योगा सीखना, योगा कीजिए, पैसे नहीं लगते।
1: बिल्कुल।
0: अगर नींद लेना है तो वो भी पैसे नहीं लगते।
1: सही बात।
0: तो पानी पीना है, फैमिली के साथ बैठ के
1: क्वालिटी
0: टाइम या दोस्तों के साथ, पैसे नहीं लगते हैं।
1: सही बात। स्माइल करना, हंसना, अंदर अच्छा फील करने के लिए, इसके लिए भी पैसे नहीं लगते।
0: तो मैं कहूँगा सेल्फ केयर के लिए पैसे से ज्यादा नियत और डिसिप्लिन चाहिए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: रोज के छोटे छोटे स्टेप अगर हम हेल्दी हैबिट्स डालते हैं तो ये एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर एक घर जैसा है जो हम इसमें लिव
1: रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जो लाइफ टाइम का है, तो इस घर को हमको
1: किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हमारा जो शरीर है वो मंदिर की तरह है। और जैसे हम मंदिर को गंदा नहीं रखते, मंदिर को दूषित नहीं करते, मंदिर में कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं करते, हमारे शरीर को भी हमें वैसे ही रखना है। तो डॉक्टर जी, आज के इस कार्यक्रम के लगभग समाप्ति तक हम आ पहुंचे हैं, तो हम आप हमारे श्रोताओं को इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे?
0: ओके, एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तीनों आपको संभालना है, पहले फिजिकल हेल्थ, दूसरे मेंटल हेल्थ और तीसरे इमोशनल हेल्थ। जब हमने अभी बातचीत की कैसे उनको

0: हम क्या क्या कर सकते हैं उनको एक अच्छी, जैसे हम देखते हैं हमारे बॉडी को सर्विसिंग चाहिए, जैसे एक गाड़ी को सर्विसिंग चाहिए, हमारी बॉडी को भी एक सर्विसिंग चाहिए। जो ये है सेल्फ केयर। तो
1: बिल्कुल.
0: ये तीनों जो हमने बात किए पहले, ध्यान रखिए, हर रोज़ थोड़ा वॉक करिए, व्यायाम अच्छी तरह से करिए, खाना अच्छी तरह से खाइए, थोड़ा ऑयली ये सब जो अच्छा नहीं है आप जानते हैं, उसको सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है। और हर रोज़ का डिसिप्लिन में छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो ये हेल्दी हैबिट हमको डालना है। जब आप स्वस्थ होते हैं तभी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपनों का सहारा बन सकते हैं।
1: बिल्कुल.
0: तो इसी संदेश से मैं आपको विदा लेता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी. और सच में आज का जो टॉपिक रहा अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस, तो आप अपने सेहत के मालिक हैं, आपको अपनी देखभाल खुद करनी है थोड़ी जिम्मेदारी. और बिल्कुल हर कोई जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. बस ये रिवीजन करते रहना बहुत आवश्यक है. रोज़ अपने आप को ये याद दिलाना कि स्वस्थ रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है और मैं स्वस्थ रहूँगा या मैं स्वस्थ रहूँगी. क्योंकि मैं अगर बीमार हो गई तो मेरे बाद जो है उनका देखभाल, उनकी देखभाल कौन करेगा. और अगर आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं तो बेशक आपके बाद जितने भी लोग हैं वो आपके इशारों पर यानी आपके नक्शे कदम पर चलेंगे. तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बल दे रहा है. और आज देखा गया है कि हर एक सेंटर में, हर एक गाँव में आपने देखा है सेंटर्स में योगा के क्लासेस, जुम्बा के क्लासेस और ऐसे कई सारे क्लासेस चलाए जाते हैं, वे भी निशुल्क तौर पर, जहां पर आप जाकर सीख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपने लिए एक समय निकाल सकते हैं. बेशक आप इसको प्रावधान दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए. इसी के साथ हमारी टेक्निकल टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे. टेक्निक पर हमारे साथ जुड़े रहे फैज़ान, साथ ही हमारी साथ हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका और प्रोड्यूसर रितेश महाविया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे दर्शकों का, हमारे श्रोताओं को धन्यवाद. और सबसे पहले बिल्कुल धन्यवाद देंगे डॉक्टर बसावन को. और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देंगे और फिर मिलेंगे एक अगले कार्यक्रम के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रत्ना को दीजिए अनुमति. नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को. आज की

0: मिलते हैं आशा से जानते इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब दूसरे सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड सामने आमने सामने रहेंगे। इस मुकाबले को लेकर फुटबॉल

0: प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। मॉरिशस में कल फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया। फ्लोरियाल में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति धरम गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और कई गणमान्य अतिथि शामिल रहे। इस अवसर पर मॉरिशस और फ्रांस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। जॉन मिक मॉटिंगेल की मौत से जुड़ी न्यायिक जांच के तहत बुबासें केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया गया। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को रोसिल जिला अदालत में होगी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने प्लास्टिक की बोतलों पर 2 रुपए के एक्साइज ड्यूटी को लेकर स्पष्टीकरण दिया। साथ ही इस क्षेत्र के लिए मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में नए सैन्य हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। वेजे रोड गुडलैंड्स में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की रत्नावली चलोबी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें रत्ना के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज सुबह के 3 बजे उनकी बेटी के मकान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोंग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ यह है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: बुधवार 15 जुलाई घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:03 होने को है। रेडियो मॉरिशस पर पुनः हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन, सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। भक्ति धारा ये कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हम आप सबकी सेवा में जुड़ चुके हैं। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। जहाँ कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छे से आरंभ हुआ होगा आप सभी के लिए, और ईश्वर की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा रहे, उनकी कृपा दृष्टि सदा रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए आज के कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। आपको ये भी याद दिला दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी, डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। तो अभी के लिए भगवान गणेश का नाम लेते हैं। भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर करते हैं, तो यदि हमारे जीवन में भी किसी प्रकार का कोई विघ्न है, भगवान गणेश के आशीर्वाद से वो विघ्न टल जाए, दूर हो जाए, और उनकी कृपा दृष्टि सदा हमारे जीवन पर बनी रहे।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो भक्ति धारा इस कार्यक्रम में चलिए अभी के लिए हम बढ़ेंगे कार्यक्रम विनय

0: श्रद्धांजलि की ओर और इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में, तो आइए उनको सुनते हैं।
1: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
2: प्रिय श्रोतागण सादर नमस्ते, विनय अंजलि आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे एक बहुत ही मधुर भजन से, आप इसका रसास्वादन करें। गायक हैं प्रदीप।

श्रोता बंधुओं, आज का संदेश आधारित है यजुर्वेद के 25वें अध्याय के 8वें मंत्र पर। मंत्र इस प्रकार है, ओम तमीशानम जगतस्तस्थुषस्पतिम धियंजिन वम वसे हुमहे वयम पूषा नो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुर दब्ध स्वस्ते। इस मंत्र में परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना दोनों निहित हैं। श्रोताओ, क्या आप जानते हैं कि स्तुति और प्रार्थना का अर्थ क्या है? इन दोनों शब्दों के माने क्या है? चलें हम इस पर विचार करते हैं। बृहद हिंदी शब्दकोश में इस दोनों शब्दों के सुंदर अर्थ दिए गए हैं। स्तुति शब्द का अर्थ बताया गया है किसी के गुणों का वर्णन, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते तो हम उनके इस गुण की प्रशंसा करते हैं और अपने मित्र से कहते हैं कि हमारे पिताजी सत्यवादी है। ऐसा वर्णन करना स्तुति है। यदि पिताजी दुखियों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं तो हम उन्हें दयालु कहेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर के गुणों का जब हम वर्णन करते हैं तब हम कहते हैं कि हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। प्रार्थना शब्द के अर्थ बृहद हिंदी कोश में इस प्रकार दिए गए हैं, किसी से कुछ देने या करने के लिए नम्रता पूर्वक कहना। प्रार्थना का अर्थ है विनय, विनती, निवेदन, मांगना। श्रोतागण, महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तिका आर्योदेश्य रत्नमाला में इन दोनों शब्दों के अर्थ बताते हुए लिखा है, जो ईश्वर व किसी दूसरे पदार्थ के गुण, जान, कथन, श्रवण और सत्य भाषण करना वह स्तुति कहती है। प्रार्थना के बारे में महर्षि लिखते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य की सहाय लेने की जो भावना होती है वह प्रार्थना कहलाती है। महर्षि दयानंद ने साफ साफ बता दिया कि प्रार्थना करने वाले को प्रार्थना का फल देने के लिए पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम, प्रयत्न, कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम अपनी माताजी से प्रार्थना करते हैं कि माँ मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दीजिए, जिस तरह अपनी भूख मिटाने के लिए हम भोजन का कौर मुंह में डालकर उसे चबाते हैं, कर्म करते हैं, तब कहीं जाकर हमारी भूख मिटती है। इसी प्रकार हम अपनी प्रार्थना का फल तब पा सकते हैं जब हम उसके लिए पुरुषार्थ परिश्रम करते हैं।

इस मंत्र में परमात्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। 6 गुण बताए गए हैं। पहला गुण है पतिम, अर्थात सबके स्वामी। परमात्मन हम सबके स्वामी हैं। दूसरा गुण है ईशानम, सकल ऐश्वर्यों के स्वामी। जितने भी ऐश्वर्य हैं सब के स्वामी परमात्मन हैं, इसलिए परमात्मा को ईशानम कहते हैं। तीसरा गुण पूषा बताया गया। पूषा का मतलब है पोषण करने वाले। प्रभु हमारा पोषण कर रहे हैं, अन्न जल आदि देकर हमारे शरीर का पालन कर रहे हैं। चौथा शब्द आया रक्षिता। रक्षिता का मतलब है रक्षक परमात्मा। परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई रक्षक नहीं। इस संसार में अनेक दुख हैं, अनेक संकट हैं। उन सभी संकटों से यदि कोई हमारी रक्षा करता है तो वह परमात्मा है। इसे परमात्मा को इस मंत्र में रक्षक कहा जा रहा है। पांचवा शब्द पायु आया हुआ है। पायु द्वारा परमात्मा के गुण की स्तुति की जा रही है। पायु का अर्थ है पालने वाला परमेश्वर। प्रभु हमारा पालन करते हैं, हवा देते हैं, सांसें चलती हैं, पानी देते हैं, प्यास बुझती है, अन्न देते हैं, फल देते हैं, हम भूख मिटाते हैं, इस तरह वे हमारा पालन करते हैं। और छठा गुण परमात्मा का बताया गया अदब्ध। अदब्ध का मतलब है अविनाशक, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा रहता है। प्रभु अदब्ध है। इस मंत्र में शब्द आये जगतस तस थुषस्त, अर्थात दो प्रकार के जगत हैं। एक जगत जो चलता है, जिसको हम जंगम कहते हैं, जैसे मनुष्य चलता है, पशु पक्षी ये सब चर हैं, चलने वाले जंगम हैं। चलने वाले इस जगत को चर जगत कहते हैं। दूसरे प्रकार का जगत है स्थावर। स्थावर जगत चलता नहीं, जैसे घर है, पहाड़ है, भूमि है आदि, ये सब स्थावर जगत है। परमात्मा इन दोनों प्रकार के जगतों यानी चर और अचर के स्वामी हैं। प्रस्तुत मंत्र ने कहा तमिशानम जगतस्तस थुषस्त पतिम। फिर इस मंत्र ने उपदेश दिया धियंजिन व मवसे हु महे वयम, अर्थात कर्मों और बुद्धियों को जीवन प्रदान करने वाले हे परमात्मन, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका आवाहन करते हैं, आपको बुलाते हैं। हम आपको क्यों पुकारते हैं? क्योंकि आप पूषा हैं, पोषक हैं, अन्न जल हवा पानी देकर हमारा पोषण करते हैं, इसलिए हम आपका आवाहन करते हैं। फिर इस मंत्र में आगे कहा गया यथा वेद साम सद्वृद्धि, हमारे जान और धन की वृद्धि करते हैं। प्रभु हैं कैसे, तो जान देने वाले, धन देने वाले, इन सब को वही बढ़ाते हैं। प्रार्थना है परमात्मन, आप हमारे धन और जान में वृद्धि करके स्वस्थ ये हमारा कल्याण कीजिए। आप रक्षिता यानी रक्षक है, हमारी रक्षा कीजिए। आप पायु अर्थात पालक हैं, हमारा पालन कीजिए। अदब्ध अर्थात हमें विनाश से बचाइए। यजुर्वेद के इस मंत्र का उच्चारण करके हम समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु को अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं, अपने पोषण और कल्याण के लिए उनका आवाहन करते हैं। श्रोतागण, जब हम इस मंत्र का पाठ करें, यह स्वस्ति वाचन के अंतर्गत हम बोला करते हैं। स्वस्ति वाचन का मतलब है स्वस्ति अर्थात कल्याण के लिए वाचन करना, बोलना। हम उस प्रभु का इस मंत्र के द्वारा आवाहन करते हुए अपने कल्याण की प्रार्थना करते हैं, सुख की प्रार्थना करते हैं, अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। इस तरह जब हम मंत्रों के भावों पर विचार करते हैं, तब हमारी प्रार्थना सार्थक होती है, फलीभूत होती है। आशा इस पर आप ध्यान देंगे। इस कार्यक्रम में साथ दिए

या है टेक्नीशियन के रूप में श्रीमती अंजु लक्ष्मण जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं, आपने सुना आभार प्रकट करते हैं। हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक आप एक भजन का रसास्वादन कीजिए। नमस्ते।

सुन रहे थे कार्यक्रम विनय अंजलि। इस कार्यक्रम के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। भक्ति धारा यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर। दिन के 10:30 बज चुके हैं और कहते हैं श्रोताओं के जीवन में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है, जीवन में डिसिप्लिन का होना बहुत आवश्यक है। जिस भी लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ सपने देखेंगे उतना पर्याप्त नहीं होता है, उन सपनों को साकार करने के लिए प्रयास आवश्यक होते हैं, मेहनत की आवश्यकता होती है और साथ ही जीवन में धैर्य बनाए रखना और उसके साथ साथ अनुशासन का होना भी उतना ही आवश्यक होता है। ये सारी चीज़ें जब साथ में होती हैं तो जीवन में हमें सफलता अवश्य ही मिलती है।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओ, कहते हैं इस ब्रह्मांड में हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन कितनी निष्ठा के साथ, कितने विश्वास के साथ, कितने दृढ़ संकल्प के साथ हम मांग रहे हैं ये हम पर निर्भर करता है। कभी कभार हम जो चाहते हैं हम उसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि क्या हम इसके काबिल है, क्या हम इसके लायक है, क्या हमें मिल सकता है। लेकिन जो भी इच्छाएं हैं हमारी, अगर हमें अपनी इच्छाओं पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है इस संसार में जिसे हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बस विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए और जो कुछ चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रयास भी आवश्यक होता है।

ईश्वर का नाम जपते जपते, ईश्वर के का ध्यान करते करते हम मानो एक अलग ही वातावरण को अपने आसपास जिसकी अनुभूति हम करने की जो है करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ईश्वर का नाम जहाँ होता है, ईश्वर का स्मरण जहाँ पर किया जाता है, अपने आप में वो वातावरण सकारात्मक हो जाता है, सभी नकारात्मकताएं अपने आप दूर हो जाती हैं और रास्ते जो है जीवन के खुलने लगते हैं और सबसे बड़ी बात मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तभी तो मन में अच्छे विचार आते हैं और अच्छे विचार हमें अच्छे

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, दिन के 10:51 हो रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति

0: यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, खासकर रियोबेल, सुरीनाम के मौसलमो, दनपत, सैलिश मेयर रियोबेल, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर गुरुवार 16 जुलाई को, यहाँ पर कल गुरुवार 16 जुलाई को सुबह के 9 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच, सुबह के 9 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, आज सवेरे के 6 बजे से आप सभी प्यारे श्रोताओं का साथ हमको मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और देखते ही देखते भक्ति धारा इस कार्यक्रम के हम लगभग अंतिम चरम पर आ चुके हैं। जाते जाते इस अंतिम आरती के साथ हम आपसे विदा लेंगे। जाते जाते मन में यही कामना हम करेंगे कि ईश्वर जो है सदा आपका कल्याण करे, ईश्वर जो है सदा आपका मार्गदर्शन करे, और ईश्वर जो है सदैव हमें प्रेरित करते रहे कि हम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते रहे और कभी भी अपने मार्ग से हम भटके नहीं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेंगे। 11 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: से मिलते हैं जहां इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। जॉन माइक मॉटिंगेल की मौत से जुड़े न्यायिक जांच के तहत बोबास केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया गया। जिला मजिस्ट्रेट डेनी विलियन और डीपीपी के प्रतिनिधियों ने उस सेल का दौरा किया जहां 8 सितंबर 2024 को जॉन माइक मॉटिंगेल की मौत हुई थी। इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण स्थानों जिनमें कंट्रोल रूम भी शामिल हैं का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि जॉन माइक मॉटिंगेल को 29 अक्टूबर 2022 को एसएसओ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। एक यूक्रेनी यात्री ने उसे उस व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान की थी जिसने उसे 44 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य के ड्रग्स से भरे दो बोतलें दी थी। मॉरिशस में कल फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया। इस अवसर पर फ्लोरियाल स्थित फ्रांस के राजदूत के सरकारी निवास पर एक स्वागत समारोह

0: आयोजित किया गया। इनमें राष्ट्रपति धर्म गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, सरकार के सदस्य, राजनयिक समुदाय तथा मॉरिशस में रह रहे फ्रांसीसी समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अपने संबोधन में फ्रांस के राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन ने मॉरिशस और फ्रांस के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मॉरिशस यात्रा और इस वर्ष फ्रांस अफ्रीका समिट में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की भागीदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री को 10 और 11 नवंबर को फ्रांस में आयोजित होने वाले पेरिस से पीस फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यातायात को सुगम बनाने और जाम कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई कड़ी सड़क परियोजनाओं में से एक पेलखेंथियानो लिंक रोड का आज सुबह 11:30 बजे उद्घाटन किया जाने वाला है। राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश इस नई सड़क का उद्घाटन करेंगे। इससे सेंजौर M1 मोटरवे पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद। इसके बाद मंत्री फिको फ्लाक बाईपास परियोजना का भी निरीक्षण करेंगे। विश्व कप फाइनल का टिकट अब स्पेन के नाम हो गया है। डालास में खेले गए सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर शानदार अंदाज में अपनी दावेदारी पेश की। पूरे मुकाबले में स्पेन ने गेंद पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा। मजबूत रक्षा और तेज आक्रमण के दम पर फ्रांस को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। अब सबकी नजरें फाइनल पर टिकी हुई हैं, जहां स्पेन विश्व चैंपियन बनने से सिर्फ एक जीत दूर है। तो विश्व कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर उत्साह चरम पर। फुटबॉल प्रेमी इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का आज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में है, उनमें स्पेन के दक्षिणी क्षेत्र में भीषण जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मौज़े सामीन, इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। जी हाँ, इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। उम्मीद है आप फजले खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, बयान, नातु सलाम और आपके पैगामात। ताखीर ना करते हुए आइए सूरह तौहा की सिलसिलेवार तिलावत से आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

तेरे लिए एक और वादा है, यानी अजाब का, जो तुझसे टल न सकेगा। और जिस माबूद की पूजा पर तू जमा हुआ था उसको देख, हम उसे जला देंगे, फिर उसकी राख को उड़ाकर दरिया में बखेर देंगे। तुम्हारा माबूद तो अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म हर चीज पर मुहीत है।

इस तरह हम तुमसे वो हालात बयान करते हैं जो गुजर चुके हैं और हमने तुम्हें अपने पास से नसीहत की किताब अता फरमाई है। जो शख्स इससे मुंह फेरेगा वो कयामत के दिन गुनाह का बोझ उठाएगा। ऐसे लोग हमेशा इस अजाब में मुब्तला रहेंगे और ये बोझ कयामत के रोज उनके लिए बुरा होगा।

जिस रोज सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को यूं इकट्ठा करेंगे कि उनकी आंखें नीली नीली होंगी, तो वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन रहे हो। जो बातें ये करेंगे हम खूब जानते हैं। उस वक्त उनमें सबसे अच्छी राह वाला यानी आकिल होशमंद कहेगा कि नहीं बल्कि सिर्फ एक ही रोज ठहरे हो।

0: और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मेरा रब उनको राख बनाकर बखेर देगा, फिर जमीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा जिसमें तुम कोई नशेब व फराज न देखोगे।
1: يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ

0: قَوْلًا
1: उस रोज लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और उसकी पैरवी से इन्हिराफ न कर सकेंगे और रहमान के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी, तो तुम एक हल्की आवाज के सिवा कोई आवाज न सुनोगे। उस रोज किसी की सिफारिश कुछ फायदा न देगी मगर उस शख्स की जिसे रहमान इजाजत दे और उसकी बात को पसंद फरमाए।

जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है वो उसको जानता है और वो अपने इल्म से अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकती। और उस जिंदा व कायम के रूबरू मुंह लटक जाएंगे और जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नामुराद रहा, और जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसको न जुल्म का खौफ होगा और न नुकसान का।

तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है, आली कद्र है, और कुरान की वही जो तुम्हारी तरफ भेजी जाती है उसके पूरा होने से पहले कुरान के पढ़ने में जल्दी ना किया करो, और दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे और ज्यादा इल्म दे।

0: और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो तो सब सजदे में गिर पड़े मगर इबलीस ने इनकार किया। इस पर हमने फरमाया कि आदम ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है तो ये कहीं तुम दोनों को बहिश्त से न निकलवा दे फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओ जहां तुमको ये आसाइश है कि न भूखे रहो न नंगे और ये कि न प्यासे रहो और न धूप खाओ।
1: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आदम, भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी का बायस हो और ऐसी बादशाहत के कभी जायल ना हो। सो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने ऊपर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे, और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वो अपने मकसद से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई, फरमाया कि तुम दोनों यहां से नीचे उतर जाओ, तुम में बाज के दुश्मन होंगे, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा, और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और कयामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे।

वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था। अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा ही चाहिए था, तेरे पास हमारी आयतें आईं तो तूने उनको भुला दिया, इसी तरह आज हम तुझको भुला देंगे। और जो शख्स हद से निकल जाए और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान न लाए

तो क्या ये बात इन लोगों के लिए मूजिब हिदायत न हुई कि हम इनसे पहले बहुत से फिरकों को हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के मकामात में ये चलते फिरते हैं। अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं।

और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जजाए आमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर न हो चुकी होती तो नुजूल अजाब लाजिम हो जाता। बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह तहमीद किया करो और रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया करो और दिन के मुख्तलिफ औकात यानी दोपहर के वक्त भी ताकि तुम खुश हो जाओ।

और कहते हैं कि ये पैगंबर अपने परवरदिगार की तरफ से हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाए? क्या इनके पास पहली किताबों की निशानी नहीं आई?

0: और अगर हम इनको पैगंबर के भेजने से पेशतर किसी अजाब से हलाक कर देते तो ये कहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों ना भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरे अहकाम की पैरवी करते। कह दो कि सब नताइज आमाल के मुंतजिर हैं, सो तुम भी मुंतजिर रहो, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि दीन के सीधे रस्ते पर चलने वाले कौन हैं और जन्नत की तरफ राह पाने वाले कौन हैं, हम या तुम।
1: सदकल्लाजीम। ए पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। तवक्कल, सब्र और शुक्र। तवक्कल, जब हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला के फ़ैसले ही हमारे लिए बेहतरीन हैं। सब्र, सब्र की हकीकत ये है कि जो हुआ अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ और आगे भी जो होगा अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होगा। और शुक्र, शुक्र हालात जैसे भी हों हर वक्त।

0: मौजूद सामईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:26 हो चुके हैं। बुध का दिन है, जुलाई की आज 15 तारीख है और इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम की आज 29 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। मौजूद सामईन, उर्स महबूब अज़दानी, हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर अब आप समात फरमाएंगे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समात फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिर अज़ीम वल फुरक़ानिल हमीद, الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمه حبيبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے لیے ہیں और करोड़ों हा दुरूद व सलाम उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के लिए। हम्द व सलात के बाद आज इस ज़ात गिरामी का हम तस्किरा करने जा रहे हैं। गुलशन इस्लाम में जिन औलिया इकराम ने अपनी लाफानी कारनामों की बदौलत बकाए दवाम हासिल किया, उन में अब करी शख्सियत क़ुतबतुल कुबरा तारिकुस सल्सनत अमीर कबीर सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नूर बख्शी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते गिरामी हैं। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु, आपके वालिद गिरामी सुल्तान यानि समनान के सुल्तान थे, इब्राहिम समनानी ईरान के फरमा रवा थे। उनका दरबार फुज़लाए असर और उलामाए वक्त से आबाद था। खुद सुल्तान होने के साथ साथ एक सूफ़ी मुशर्रफ़ बादशाह थे। आप ज़ोदो तक्वा में कामिल थे, बेटे की आरज़ू थी। एक शब आलम ख्वाब में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल जहां आरा से सरफराज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो फरजंदों की बशारत दी और फरमाया, एक का नाम मोहम्मद अशरफ रखना और दूसरे का नाम मोहम्मद आरफ रखना। अशरफ और उसका नाम अशरफ रखना चुनांचे बवक्त सुबह सादिक खुर्शीद मारिफत तुलु हुआ। किसके घर में? हज़रत सैयदना इब्राहिम समनानी के घर में, जो बाद को अशरफुल मिल्लत व दीन हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के नाम से मशहूर हुए। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु की ज़ात गिरामी, आपकी विलादत बासआदत हुई और जिस घर में आपने आँखें खोली उस घर

में इल्म व इरफान के साथ साथ सल्तनत और हर तरफ रोब व दबदबा और हुक्मरानी आपको नज़र आई। आपके वालिद गिरामी बादशाह वक्त थे, सिमनान के सुल्तान थे और सुल्तानी से आपका दरबार मुज़य्यन था और हर तरफ आपके वालिद के अदल व इंसाफ के चर्चे थे। लेकिन इसके साथ साथ आपके घर में इल्म व इरफान की रोशनी और इल्म का नूर भी उससे कहीं ज़्यादा चमक और दमक रहा था। इसी सिलसिले में जिसके लिए आपने बारगाह खुदावंदी से बवसीला मुस्तफ़ा आपको तलब किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दो दो औलादे नरीना से सरफराज फरमाया। अंबिया इकराम की दुआएं कुरान मजीद में मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में औलादे नरीना के लिए दुआ किया करो। والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما। ए अल्लाह, हमें ऐसी औलाद अता फरमा जिससे हमारी आंखें ठंडी हो जाएं। तो औलाद नरीना के लिए दुआ करना चाहिए, यह अंबिया की सुन्नत भी है और बुजुर्गान दीन का तरीका अमल भी रहा। तो चूंकि आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की खातिर औलाद नरीना को तलब किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ के नतीजे में आपकी झोली में दो दो औलाद नरीना अता फरमाईं। पहली औलाद हज़रत सैदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तन और दूसरे बेटे मोहम्मद आरफ़ अशरफुलमिल्लत वद्दीन सैदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तन। चूँकि घर में इल्म व इरफान का गलबा था सल्तनत के साथ साथ, तो वालिदे गिरामी ने चाहा कि इनको जितने भी उलूम मुतदाविला हैं उनसे इनको सरफराज कर दिया जाए। इस सिलसिले में अपने बुज़ुर्गों की कदीम रिवायत को ज़िंदा करते हुए आपके वालिदे गिरामी ने जब आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 माह 4 दिन की हुई तो हज़रतुल अल्लाम हज़रत इमादुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ज़रिए से रस्म बिस्मिल्लाह खानी के फ़राइज़ को अंजाम दिया। 1 साल में आपने कुरान मजीद मा क़िरात सबा हिफ्ज कर लिया। ये कितने कमाल की और उबूर की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला को किस कदर जहानत अता फरमाई थी और अपने बंदे अपने बरगुजीदा बंदों में उन्हें शामिल किया। और ये उस अजीमुल मर्तबत बुज़ुर्ग हैं हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला जो मादरज़ात वली हैं, माँ के पेट से विलायत लेकर पैदा हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको विलायत अता फ़रमाई। कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया और आपने मशहूर ज़माना क़ारी अली बिन हमज़ा कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से सनद क़िरात हासिल की। और कमाल की बात यह है कि 14 साल की उम्र शरीफ में जुमला उलूम व फ़नून में कमाल हासिल कर लिया। इल्म फ़िक़ा में, इल्म हदीस में, इल्म तफसीर में, इल्म उसूल तफसीर में और पूरे इराक़ में मशहूर हो गए कि 14 साल की उम्र में जो मुतदाविल उलूम पढ़ाए जाते थे आपने उनको हासिल कर लिया। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, ये आपको ख़ानदान की तरफ से भी शरफ़ हासिल हुआ कि आपके सिलसिला नसब में हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला से होता हुआ इमाम बाकर रदी अल्लाह तआला और इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की बारगाह से होता हुआ हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली पाक मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह तक पहुँचता है। हज़रत अली पाक मुर्तज़ा रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु आपके फ़र्जंद गिरामी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उनके शहज़ादे गिरामी गाज़ी करबला हज़रत सैदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला और उनके वालिद गिरामी उनके साहबजादे हज़रत सैदना इमाम बाकर रदी अल्लाह तआला और उनके साहबजादे हज़रत सैदना

0: अल्लाह अल्लाह क्या शान और क्या आज़मत है। आजकल तो हम लोग पीरों को तलाश करते फिरते हैं और पीर लोग मुरीदों को तलाश करते फिरते हैं, लेकिन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला की ये शान और अज़मत है कि तमाम उलामा और मशाइख आपको जो है हाथ फैला करके और अपनी झोलियाँ फैला कर बैठे हैं, काश वो हमसे वाबस्ता हो जाएँ, हमसे वाबस्ता हो जाएँ। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला चले और उसके बाद बहुत सारे उलामा मशाइख से वो मुलाकातें हुईं। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला दिल्ली से बिहार शरीफ तशरीफ लाए और वहाँ से हज़रत मखदूम शेख शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत किताबों के मुसन्निफ़ और अपने ज़माने के वली कामिल, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। उनकी नमाज जनाजा का किस्सा ये हुआ कि आपने अपने विसाल से पहले अपने ख़ास मुरीदों को वसीयत फरमाई और जमा किया कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जो सहीउन नसब सैयद हो, आले रसूल हो और सातों किरात का हाफिज़ कुरान भी हो और मुतदाविला उलूम से फरागत भी हो। अल्लाहु अकबर, आपने इरशाद फरमाया कि आप मेरा जनाजा तैयार करके इंतज़ार करना, एक सैयद ज़ादे तशरीफ़ लेकर के आएंगे और फिर उनसे आप उनकी पहचान बताई और उनकी कुछ निशानियाँ और अलामतें बताई और उसके बाद आपने फरमाया कि उनसे कहना वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। इसके आगे इंशाल्लाह तबारक व ताला हम आगे आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब में बयान करेंगे कि आपकी शान और अज़मत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको अमल की तौफ़ीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: मौजूद सामईन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौन मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कातवी साहब की ज़ुबानी एक सिलसिले वार बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि हकीकी कामयाबी अल्लाह ताला की रज़ा, आजिज़ी, खिदमत खल्क और नेक आमाल में है। अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गों की सीरत से सबक हासिल करने और इनके नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।

मौजूद समीन आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं चंद पैगामात की तरफ। कातकोको से कुरैशिया जहालिया और पूरी जहालिया फैमिली कातकोको के मस्जिद के इमाम इमाम सलीम अख्तर मैंगलोल जो के मस्जिद कातकोको के इमाम थे उनके लिए उनकी बरसी के मौके पर ईसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं और एक कलाम की फरमाइश भी की है। इसके अलावा पोर्टलुइस से रादिया और बीबी रादिया और कादिया फैमिली और उनके तमाम बच्चे एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह मुस्लिम चीबाई वाकवा से हमारा साथ दे रहे हैं और ईसाले सवाब की गुजारिश की गई है अपने वालदैन और तमाम मरहूमीन के लिए। इसके अलावा शहनाज जो हैं गौंबुआ से, जी हाँ गौंबुआ से शहनाज उम्रे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं अपने भाई बहनोई भांजे और अपने वालदैन को। इसके अलावा सलीम रकीबा रेहान इस्माइल जुअन और नासिर नाजमा महबूब नुतदाम से और मोंगू से एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं और वालदा फौजिया दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं अपने शौहर गिशाद तुगाबाली मुस्लिमा यासीन मुजफ़र मरियम जिनीरा और अम्मारा के लिए। इसके अलावा वालिद नाना के लिए बहुत सारी दुआएं भेज रही हैं और शबनीज़ जी

अशबनीज़ अपनी बेटी मरहुमा कनीज़ सकीना अम्बिदेसी, दादी फिया रहीमा नूर बख्श हसाम और सफ़ीक खुदादीन के लिए ढेर सारी दुआएं भेज रही हैं और ईसाले सवाब की गुजारिश भी कर रही हैं।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: गुजरात नी सुगंध, गुजरात नो रंग, गुर्जरी धराना मीठा झरना, एमबीसी रेडियो पर।

0: दोपहर की लड़ाई बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप? एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और यहाँ पर प्रस्तुत है आपका मनपसंद प्रोग्राम, आपकी पसंद प्रोग्राम हर बुधवार की तरह। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। और आज 15 जुलाई 2026 और आज का दिन हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये प्यारा सा प्रोग्राम आप लोगों के नाम। और आपको क्या करना है, फ़ोन करना है 4028085 4028085। ज़रूर आपके गाने हम चलाएंगे आप लोगों की मांग पर। तो चलिए आज का पहला गाना हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में हमारे तमाम सुनने वालों के लिए जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आ।

0: की पसंद।
1: आपकी पसंद प्रोग्राम जी हाँ, चलिए बेकरार करके हमें यूं न जाइए। हम तो कहीं नहीं जाएंगे अभी, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, क्योंकि हम 4 बजे तक साथ देंगे आपका। और यहाँ पर आज की पहली फरमाइश फिल्म सैलाब से लिया गया, सैलाब, हाँ जी जय सैलाब फिल्म। और आवाज़ें हम सुनेंगे अमित कुमार साहब, और साथ में है आशा जी, गाना खास कर विश्वानी दुमन के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम वाक्वा। और गाना वो मांग रही है अपनी बहन इंदिरा, शारदा, सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर के लिए।

आपकी पसंद। चलिए आपके पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। यहाँ फिल्म का नाम है मदहोश, लता जी की प्यारी आवाज़ में, और ये गाना जाएगा रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं बुबासा से। धन्यवाद साथ देने के लिए।

चले दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की पसंद का गाना हम चला रहे हैं और आकाश चेतन मनसुख जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बॉम्बे, गाना खासकर वो मांग रहे हैं अपने मामा प्रीति, पापा क्रिश, भाई बहने हैं उर्वशी और विश्नी, जीजू विनेश और भतीजा है केहान, और स्पेशली मनसुख परिवार के लिए फिल्म का नाम है दुलारा और कल कहीं कॉलेज में मेरा क्या होने वाला है आपका, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

2:51 हुए हैं श्रोताओं, और यहाँ पर आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। अगला गाना जो है शादी का गाना है, और खासकर गाना हम चलाएंगे आशना दुखित राम, और आज उनकी शादी है विद्या। जी हाँ, विद्या जी गाना मांग रही हैं आशना दुखित राम के लिए। जी हाँ, आज उनकी शादी है, और गाना हम चलाएंगे खासकर उनके लिए। उनको बधाइयाँ दे रही हैं उनकी मामा सुरेखा, पापा अशोक, भाई अश्विन और सभी दुखित राम फैमिली की ओर से, नमा फैमिली, राम नारायण फैमिली की ओर से और इंदू फैमिली की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और साथ ही साथ में, जैसे कि आप जानते हैं, अभी शादी सीज़न है और यहाँ पर सब लोग शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं, उनके लिए हम गाना चला रहे हैं। और यही गीत हमें लेकर जाएगा 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की, और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं विधिमा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। इस सरकार ने वो सब कुछ नष्ट कर दिया है जो हमने मिलकर बनाया था। ये शब्द जोली रोंगा ने आज सुबह एमएसएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहे। ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा कल राष्ट्रसभा में पेंशन सुधार के बचाव में दिए गए बयान के जवाब में आई है। विपक्ष नेता द्वारा पूछे गए पीएनक्यू का उत्तर देते हुए नवीन राम गुलाम ने स्पष्ट किया कि सरकार इस सुधार पर पीछे नहीं हटेगी। ये निर्णय लगातार प्रतिक्रियाओं को जन्म दे रहा है। आज सुबह सेंट्रल बिल्डिंग में जोली रोंगा ने सरकार पर 2024 के आम चुनावों से पहले किए गए अपने वादों से मुकर जाने का आरोप लगाया। उनके अनुसार चुनावी अभियान के दौरान वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 21,000 रुपये तक करने के वादे किए गए थे। उनका ये भी तर्क है कि जनवरी 2025 में पेश किए गए सरकारी कार्यक्रम में पेंशन सुधार का कोई उल्लेख नहीं था और वे इसे जनता की अपेक्षाओं के विपरीत एक बड़ा बदलाव मानते हैं। विपक्ष नेता ने इसे मॉरिशस के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात करार दिया है। 48 घंटों से भी कम समय में ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक के तहत पुलिस ने 334 लोगों को गिरफ्तार किया है कल और इस बुधवार को सुबह 3 बजे से 8 बजे के बीच नॉर्दर्न डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ और साउदर्न डिवीजन ने पुलिस की विभिन्न इकाइयों के सहयोग से अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस की इन कार्रवाइयों से कई कुख्यात अपराधियों, चोरों और अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार ये पूरी तरह से एक सफल अभियान रहा। सर्जेंट जयेश गंगादीन का भविष्य कल तय हो जाएगा। जमानत के लिए उनकी याचिका पर फैसला पोटली जिला अदालत में सुनाया जाएगा। कल मामले की सुनवाई के दौरान बंदरगाह की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात इस पुलिस अधिकारी ने खुद को निर्दोष बताया। उन पर 94.4 मिलियन रुपये मूल्य की ड्रग्स बरामदगी के मामले में न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने का अस्थायी आरोप है। और विदेश में भारत के तमिलनाडु राज्य में जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग के संयंत्र में भट्टी में विस्फोट के बाद आग लग गई जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। धातु रिसाइकलिंग कंपनी ने नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित अनुभाग में परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। महत कबीर एवेन्यू बनते अवाकुआ में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री देवव्रत सगन, जो मानान नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले डिसिप्लिन हेडमास्टर थे। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा सगन के घर महत

0: Kabir Avenue bunt evakwa se uthakar Phoenix ki shmshan bhumi di jai jayegi. Cremation this afternoon at 4 p.m. Shok mein dubis parivar ke prati hamari samvedna hai.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
3: आइए सुनिए सीबी की ओर से कुछ विज्ञप्तियाँ. सर अनिरुद्ध जगन्नाथ साज हॉस्पिटल फ्लैक के सभी ग्राहकों को ये सूचित किया जाता है कि कल 16 जुलाई जी हाँ कल गुरुवार 16 जुलाई 2026 दिन के 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और ब्लू बे के आसपास के इलाके एवेन्यू कोदोनिया एवेन्यू कारोंग और एवेन्यू एग्रेट के कुछ इलाके उन रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 16 जुलाई 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 3 बजे तक बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी. सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है.
2: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस.
2: रेडियो मॉरिशस.
1: रेडियो मॉरिशस
4: आपकी पसंद.
3: तीन बजकर 3 मिनट हुए हैं. श्रोताओं एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम. जी हाँ दोस्तों आज बुधवार 15 जुलाई 2026 और ये कार्यक्रम आप लोगों के नाम हम करते हैं और यहाँ पर हमें सुन रही है जी हाँ ये फरमाइश से पहले आपको याद दिला दे हमारा नंबर है 4028085402808 और मैसेजेस आप भेज रहे हैं ऑन 5251705. और यहाँ पर हमें सुन रही हैं गीता जी. वो रहती हैं यूनियन पार्क. गाना वो मांग रही हैं अपने जीजू कविराज बंधु के लिए. वो रहते हैं न्यू अल्फोंस और वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उनकी पत्नी अमृता की ओर से, खासकर उनकी साली गीता की ओर से और साथ ही साथ में सभी परिवार, मोहर परिवार और बंधु परिवार उनको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं. तो चले गृहस्थी फिल्म से लिया गया ये गाना 1963 में रिलीज़ हुई. ये गाना हम सुनेंगे लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में.

3:10 हुए हैं और यहाँ पर हमें सुन रही है सीता देवी जी। जी हाँ, गाना वो मांग रही है अपने पति के लिए और ये गाना खासकर उनके पति की याद में। जी हाँ, मन्ना डे साहब की आवाज़ में।

आपकी पसंद। आपकी पसंद प्रोग्राम 3:15 बज चुके हैं दोस्तों, और आप लोग सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। और आज कई लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, 15 जुलाई 2026। और यहाँ पर सुदेवी जी जो हमें सुन रही है फ्रॉम वाकवा, खास गाना वो मांग रही है मालेंगा। जी हाँ, मालेंगा के रहने वाली दिव्या, जी हाँ आज उनका जन्मदिन है। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उनकी मामा माया, पापा जयनंद, बहन रिया, श्रेष्ठा, दादी पुष्पा, चाचा चाची, सभी दोस्त की ओर, सभी दोस्तों की ओर से और सभी परिवार की ओर से भी। परिवार है राम रतन, राम गुलाम, कुआहू, बिल्टू और कुशल फैमिली दिया को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। और साथ ही साथ में जो लोग हमें सुन रहे हैं इस समय और आज जन्मदिन मना रहे हैं, तो आपको भी जन्मदिन मुबारक हो। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, यही कामना है हमारी

0: आपकी पसंद।
1: तीन बजकर 20 मिनट होने को है, मुबारक सालगिरह। और यहाँ पर हमें सुन रही है रेहाना फ्रॉम फिनिक्स। जी हाँ, रेहाना फ्रॉम फिनिक्स। गाना वो मांग रही है फिल्म साजन से लिया गया, बहुत प्यार करती है तुमको सनम। चलिए, लोग ऐसे प्यार करते हैं कभी कभी कि हम बयां भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये गाना हम सुनेंगे अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में।

की पसंद। चलिए अनुराधा पोडवाल के बाद सुनते हैं लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में अगला गाना हमराही फिल्म से लिया गया और ये गाना हम चलाएंगे इब्राहिम के लिए। जी हाँ, वो हमें सुन रहे हैं इस समय पोर्ट लुइस से। 4028085402808 और मैसेजेस आप भेज रहे हैं ऑन 5251700।

आवाज देख के, जी हाँ, प्रोफेसर फिल्म से लिया गया ये गाना एक बार फिर से लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में, क्योंकि ये दोनों की जोड़ी बहुत ही लाजवाब है। उनकी आवाज़ जो है बस सुनने का को मन करता है हमेशा। और यहाँ पर गाना खास कर धनी जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम वाशरी, और गाना वो मांग रहे हैं अपने दो नाती के लिए, यश और

0: आपकी पसंद।
1: आवाज देके हमको ना सताओ, जहां प्यार में क्यों सताना है लोगों को, जब प्यार किया है तो डरना क्या और प्यार करते ही जाओ। और यहाँ पर लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ों में अगला गाना खासकर हम चला रहे हैं, ये है आफेज के लिए। जी हाँ, ये गाना आफेज जी के लिए जो हमें सुन रही है समय सैपिया से, और कहा गाना खासकर उनके पति उनके शोहर की याद में।

0: की पसंद।
1: दिल एक मंदिर है जहाँ फिल्म का नाम है और यहाँ पर ये गाना खासकर इसी फिल्म से लिया गया। हम एक गाना चलाएंगे और गाना खासकर संगीता जी की मांग पर, वो रहती है काटको को और गाना वो मांग रही है पति विजय या बेटे यशवीर, बेटी काजल दामाद है, उनके दामाद के लिए और पोती हैं आरुषि और पोती आरूही के लिए, सभी रीगा फैमिली और पातो फैमिली के लिए भी।

की पसंद। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। जी हाँ, ऐसे कैसे हम कभी कभी ना लोग वादा करते हैं लेकिन वादा जो है निभाते नहीं है, क्यों ये उनको ही पता। और यहाँ पर रफ़ी साहब और श्रेष्ठा, सुषमा श्रेष्ठा की आवाज़ों में अगला गाना हम चलाएंगे शहनाज के लिए, जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम वाकवा गाना, उनके लिए और उनके सभी परिवार और दोस्तों के नाम।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। मोसल तमाह के आसपास के इलाके मोसल मोकालस अवेन्यू शाखा होंडास और अवेन्यू बुआकोराय के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 16 जुलाई 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। और कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, यही जीवन है। अच्छे कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना करो। यहाँ पर ये गाना खास कर हम चला रहे हैं बंधु फैमिली के लिए, जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम थ्रियोली।

3 बज चुका है, 53 मिनट हुए हैं और आज कुरनुशी का जन्मदिन है, उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके पति विशाल और उनके 2 बच्चे हैं और मामा फ़ैमा और उनकी बहन हफीज़ा फिरोज़ा तबस्सुम की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद फ्रॉम जमाली फैमिली और बुधू फैमिली की ओर से जो रहते हैं बेल्वेडेरा। तो चलिए उनको हम ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं और गाना हम चलाएंगे हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से लिया गया और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। जी हाँ, 4 बजे आप सुन पाएंगे मराठी प्रोग्राम मिसेस दरमिया के साथ और हमारी मुलाकात होगी शाम

और जी हाँ, हम भूलेंगे नहीं उमा को। उमा जो हमें सुन रही है फ्रॉम क्यूपिप, उनके लिए गाना। और यहाँ पर नाम माया है जो हमें सुन रही है फ्रॉम मोताई ब्लॉन्श। और साथ ही साथ में ज्योति जो हमें सुन रही है फ्रॉम यूनियन पर, गाना वो मांग रही है प्रीति मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्का के लिए। तो चलिए उन सभी लोगों के लिए ये गाना आपके नाम और इसके साथ आप गुनगुनाइए।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ रेशमा बालगोबिंद बासेनु, वल्गराइजेशन ऑफिसर फागे से हूँ। आज के इस खेती बाड़ी के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं लेग्यूम फिलांथ पर बात करूँगी। इस वक्त मॉरिशस में सर्दियों की मौसम है, पर सर्दियों के बाद बेल पर चरने वाली सब्जियां यानी लेग्यूम फिलांथ बहुत अच्छी तरह उगती हैं। जो सब्जियां चरने या रेंगने वाली होती हैं, हम उसे इसी तरह बुलाते हैं क्योंकि उनकी प्रकृति होती है चरने और ज़मीन पर फैलने की। आमतौर पर ये सब्जियां क्यूक्यूबिटेसी फैमिली से होती हैं, जैसे कि लौकी, कालबास, शुशु जिसको हम हिंदी में इसकस बोलते हैं, क्यूकुम्बर, कोनिशों, बटनट, जिरोमो, करेला, तरबूज, मिलोंडू, पातल और पिपोंगाई। आज हम शुशु जिसको हिंदी में इसकस भी कहते हैं की खेती के बारे में जानेंगे। शुशु का उत्पादन चक्र यानी क्रॉपिंग साइकिल 24 महीने यानी 2 साल का होता है, जो दूसरी फिलांथ बेल वाली सब्जियों से ज़्यादा लंबा है। बीज बोने के लिए बेहतर होता है कि ऐसे शुशु का इस्तेमाल करें जो पहले से ही अंकुरित यानी स्प्राउटेड हो चुके हो। हमेशा स्वस्थ फल का चुनाव करें जिसका वज़न 300 या 400 ग्राम का हो और जिसमें अंकुर यानी इसका जैम जो होता है अच्छी तरह से दिखे। आपको चाहिए कि बीज बोने से पहले ट्रिकोलाइफ के सॉल्यूशन में कम से कम 10 मिनट तक फलों को भिगोना चाहिए ताकि राइजोक्टोनिया रोग से आपकी रोपाई को बचाया जा सके। इसके बाद हर गड्ढे में 2 बीज लगाएं, याद रखें 1 गड्ढा 1 फुट बाय 1 फुट का होता है क्योंकि जड़ और अंकुर एक ही जगह से निकलते हैं, इसीलिए फल को उल्टा लगाना अच्छा होता है। जड़ और अंकुर नीचे की तरफ होने चाहिए, फिर हल्की मिट्टी की परत से बीज को ढक दिया जाता है। गड्ढों के बीच की दूरी 1.80 मीटर बाय 1.80 मीटर यानी 6 बाय 6 फीट का होती है। मिट्टी की तैयारी करते समय आप 25-30 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी की तैयारी करें। 1 बीघा ज़मीन में शुशु लगाने के लिए लगभग 2000 अंकुरित से भरे फल शुशु जैमे जो बोलते हैं उनको लगाते हैं। बेहतर कृषि पदार्थ के लिए आप बेलों के लिए एक टनल जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है बना सकते हैं, या उन्हें तार या फिर मेटल फ्रेम या ज़मीन पर ही फैलने के लिए छोड़ सकते हैं। अच्छी पैदावार के लिए अच्छी फर्टिलाइजेशन भी ज़रूरी है। जैविक फर्टिलाइज़र जो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बोलते हैं उसका इस्तेमाल होता है। रोपाई के समय 3 या 4 टन खाद या कंपोस्ट 1 बीघा ज़मीन में डाल सकते हैं। जो अजैविक फर्टिलाइज़र यानी कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र जो बोलते हैं, के तौर पर आप ट्रिपल सुपरफॉस्फेट 45 kg पर हेक्टर और सल्फेट डे पोटास ओ मुरियात डे पोटास 40-50 kg पर हेक्टर या फिर 13-13-22 मिक्स फर्टिलाइज़र 160 kg पर हेक्टर, लगभग 125 ग्राम जो होता है हर गड्ढे के लिए आप डाल सकते हैं। 2 हफ्ते के बाद आप अमोनियम सल्फेट 145 kg पर हेक्टर डाल सकते हैं। अगर आपने रोपाई के समय 13-13-22 डाला है तो बाद में आप सिर्फ 40 kg अमोनियम
को डाल सकते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के कंपोस्ट या खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र का मात्रा कम कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने प्रोडक्शन का खर्चा कम कर पाएंगे। आप बायो फर्टिलाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप मल्चिंग, जो हम पायाश कहते हैं, का उपयोग करते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा है। जैसे कि घास नहीं उगेगा, मिट्टी में नमी बनी रहती है, मिट्टी की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। अब हम देखते हैं कीड़े और रोगों से कैसे आप अपनी शुशु की खेती की सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरे लेग्यूम फिलांत के मुकाबले में शुशु में कम कीड़ा और रोग पड़ता है, परंतु इसमें फ्रूट फ्लाई, जो हम मुश दे फ्री कहते हैं, इसका अटैक होता है। फ्रूट फ्लाई छोटे फलों, जो 5-10 सेंटीमीटर लंबाई का ही होता है, पर अटैक करती हैं। इसीलिए इस पर नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सैनिटेशन, सभी सरे गले या छेद वाले फल को हटाना चाहिए, ट्रप या झाल लगाना चाहिए, पेस्टिसाइड्स, जो हम जैविक या रासायनिक, उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर समय पर आप फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। शुशु की कटाई, जो हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, मुख्य रूप से सर्दियों में होती है और इसकी पैदावार लगभग 8-9 टन पर हेक्टर होती है। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप इन सुविधाओं से लाभ उठाएंगे। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आपको नमस्कार और शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस के सफर में आप लोगों का हम यहाँ पर शानदार स्वागत करते हैं। 5:14
1: अंताक्षरी

0: जान से प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। उषा और रोशन की ओर से आप लोगों का हम यहाँ पर शानदार स्वागत करते हैं।
1: जी हाँ, नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप?
0: हम तो जानते हैं कि आप लोग बेहद खुश हैं क्योंकि अंताक्षरी प्रोग्राम है।
1: जी, क्योंकि अंताक्षरी प्रोग्राम शुरू हो चुका है और यहाँ पर हम लाइव है रेडियो मॉरिशस पर, और साथ ही साथ में लाइव टिकटॉक पर भी आप हमें देख सकते हैं। सो आप
0: प्लीज
1: फॉलो करें इस पेज को, लाइक करें और

0: दूसरों के साथ भी शेयर करें,
1: करें
0: और घर पर बैठे बैठे भी आप अपने फोन के जरिए खेल सकते हैं, वैसे जवाब लिख सकते हैं।
1: बिल्कुल, यू मस्ट शेयर एंड जस्ट केयर। तो चलिए, अंताक्षरी प्रोग्राम तो शुरू हो गया है और आज का जो विषय है बड़ा ही आसान है। तो पहला गाना, जैसे कि आप लोग करते आए हैं, आपका पहला गाना आपकी पसंद का होना चाहिए। और दूसरा गाना जो होगा वो आज हम अभिनेता या अभिनेत्री पर खेलेंगे, यानी उषा जी एक अभिनेता का नाम या एक अभिनेत्री का नाम आपको बताएंगी और आपको उस अभिनेता पर कोई भी गाना गाना होगा।
0: बिल्कुल, नंबर हम आपको बता देते हैं 4028085402808 और कॉल लेने से पहले हम उन लोगों को हाय बोलना चाहेंगे जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और यहाँ पर प्यारी मीनाक्षी है, नमस्ते आपको, शशि तुलसी जी है, हेलो, विद्या है, हाय, स्कालिडी है, हेलो टू यू, और सूरज सजादा जी है फ्रॉम ट्रियोली जो हमें सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, विमला लक्ष्मण आपको भी हाय। तो चलिए यहाँ पर हम एक
1: पहले श्रोता का स्वागत करें।
0: पहले श्रोता का हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
2: नमस्कार उषा बहन, नमस्कार भाई रोशन
0: जी, नमस्कार
1: हरीश भाई,
2: हरीश बोबासे से,
1: बोबासे से हरीश भाई हमेशा भाग लेते रहते हैं।
2: आपके एंट्री जो बड़ा धमाका हुआ, जो गाने आपने चलाया,
1: हाँ क्यों नहीं,
2: बहुत खुश हो गए,
1: खुश हो गए क्योंकि कल स्पेन की जीत हुई।
0: लगता है भाई रोशन बहुत ही खुश है।
1: हाँ, फ्रांस, मैं फ्रांस को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कल स्पेन ने क्या खूब खेला है उषा जी। क्या करें?
0: वैसे आई एम नॉट अ फैन ऑफ फुटबॉल, वैसे मैं तो सुनती रहती हूँ, जैसे शुरू हुआ था ये खेल तो मैंने कहा सबको कि मैं, हाँ मैं ब्राजील हूँ, लेकिन मैंने सुना कि ब्राजील जो है हार गए,
1: लेकिन क्या करें, ये खेल है, हार और जीत की गुंजाइश तो होती रहती है। आप पहला गाना आपकी पसंद का गाइए प्लीज।
2: एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद आता है।
1: अच्छा,
2: कभी कभी जिंदगी में ऐसा मौका आता है।
1: अच्छा,
2: तो गाता हूँ,
1: गाइए।
2: इंतहा हो गई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, है मुझे है पता बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की।
1: जी हाँ, ओ मेरे सजना लो मैं आ गई,
0: ओ मेरे सजना
2: आ गई,
0: लो हम
1: क्या बात है हरीश जी, आप दोनों के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छा, और शराबी फिल्म का गाना आपने गाया, हम होप करते हैं कि अब भी शराब आपने पिया नहीं होगा। हरीश भाई पहला गाना, अच्छा तो ये रहा आपका पहला गाना, बहुत ही हिट गाना आपने गाया है। अब हम उषा जी से संकेत करेंगे कि चलिए हरीश भाई के लिए एक अभिनेता का नाम हो जाए।
0: अभिनेता जो है, और आप जो 90s के गाने पसंद करते हैं ना, तो आप सुनील शेट्टी पर एक गाना सुनाइए।
1: सुनील शेट्टी पर, हाँ जी सुनाइए।
2: सुनील शेट्टी,
1: हाँ जी बिल्कुल सुनाइए,
2: बहुत सा फेमस गाना है।
1: अच्छा गाइए तो।
2: धड़कन का गाना है।
1: हाँ बिल्कुल गाइए।
0: धड़कन का गाना,
2: दिल की धड़कन में रहती हूँ, रहती हूँ,
0: बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ।
1: क्या बात, आपने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली। बहुत अच्छा, धन्यवाद हरीश भाई, मिलेंगे बहुत जल्द, बाय बाय,
2: फिर मिलेंगे, बाय बाय।
0: हाँ जी, और यहाँ पर लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, जितवा सूरज है, उमा है, और जित, हाँ क्या नाम है, विमला लक्ष्मण,
1: अच्छा।
0: आप भी है अमिताभ एंजया, ओके
1: okay.
0: और नेपाल से जो हमें देख रहे हैं, दूरवास मनासा, आपको हाय। नर्मदा रामा सौमी जो हमें देख रही है फ्रॉम सुरीनाम, शोभा जी है, जी हाँ नमस्कार आपको, स्कालिडी, और आयशा है, और हमको हमेशा परीब कहकर बुलाती है, स्वीटी,

0: पूनम, हाँ जी आप भी हैं, हम उन्होंने कहा कि मैं भी हूँ जी, हाँ हम भी हैं यहाँ पर,
1: हाँ बिल्कुल,
0: चलिए एक कॉलर लेंगे। हेलो हेलो हेलो हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
2: हेलो उषा जी, नमस्ते जी, रोशन जी को भी नमस्ते।
1: नमस्ते नीला जी फ्रॉम बाकुआ।
2: हाँ जी,
1: कैसी हैं आप नीला जी?
2: थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ मैं।
0: थोड़ा थोड़ा वाई, थोड़ा थोड़ा
1: वाई, बताइए उषा जी को
2: क्यों? ठंड है ना।
0: अच्छा ठंड,
1: कोई बात नहीं, आप ठंड का मौसम है, आप डट के सामना कीजिए और पहला गाना गाइए।
2: पहला गाना?
1: हाँ, आप जो आप पसंद करती हैं।
2: थोड़ा सा धमाका वाला।
1: अरे बाप रे बाप, गाइए गाइए।
2: शोला जो भर के दिल मेरा धर के, शोला जो भर के दिल मेरा धर के, दर्द जवानी का सताए भर भर के, शोला जो भर के

0: ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, नीला जी, नीला जी,
1: नीला जी, तरह नहीं, नीला जी आप चीटिंग कर रही हैं,
0: आप एक रेल गाली गाड़ी जैसी हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं
1: कोई। अच्छा अच्छा ओके, तो ये रहा नीला जी की ओर से शोला जो भड़के, देखा दर्द जवानी का आपको सता रहा है। चलिए नीला जी, आपके लिए अभिनेत्री है और उषा जी बताएंगी कौन सी अभिनेत्री।
0: और चलिए गाना गाइए साधना पर।
1: क्या बात है, साधना जी पर गाना गाइए प्लीज। अरे वाह,

0: अच्छा जी, आप सुनिए तो ये सुनिए।
1: ओहो,
0: ये तो आशा पारेख जी हैं यार। साधना जी का गाना आप सुनिए।

0: जाए।
1: देखा नीला जी, आपने गाया लेकिन हाँ परीक्षा में आप असफल रही, कोई बात नहीं
0: जी। चलिए थैंक यू सो मच,
1: बाय
0: बाय। और यहाँ हमें जवाब दे रहे हैं लाइव टिकटॉक पर,
1: कौन?
0: वो है स्कॉली दी, वो कहती है नैना में बदराचाई।
1: अरे वाह,
0: है ना,
1: क्या
0: सही जवाब है। प्रतिमा दुकितराम नमस्ते आपको। और रिकी रॉय हमको बता रहे हैं कि सैयारा का गाना गाने के लिए क्या करें,
1: तो हो जाए अभी या अंत में?
0: अंत में। रिकी रॉय आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: अच्छा।
0: अंत में ये गाना हम आपके लिए सुनाएंगे, गाएंगे।
1: श्रेया घोषाल वाला,
0: ऑफ कोर्स। और संगीता है प्यार भरा नमस्कार आपको भी। पूनम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और चलिए एक और कॉलर है। हेलो,
1: चलिए देखते हैं कौन है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन भैया, नमस्ते उषा बैना,
1: नमस्ते इंदिरा जी फ्रॉम मिबर्ग। कैसी हैं इंदिरा जी?
2: ठीक हैं।
1: हाँ जी बिल्कुल, तो हम जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है।
2: अभी गाऊंगी।
1: तो गाइए, यही तो हम जानना चाहते हैं।
2: गाइए
1: गाइए।
2: धड़का है दिल में प्यार तुम्हारा, अभी अभी चमका है आरजू का सितारा, अभी अभी।
1: क्या बात है इंदिरा जी, आज तो बहुत ही रोमांटिक मूड में है।
0: रोमांटिक मौसम, रोमांटिक
2: मूड करना पड़ता है।
1: ओके, अब देखते हैं आप कितने रोमांटिक होंगी। चलिए उषा जी की ओर से एक अभिनेता का नाम आपको बताया जाएगा।
0: चलिए मनोज कुमार साहब पर एक गाना सुनाइए।
1: क्या बात है उषा जी, आप तो बहुत दयालु निकली। बहुत ही दयालु निकली आप तो।

0: बहुत ही अच्छा इंदिरा जी, और आप भी बनती हैं स्टॉप ऑफ द वीक, क्रांति का गाना आपने गाया है, बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। ओके, गाते मुस्कुराती रहें,
1: शुभ संध्या, शुभ संध्या आपको। और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जो आयशा है उन्होंने सोचा कि हम मॉरिशन नहीं है, नो वी आर मॉरिशन,
0: बिल्कुल
1: यस, लेकिन यहाँ पर ओरिएंटल रेडियो है, हिंदुस्तानी प्रोग्राम है, तो हम हिंदी में बात करते हैं,
0: क्यों नहीं।
1: हाँ, रोमांटिक आवाज़, आप लोग भी बहुत ही रोमांटिक हो,
0: क्या बात है, बहुत ही धन्यवाद, आप भी रोमांटिक है, और भले कि हम मॉरिशन है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम मॉरिशन है।
1: और ये भी हम कहना चाहेंगे कि ये जो लाइव है प्लीज आप शेयर करें, लाइक करें और इस पेज को आप लोग फॉलो करें,
0: फॉलो करें बिल्कुल।
1: और यहाँ पर कौन है, हेलो
2: हेलो
0: हेलो,
2: नमस्ते
0: संजय, नमस्ते सुदेवी जी,
2: उषा
1: जी, नमस्ते,
2: आप कैसे हैं?
1: हम बिल्कुल ठीक है।
0: चलिए सुदेवी जी, जल्दी जल्दी अपना गाना सुना दीजिए जो आपके दिल के बिल्कुल करीब है।
2: ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराए जहाँ तक महक है मेरे गैसों के चले आए।
1: बिल्कुल,
0: हम चले आए, और आपने क्या गाना गाया है सुदेवी जी, बहुत ही बढ़िया। अब आपके लिए एक अभिनेत्री का नाम उषा जी बताएंगी।
1: अभिनेत्री क्या बोले, माला सिन्हा।
0: अरे वाह, माला सिन्हा जी पर कोई भी गाना आप गाइए प्लीज।
2: माला सिन्हा,
0: हाँ जी बिल्कुल, माला सिन्हा जी पर।
1: आयो
0: आयो, क्यों, बट
1: व्हाट हैपेंड टू आयो,
0: बहुत आसान सा है माला सिन्हा जी पर, आप सुनेंगी तो आप कहेंगे ओ ये गाना था। कोई बात नहीं, उषा जी आपकी मदद करेंगी, गा दीजिए उनके लिए कोई भी हरियाली या रास्ता वाला गाना गा दीजिए, बोल मेरी तकदीर।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता,
0: जीवन की ये दो पहलू है,
1: जीवन के दो पहलू है हरियाली और रास्ता।
0: ओके, देखा, जब मदद कर दी उषा जी ने तो आप कहा, आपने कहा ओ ये गाना था, तो आप अपनी होमवर्क नहीं करती हैं,
1: बिल्कुल
0: रेडियो सत के साथ जुड़ती रहें।
2: रोशन जी,
0: हाँ जी बताइए,
2: मैं एक बात पूछूं आपसे।
0: हाँ जी बताइए, हम दोनों से कहिए।
2: शुक्रवार को विदेश जा रही
0: हूँ। ओह, विदेश जा रही हैं, तो आपको कहेंगे बो वायाज, लेकिन वहाँ से हमें सुनते रहिए। ओके ओके, धन्यवाद।
1: और यहाँ पर जवाब मिला है सयोनारा, सयोनारा, और ये तो स्कालिडी का जवाब है, और ये है माला बोरो जो हमें बोल रही है, हम मैंने बुलाया हम चले आए,
0: जान है थैली पर ले आए,
1: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। हाँ,
0: क्या बात है, हमारे जो श्रोता
1: है, तो नर्मदा रामास्वामी ने कहा है, ने ये लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, हम आप प्लीज ये लाइव शेयर करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन है। हेलो
3: हेलो, नमस्ते रोशन जी, उषा जी,
0: नमस्ते मीनाक्षी जी, कैसी हैं आप? ठीक,
3: मैं भी ठीक हूँ।
0: आप लगते हैं कि आप तंदुरुस्त हो गई हैं।
3: हाँ जी,
0: इतने दिनों के बाद
3: थोड़ा बहुत।
0: चलिए 90s वाला चकाचक गाना हमें सुनाइए।
3: हाँ, ये तो 2000 का है।
0: ओह, आप तो एक हाथ बढ़कर हैं। क्या ही गाइए।
3: दिल संभल जा जरा, फिर मु

0: रितु का गाना आपने
1: लेकिन
0: गाया
1: जब प्यार होता है तो कैसे दिल को संभाले।
2: बिल्कुल, कैसे रोकेंगे,
0: सब संभाल सकते हैं जुबान, लेकिन दिल कभी
1: दिल को नहीं,
0: नहीं
1: संभाल सकते।
0: इसीलिए आपका दिल तो आपसे संभलता नहीं, आप अंताक्षर में आ जाती हैं। चलिए, ये रहा आपका पहला गाना, बहुत ही सुंदर सा।
3: जब तेरे पास मैं आया,
0: ये पहला गाना था जो अरिजीत सिंह ने गाया था बॉलीवुड के लिए, और ये मोहम्मद इरफान जी की आवाज में भी है। तो चलिए अब उषा जी की ओर हम बढ़ेंगे। उषा जी,
1: एक अभिनेत्री,

0: जो आप ठीक समझे, अभिनेता या अभिनेत्री, उधर एक अभिनेत्री है जिनका नाम है मीनाक्षी और इधर एक अभिनेत्री है जिनका नाम है उषा. देखते हैं. चलिए.
1: और वो कहते हैं ना, वो जो है आशा पारेख.
0: ओ, आशा पारेख जी पर कोई भी गाना आप गाइए.
2: अच्छा. साथिया
0: अरे वाह.
2: नहीं जाना कि जी ना लगे, जी तो क्या समझाना कि जी ना लगे. ओके ठीक है.
0: पहले तालियां तो बजाने दें.
1: मेरे सोना रे, मेरे सोना रे.
0: ओके, धन्यवाद मीनाक्षी जी, ऐसे आप गाती रहें. बाय बाय. खुश हो गई आप.
1: बिल्कुल. ओ मेरे शाह कुबा, और यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ओ मेरे शाह कुबा का गाना, मेरे सोना. और यहाँ पर
0: ओ,
1: एक फरमाइश है,
0: कौन
1: रोशन
0: सा
1: भाई हम क्या करें, किस किस की फरमाइश है हम पूरी करें, लेकिन
0: क्या करें,
1: एक है
0: लेकिन
1: जो
0: एक
1: हम
0: पूरी
1: पूरी
0: कर सकते
1: करेंगे.
0: हैं. हाँ जी, कम
1: दो
0: से कम एक.
1: लाइन. जी
0: हाँ
1: हाँ,
0: जी,
1: दो लाइन हम
0: अच्छा
1: गाएंगे.
0: गाइए.

0: बिल्कुल, नसीब में आपका लिखा था कि आप हमेशा अपने श्रोताओं के लिए गाएंगे
1: बिल्कुल बिल्कुल, और जो लिखा
0: और
1: है वो होता ही रहेगा।
0: होता ही रहेगा। कुछ भी आप कर लें, जमीन आसमान एक कर लें, लेकिन जो लिखा है
1: हाँ
0: वो तो होता रहेगा।
1: होता रहेगा। चलिए यहाँ पर कौन है?
0: आशा करते हैं कि जिसने फरमाइश की होगी वो खुश हो गए होंगे।
1: हाँ बिल्कुल खुश है।
0: चलिए हम देखते हैं अगला श्रोता कौन है।
1: हेलो
0: हेलो
2: हेलो, नमस्ते उषा जी।
0: उदय
2: भाई
0: भाई
2: को भी नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे उदय भाई?
2: थोड़ा सा ठीक है, मौसम कभी धूप
0: हाँ,
2: कभी
0: मौसम बेईमान
2: बारिश।
0: है, क्या करें, लेकिन आप ईमान से भाग लीजिए। गाइए पहला गाना जो आप गाना चाहते हैं, प्लीज।
2: एक हेमंत दा का गाना है,
0: ओके, गाइए।
2: हो निन्ना मुझको आए दिल मेरा घबराए, चुपके कोई आए सोया प्यार जगाए।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर आवाज में, और ये जो आवाज है ये आप हेमंता की तरह आपने किया है ना।
2: कभी अभी जब शादी होते रहते हैं एक दो गाना में हेमंता का गा
0: गा ही
2: देता
0: रहते
2: हूँ।
0: हैं। बहुत ही अच्छा,
2: हाँ
0: बहुत अच्छा। तो चलिए, ये रहा पहला गाना। अब कौन सा भी नेता है, सुनिए उषा जी की जुबानी और गाइए।
1: सुनील दत्त।
0: क्या बात है उषा जी, इतना मेहरबान। गाइए सुनील दत्त जी पर कोई भी गाना।
2: सावन का
0: बाप रे।
2: महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे रे ऐसे जैसे मनवाना चे नूर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे रे ऐसे ऐसे मनवाना चे
0: जैसे बनवाना चे मोर। आपको तो मौका मिल
2: थैंक
0: गया
2: यू उषा
0: डुएट
2: जी साथ
0: गाने गाने
2: देने के
0: के लिए।
2: लिए। हाँ
0: हाँ
1: जी
0: जी,
1: ऑफ कोर्स
0: आपको तो मौका
1: वेलकम।
0: मिल गया डुएट गाने के लिए।
2: बाय बाय बाय
0: बाय बाय
1: बाय बाय। और ये गाना सुनकर, वो एक
0: बाय।
1: गाना है सुनील दत्त जी पर, वो मुझे बहुत पसंद है।
0: गाइए
1: ना
0: तो,
1: मुंह छुपा के जियो और
0: और
1: ना
0: ना
1: सर
0: सर
1: झुका
0: झुका
1: के
0: के जियो।
1: जियो,
0: क्या बात है, लगता है कि
1: ना मुंह छुपा
0: आपने
1: के जियो ना सर
0: सर
1: झुका के
0: झुका
1: जियो,
0: के
1: और
0: जियो,
1: जीना है तो सर ऊंचा करके
0: ऊंचा करके जियो। बिल्कुल सही बात
1: जी।
0: आपने कही है। और ये जो गाना है, लगता है कि आप महेंद्र कपूर जी की बहुत जबरदस्त फैन हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर नाम तो हम लेंगे, माया रामदोस है, थैंक यू सो मच। लीना जी है, धन्यवाद आपको, और शोभा जी भी है, नमस्ते। और यहाँ पर एंजल जय सिंह राम सिंह जो हमें सुन रही है फ्रॉम सोहिनाम, थैंक यू सो मच। मेरे सामने वारी किरकी, किसी ने बताया है, जवाब भी दे रहे हैं। और विम है जो गाना मांग रही है, हम गाना नहीं चला रहे हैं, ये फरमाइशों का
0: बिल्कुल
1: प्रोग्राम नहीं है,
0: नहीं है।
1: ये अंताक्षरी प्रोग्राम है। तो चलिए थैंक यू सो मच।

0: दिल घबराना नहीं चाहिए आप लोगों का,
1: बिल्कुल
0: यहाँ भाग लीजिए बेझिझक का, दिल खोल के गाइए।
1: हाँ, हेलो
0: हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
1: हाँ, नमस्ते
0: अनिता जी। प्रमोदा जी, चलिए अनिता जी टूट पड़े पहला गाना गाइए
2: जी। हाँ,

0: सीरीज दहली फिल्म का गाना आपने गाया है महेंद्र कपूर जी की आवाज में, है ना। तो चलिए ये रहा आपका गाना, अब उषा जी की ओर से कौन होगा अभिनेता या अभिनेत्री,
1: क्या चाहिए आपको? What do you want?
0: ऑप्शन है आपके पास।
1: जी चलिए, एक अभिनेता है वो है धर्मेंद्र साहब।
0: धर्मेंद्र जी,
2: धर्मेंद्र जी
0: हाँ जी बिल्कुल, द ही मैन।

0: बहुत अच्छा अनीता जी, झट से आपने पकड़ लिया, इतना आसान प्रश्न।
1: पल पल दिल के पास आप लोग भी रहते हैं हमेशा।
0: अच्छा, गीत प्यार का सुनाती है हवा।
1: हाँ। और क्या कहें, यहाँ पर नास हमें बोल रही है हाय, हमें बोल रहे हैं हाय। विद्यानंद गोपुल है हाय टू यू। और रूबी बंडुला, कैसी हैं आप? नहीं, ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं। हमारे जो श्रोता है हमें फ़ोन कर रहे हैं 4028085-4028085। हेलो
0: हेलो
1: हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्ते
1: उषा
2: रोशन जी।
1: उसी की तरह मैंने नकार किया।
0: आप तो जान गए कविता जी।
2: हाँ।
0: लेकिन आप आज हंसी नहीं, क्यों?
1: क्यों, आप सैड हैं? आप सैड क्यों हैं?
0: ये तो आपका ट्रेडमार्क है जो हंसना है, हंस के हमें हमसे बात कीजिए।
2: हाँ हाँ।
0: ओके कविता जी, चलिए आपका पहला गाना हो जाए, गाइए।
2: दिल अपना रे प्रीत पराए, किसने है ये प्रीत बनाई, आंध में एक दीप जला और पानी में आग लगाई। हो गया
0: आपके लिए।
1: पानी में आग लगाई, हो गया।
0: इस गाने में हो गया भी है। ओके कविता जी, ये रहा आप दिल अपना प्रीत पराई का टाइटल सॉन्ग।
1: हाँ जी।
0: अब आपके लिए जो अभिनेता है या अभिनेत्री है वे उषा जी बताएंगी।
2: अच्छा,
1: वो है वाहिदा रहमान।
0: वाहिदा रहमान जी पर कोई भी गाना।
1: आप नहीं जानती है वाहिदा रहमान को?
0: जानती तो है ना कविता जी। ओ चलिए, आप सुनिए उषा जी को, आपको पता चल जाएगा। साथ में गाइए गाइए।
1: ओ कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ दे बंधन बांधी पायल। अब आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: रुको ना इस दिल की उड़ान को, दिल ये चला।
1: आज फिर मरने का इरादा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जीने का तमन्ना है, मरने का इरादा बिल्कुल नहीं है।
0: बिल्कुल नहीं है, मरे आप लोगों के दुश्मन।
1: हाँ।
0: चलिए बहुत धन्यवाद आपको, बाय
1: बाय
0: बाय।
1: यहाँ पर शोभा जी कह

0: जाऊं, लेकिन यहाँ पर एक और है।
1: हाँ जी, भूलेंगे नहीं आप लोगों
0: को। हम नहीं भूलेंगे कभी आप लोगों को।
1: हेलो।
2: हाँ उषा जी और रोशन जी, नमस्कार। मैं
1: नमस्कार राधा जी, मोचिदा जी, कैसी हैं राधा जी?
2: जी मैं अच्छी हूँ।
1: ओके राधा जी, हम भी ठीक हैं। आप जरा अपना पहला गाना तो गाइए, हम सुनेंगे।
2: जी गाइए। मैं गाऊंगी।

0: पहचानी।
1: बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया कति पतंग फिल्म का, बहुत ही अच्छा। अच्छा, अब आपके लिए जो अभिनेत्री हैं या अभिनेता हैं उषा जी बताएंगी।
2: डिंपल कपाड़िया।
1: वो डिंपल कपाड़िया।

0: बहुत ही अच्छा, तालियों की गूंज आपके लिए भी राधा जी, आपने झट से पकड़ लिया।
1: धन्यवाद,
0: बाय,
1: शुक्रिया, शुभ रात्रि आप
0: शुभ
1: दोनों
0: रात्रि,
1: को।
0: धन्यवाद।
2: मुझे तो
3: वैसे डिंपल कपाड़िया का नाम लेते ही मुझे बस यही गाना याद आता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो
0: बॉबी वाला गाना।
3: और चाबी खो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो हेलो हेलो हेलो
0: हेलो जी,
3: हेलो।
1: हेलो,
3: हाँ जी,
1: नमस्कार ऋषभ भाई, नमस्कार।
0: नमस्कार
3: नमस्कार
0: संगीता बहन।
3: संगीता जी कैसी हैं आप?
1: जी हम ठीक है।
0: हाँ संगीता जी,
1: और आप
0: वाशिंग,
1: लोग?
0: हम भी ठीक हैं संगीता जी। चलिए आज आपकी परीक्षा है। चलिए गाइए पहला गाना।
1: निकलो ना बिना

0: चाचा जी।
1: जमाना खराब है जी,
2: बहुत ही खराब है, लेकिन
1: बहुत ही खराब है, क्या करें
2: जी। लेकिन आपको खराब से अच्छा होना चाहिए, है
0: क्यों नहीं।
2: चलिए, ये गाना रहा आपकी ओर से, बहुत ही सुंदर सा गजल, सुंदर सी गजल थी पंकज उदास जी के जबान में ना। अब आपको गाना पड़ेगा उषा जी के, कौन सा प्रश्न होगा सुन के बताइए आप, कोई भी।
1: वैसे डिंपल कबाड़िया का तो हमने बोल दिया, अब राज कपूर साहब पर गाना सुनाइए।
2: राज कपूर जी,

0: बहुत ही अच्छा संगीता जी, बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया मुकेश दा की आवाज़ में ये गाना था, और हमेशा ऐसे ही भाग लेती रहें। ओके बाय
1: बाय, धन्यवाद आपको। और यहाँ पर एक कॉलर है, उनका नहीं, एक है आप है यश, और यश कह रहे हैं कि माया धनु जो है हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और चलिए धन्यवाद, आप लोग भी जुड़े हुए हैं लाइव टिकटॉक पर, पार्टिसिपेट, जी हाँ पार्टिसिपेट कर रहे। हाय सुनीता लाइव, पता नहीं कौन है वो सुनीता, लेकिन जो भी है वो हमें देख रही है सुनीता जी, ठीक है। और वो लाइक

0: लाइक कीजिए,
1: हाँ
0: फॉलो
1: लाइक
0: करें और शेयर करें जो भी करना है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: ये प्रोग्राम आप लोगों का है और यहाँ पर एक कॉलर है। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्ते विजय भाई।
2: माफ करना बहन, मैं सोचा लाइन नहीं मिल लगेगा, या तो लग गया।
1: ओ कोई बात नहीं जय भाई,
0: लेकिन
1: आपका
0: आप फोन के
1: प्रोग्राम
0: साथ
1: है।
0: लड़ रहे थे क्या, क्योंकि आप ऐसे होंप रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: जी, लगते हैं कि आपने फिजिकल एक्सरसाइज किया हो।
2: हाँ बताइए भैया।
1: अच्छा बताइए, आपको गाना पड़ेगा जो आप बेहद पसंद करती हूँ, गाइए।
2: कोई गीत
1: लेकिन
2: जो जो हम पसंद करते हैं।
1: लेकिन नंतरा नहीं है,
2: हाँ,
1: केवल छोटा सा टुकड़ा, गाइए।
2: मुझे तुमसे कुछ

0: से कुछ भी न चाहिए।
1: वो जय भाई जो है हमेशा ऐसे गाने गाते हैं जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही सुंदर है, जो
2: मुकेश की आवाज़
1: जी हाँ मुकेश की आवाज में।
0: राष्ट्रपुर पर क्या फिल्म का नाम है? कन्हैया।
2: बिल्कुल सुंदर।
1: बहुत धन्यवाद आपको।
2: अब आपको, आप सुनिए जरा गौर, आपका प्रश्न इस प्रकार है,
1: फिरोज खान पर एक गाना गाइए।
0: फिरोज खान पर?
2: हाँ गाइए।
0: किशोर कुमार का गीत ध्यान में चला गया है,
2: अच्छा गाइए,
0: वही सुनाता हूँ।
2: गाइए।

उतना ही जरूरी, एक पल जुदा न रहना, मुश्किल जुदाई सहना, कदम बहक जाए।

0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको बहुत धन्यवाद
1: हमारे पास आपको भी धन्यवाद भाई बहन दोनों को धन्यवाद
2: धन्यवाद भाई जी
1: आपने मौका दिया गाने के लिए
2: हमेशा मौका देते हैं लेकिन आप हमेशा ख्याल रखिए ओके धन्यवाद आपको बाय
0: ओके और यहाँ पर कौन है हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: नमस्ते
3: नमस्ते रोशन भाई
2: नमस्ते बहना कौन है
3: हम तारा है
0: तारा जी कैसी हैं आप तारा
2: अच्छा
3: जी नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते आपको तारा जी सुनाइए पहला गाना आपकी पसंद
2: गाइए

0: ठंडी हवा जाने तारों ने सुना।
1: तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आपने गाया है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, ये रहा आपका देवानंद वाला गाना। अब आप बताइए, आप प्रश्न जरा गौर से सुने।
2: रेखा,
1: रेखा जी पर कोई भी गाना आप गाइए प्लीज।
3: ये बता,
1: हाँ बता दीजिए आप। रेखा जी पर कोई भी गाना, तारा जी, जो गाना आपके आंखों का तारा हो। क्या आपने कहा, ये तो माया मिमसा वाला गाना आपने तो गा दिया। रेखा जी का कोई भी गाना, अच्छा कोई बात नहीं, उषा जी आपकी सहायता करेंगी। कोई भी गाना गा दीजिए रेखा जी का।
2: ये कहा आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते।
1: जी हाँ, साथ साथ चल के आप अंताक्षरी की महफिल में आ गई है ना। कोई बात नहीं तारा जी, ऐसे ही आप कोशिश करते रहें। ओके, धन्यवाद।
4: धन्यवाद,
2: धन्यवाद आपको। वन लॉस्ट कॉलर,
1: चलिए।
2: हेलो,
1: समा नटखट है। इस समा में कौन आ गया?
2: नटखट है, और इस नटखट समय में कौन आया?
1: चलिए देखते हैं। हेलो।

0: हेलो, नमस्ते आप
1: नमस्ते
0: लोग
1: जी,
0: को.
1: नमस्ते.
0: क्या नाम है आपका?
1: मैं गीता हूँ, प्रणति पापाई से.
0: गीता जी, प्रणदीप पापाई से आपका स्वागत है. चलिए, आप
1: शुक्रिया.
0: पहला गाना गाइए जो आप बेहद पसंद करती हैं, गाइए.
1: हाँ, रात के हम सफर, थके घर जो चले, झूमती जा रही है सुबह प्यार की,

0: लूटी
1: बहुत ही अच्छा फिल्म एनी विन इन पेरिस का गाना है. ओके, अब आप गाएंगी जो उषा आपको बताएंगी.
2: अभिनेता जितेंद्र जितेंद्र पर
1: कोई भी गाना आप गाएंगी जितेंद्र जी पर. बहुत ही आसान है गीता जी. क्या बात है, गाइए.
0: याद नहीं, भुला
1: हाँ जी, गलियों में किस्मत के मारे निकल पड़े.
0: गलियों

0: बहुत ही अच्छा, और आपने बहुत ही सुंदर सा गाना गाया जीने की राह फिल्म से, बहुत ही सुंदर है। चलिए गीता जी, आपको बहुत धन्यवाद है, आपने भाग लिया। ओके, ऐसे ही भाग लेती रहें। धन्यवाद,
1: धन्यवाद आपको,
2: आपको भी।
1: ओके, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमारा जो बेटा है उसकी आवाज अच्छी
0: अच्छा,
1: है।
0: आपके साहिबजादे ने भी फोन, आप उन्होंने टिकटॉक द्वारा मैसेज भेजा क्या?
1: हाँ, साबिना है, हंस भी है, पिंक लिटीज नमस्ते आपको। और चलिए यहाँ पर शुरुआत में हमको फरमाइश मिली थी यहाँ पर सयारा का गाना, और मेरे ख्याल से आपको भी मिले
0: हाँ,
1: हैं।
0: बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है इस गाने के लिए, और उन्होंने कहा कि उषा जी के जबान में वो सुनना चाहती है ये फिल्म सयारा, जो कोर्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन के जो प्रधान है राम जी, साथ ही साथ रिश्ता जी, विश्व विजय, विलासा जी, उन सभी लोगों के लिए ये गाना आपको समर्पित किया जा रहा है हमारी ओर से और उषा जी की आवाज़ में। सुनिए।

0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद आपको उषा जी, आपने ये गाना टाइटल
0: और जिन लोगों ने इस गाने की मांग की है उनको हम कहेंगे बहुत धन्यवाद। वैसे हमेशा

0: हम कहते हैं कि 100 लोगों में से एक दो होंगे जो निगेटिव कमेंट करते रहेंगे,
1: ये तो होता
0: लेकिन
1: रहता
0: ये
1: है।
0: जो लाइव टिकटॉक है, लाइव प्रोग्राम है, हम तो करते ही जाएंगे क्योंकि हमें पता है आप कितना प्यार

0: नमस्कार। बुधवार 15 जुलाई 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक के तहत 48 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने 334 लोगों को गिरफ्तार किया है। नॉर्दर्न डिवीजन मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ और साउथर्न डिवीजन में तड़के चलाए गए। व्यापक अभियान के दौरान कई कुख्यात अपराधी को पकड़े गए। पुलिस ने इस कार्रवाई को पूरी तरह सफल अभियान बताया। अमरीकी उप सहायक विदेश मंत्री सारा ट्रॉटमैन 19 जुलाई तक मॉरिशस के दौरे पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य अमरीका और मॉरिशस के बीच व्यापार, निवेश और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करना है। दौरे के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। एग्रीटेरा में 2026 की कटनी शुरू हो गई है। इस साल 6,70,000 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल के 6,46,000 टन से अधिक हैं। इसके लिए कंपनी अपनी मशीनों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, जिसमें 2 नई कटाई मशीनों को शामिल किया गया है, ताकि उत्पादकता और सटीक खेती को बेहतर बनाया जा सके। और विदेश में अमेरिका द्वारा सैन्य ठिकानों पर नए हमलों के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने और क्षेत्र के अन्य तेल व गैस व्यापारिक मार्गों को भी ब्लॉक करने की धमकी दी है। पेश है अब समाचार विस्तार से। 48 घंटों से भी कम समय में ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक के तहत पुलिस ने 334 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल और इस बुधवार को सुबह 3 से 8 बजे के बीच नॉर्दर्न डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ और साउथर्न डिवीजन ने पुलिस की विभिन्न इकाइयों के सहयोग से अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस की इन कार्रवाइयों से कई कुख्यात अपराधियों, चोरों और अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार ये पूरी तरह से एक सफल अभियान रहा। काविंता पेसो, अदिति अवतार।
1: अबेकोम्बी स्थित मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुभाष धुमन उन अफसरों के साथ एक डिब्रीफिंग सत्र करते दिखे, जिन्होंने कल एक बड़े ऑपरेशन में भाग लिया था, जिसे थंडर स्ट्राइक नाम दिया गया। पोटली इलाके और देश के उत्तरी प्रांत में सुबह तड़के 3 बजे से 8 बजे के बीच कई छापे मारे गए, जिसके लिए अलग अलग इकाइयों के 72 अफसर तैनात किए गए थे। मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ ने यह अभियान नॉर्दर्न डिवीजन तथा कई अन्य इकाइयों के साथ मिलकर चलाया। इनमें सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट, डिविजनल सपोर्ट यूनिट, डिवीजन क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, स्पेशल मोबाइल फोर्स, स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट और पुलिस डॉग यूनिट शामिल रही। इस ऑपरेशन के तहत 177 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 24 लोगों को घरेलू हिंसा और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा के मामलों के लिए।
2: Donc, dans chaque division, il y a une assemblée de personnes qui wanted pour différents types d'offenses. Et que la police, dans ces différentes divisions-là, quand on gagne le support de manunité spécialisée, les permet d'autres augmentent notre capacité d'opération sur le terrain. Ça les permet d'autres accéder à différentes zones, les permet d'autres retracer les suspects qui sont recherchés pendant un certain temps. Et que surtout, avec ce genre d'opération, on nous lance un signal faux qui, peu importe que ça ait été, la police est capable de faire l'opération, est capable d'arrêter Banjimoun.
1: 32 को चोरी, 50 को अवैध रूप से रहने, 46 लोगों को अरेस्ट वारंट पर और 25 को अन्य अपराधों के आरोप पर हिरासत में लिया गया। डीएसपी सोहेली जालाम कहते हैं, आज सुबह 3 बजे से 8 बजे के बीच इसी प्रकार से थंडर स्ट्राइक अभियान के एक और मिशन के लिए कई इकाइयां दक्षिण में सदर्न डिवीजन की टीम की मदद के लिए सक्रिय हुई। 156 नई गिरफ्तारियां की गई, इनमें 118 वारंट के आधार पर और 38 गिरफ्तारियां चोरी, अश्लील हरकतों और पैरोल की शर्तों के उल्लंघन जैसे विभिन्न अपराधों के लिए की गई। इस तरह के ऑपरेशन से पुलिस ज्यादा तेजी और कुशल रूप से गिरफ्तारियां कर पाती हैं। ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक देश के कई अन्य इलाकों में भी जारी रहेगा। जाहिर है पुलिस की छापेमारी की तारीख और समय गुप्त रखा जाता है।
0: मिर्गी यानी एपिलेप्सी के लिए निर्धारित दवा प्रेगाबालीन का ड्रग उपयोगकर्ताओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के ठीक 6 बजे हैं।

0: एफसीसी द्वारा की गई जांच से स्वास्थ्य मंत्रालय की दवा सेवाओं में इस दवा की आपूर्ति को लेकर कई खामियां सामने आई हैं। आयात प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर की गई इस जांच के जवाब में दवा सेवाओं के प्रमुख ने स्वीकार किया है कि वे एक पुराने कानूनी ढांचे का सामना कर रही हैं और उन्होंने दवा क्षेत्र को विनियमित करने वाले कानूनों में संशोधन की आवश्यकता जताई है। कुणाल गुजी, अदिति अवतार।
1: हाइगाबालिन नामक दवाई का इस्तेमाल आमतौर पर मिर्गी यानी एपिलेप्सी के इलाज के लिए होता है, लेकिन अब कुछ लोग इसके नशे के असर के कारण भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। इस दवाई के आयात को लेकर एफसीसी की जांच में इसकी खरीद के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज विभाग के स्तर पर कई खामियां पाई गई हैं। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की एक्टिंग निदेशिका, जो पिछले 6 महीनों से ये पद संभाल रही हैं, वे कहती हैं इस दवाई के लिए प्रेस्क्रिप्शन की मांग होती है जिसके लिए वे मना नहीं कर सकती। उनके अनुसार जहां एक तरफ मंत्रालय ने स्थानीय स्तर पर फेगाबालिन को नियमबद्ध किया है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दवाई बिना प्रेस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर उपलब्ध है। बीबी वाहिदा गोपी कहती हैं, मॉरिशस में इस दवाई के प्रेस्क्रिप्शन को लेकर गलत तरीका चलता है। एक समय पर फेगाबालिन प्राप्त करने के लिए प्रेस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन ये देखा गया कि नौजवान और ड्रग्स लेने वाले लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो हमें बेहतर कंट्रोल के लिए इसे डेंजरस ड्रग्स एक्ट के स्केड्यूल 3 में शामिल करना पड़ा। एक कोटा होता है जिसके तहत होलसेलर्स को ये सप्लाई किया जाता है, जिसके लिए रिटेलर्स को बदले में उचित कारण उपलब्ध कराना होता है। इस स्तर पर हमें काम करना पड़ेगा ताकि इस प्रणाली को बेहतर किया जा सके। उनका कहना है कि फार्मास्यूटिकल उत्पादों के नियंत्रण से जुड़े पुराने कानूनी ढांचे के चलते इस विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि ये दवाई डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत नियंत्रित है, लेकिन इसकी बिक्री फार्मासियों के साथ साथ सड़कों पर तस्करी के तहत की जाती है। बीबी वाहिदा गोपी कहती हैं, एमओआरए द्वारा कायम एक डेटाबेस था जो फार्मेसी बोर्ड की मदद के लिए था, ताकि सप्लायरों और निजी फार्मेसियों के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हम तक नहीं पहुंचा है। अब हम जल्द से जल्द इसे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे कई समस्याओं का समाधान हो पाएगा। एफसीसी की जांच में रिकॉर्ड दर्ज करने, ट्रेसिंग और फॉलोअप की क्षमताओं में कमी आदि समस्याएं पाई गई हैं, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, ऑडिटिंग और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं पर गलत असर पड़ रहा है। एफसीसी के अधिकारी इब्राहिम रोसाई कहते हैं, इसके आयात को लेकर निगरानी और नियंत्रण की बड़ी कमी पाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर मैनुअल प्रक्रियाओं पर अति निर्भरता गलत है। उनके पास जरूरी साधन मौजूद हैं, लेकिन वे सही तरीके से स्थापित नहीं हैं। हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कायम करने की सिफारिश पेश की है, जो ये स्पष्ट बता सके कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। इस प्रणाली के कायम होने से मंत्रालय के स्तर पर कई समस्याएं सुलझाई जा सकेंगी। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस बात पर बल दे रहा है कि उसकी सिफारिशें लागू करना कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है। जांच के तहत ये भी सामने आया है कि कस्टम्स के स्तर पर बड़ी मात्रा में फेगाबालिन जब्त की गई है।
0: अमरीकी उप सहायक विदेश मंत्री सारा ट्रॉटमैन इस सप्ताह 19 जुलाई 2026 तक मॉरिशस के दौरे पर हैं। ये दौरा अमरीका और मॉरिशस के बीच व्यावसायिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने और हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करने के नए अवसरों का पता लगाने के लिए है। इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। सिंथिया मुतु रजनीबिकर।
2: अफ्रीकी मामलों के लिए अमेरिकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी सारा ट्रॉटमैन की उपस्थिति में आर्टेमिस के समझौतों का अनुसमर्थन मॉरिशस की ओर से किया जाएगा। इस तरह मॉरिशस एक शांतिपूर्ण एवं जिम्मेदार सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में अमेरिका और अन्य 69 देशों में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा सारा ट्रॉटमैन एक्विजिशन क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर में भी भाग लेंगी, जिससे कि सुरक्षा, संकट संचालन और अमेरिका तथा मॉरिशस के बीच मानवतावादी सहायता को लेकर लॉजिस्टिक सहयोग बढ़े। अपने औपचारिक दौरे के अंतर्गत अगले 6 से 9 दिसंबर 2026 के बीच लगने वाली अमेरिकी अफ्रीकी व्यावसायिक शिखर बैठक की तैयारी

0: को लेकर भी बातचीत की जाएगी। उच्च स्तर के सरकारी उच्चाधिकारी, कंपनी संचालक तथा अमेरिकी एवं अफ्रीकी निवेशक इस शिखर बैठक में भाग लेंगे। इससे व्यावसायिक एवं निवेश संबंध मजबूत होंगे, व्यावसायिक साझेदारी तथा आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहित किए जाएंगे। अन्य अहम बात, बागाटेल में नए अमेरिकी दूतावास स्थल का दौरा।
1: एमएसएम के अध्यक्ष जूली जोंगर ने पेंशन सुधार का मुद्दा उठाते हुए पेंशन प्रणाली का मूल्यांकन करने वाली विशेषज्ञ समिति के गठन पर टिप्पणी की। उनका मानना है कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उनको सुनते हैं।
2: Et nous avons les autres dîmes au sein de sa comité. Là, pour mener une réflexion bien en profondeur, nos réformes pensions et qui est un équilibre au sein de sa comité.
1: 2026 की कटनी शुरू हो गई है। अग्रितिरा में कटनी का काम 29 जून से शुरू हो चुका है। इस साल ग्रुप को लगभग 6,70,000 टन गन्ने के उत्पादन की उम्मीद है, जबकि पिछले सीजन में ये 6,46,000 टन था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रितिरा अपने कार्यों का आधुनिकीकरण जारी रखे हुए हैं। मौजूदा बेड़े में 2 नई कटाई मशीनें शामिल की गई हैं, जिससे उत्पादकता में सुधार और सटीक कृषि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सड़क यातायात में सुधार के उद्देश्य से 2 परियोजनाएं राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री के एजेंडे में शामिल थीं। थ्रियानो में अजय गणेश ने 43 मिलियन रुपए की लागत से बनी नई पेलखें थ्रियानो लिंक रोड का उद्घाटन किया। इसके बाद वे फ्लिकॉन्फ्लाक गए, जहां उन्होंने 160 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत वाली भविष्य की बायपास परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। और अब फुटबॉल की बात करते हैं। फ्रांसीसी टीम को स्पेन ने पूरी तरह से पछाड़ दिया और वे 2026 विश्व कप के सेमीफाइनल से बाहर हो गए। मंगलवार को खेले गए मैच में दबाव में दिखी फ्रांसीसी टीम, लागोजा से 2-0 से हार गई। इस प्रकार फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने से चूक गया है। मारिन रेजिजू, अरविंद बिसेसर।
3: Champions will play the World Cup final.
4: डालस में स्पेन ने क्लास दिखाया और ओले ओले गाने का और मौका मिल गया। न्यूयॉर्क में भी गा सकते हैं। फैंस बहुत खुश, क्योंकि शुरुआत से ही स्पेन की टीम का दबदबा रहा और मैच का कंट्रोल ये लोग ले चुके थे। और ऐसे में लुकास जी, जो थोड़ा घबरा गया, एक पेनाल्टी कंसीड कर गया लामिन यामाल पर, और 22वें मिनट पर ओयोज़ाबाल ने कोई गलती नहीं की, 1-0 से लाहौर आगे। दूसरे भाग में उसी तरह से शुरुआत हुई जैसे पहले भाग में, वही रिदम, वही खेल में रफ्तार, और फिर से स्पेन की टीम फ्रांस पर हावी हुई। एक बहुत ही सुंदर खेल ओल्मो का, और उससे गेंद जाता है पेड्रो पोहो के पास। स्पेन की टीम 2-0 से आगे। स्पेन की टीम और एक गोल स्कोर कर सकती थी, लामिन यामाल का गोल, जिसे ऑफसाइड के लिए रद्द कर दिया गया। इस मैच में फ्रांस की टीम जैसे फुटबॉल खेलना भूल गई थी, और उधर उन्हें साइमन को तनिक भी परेशान नहीं किया ले ब्लू ने। अब ये लोग तीसरा स्टार अपने पास नहीं रख पाएंगे, सपना चकनाचूर हो गया। मैच 2-0 स्पेन की जीत। अब रविवार को स्पेन अपना दूसरा फाइनल खेलेगा और दूसरा वर्ल्ड टाइटल जीतना चाहेगा, जबकि फ्रांस को छोटा फाइनल यानी तीसरे स्थान के लिए मैच खेलना होगा।
1: अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना आखिरकार विश्व कप में इंग्लैंड से होगा। एक तरफ मौजूदा विश्व चैंपियन है, तो दूसरी तरफ टोमास टुशेल के नेतृत्व वाली वो टीम है जो लगभग 60 वर्षों के इंतजार को खत्म करने का सपना देख रही है। फाइनल में जगह बनाने की जंग जारी है और इतिहास शायद एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है।
4: माराडोना का मशहूर हैंड ऑफ गॉड और लाजवाब गोल। मैच में टेंशन भरपूर। इंग्लैंड और अर्जेंटीना

0: अर्जेंटीना के बीच मैच होता है तो ऐसा ही होता है, क्लासिक मैच होता है इन दोनों के बीच। इस बार 2026 में कौन आएगा आगे ये देखना है। लेजेंडरी नंबर 10 अर्जेंटीना का अभी तक सपना देख रहा है कि लियोनेल मेसी फिर से वर्ल्ड चैंपियन बने और वो इतिहास में, वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला है। 21 गोल स्कोर कर चुका है, यहाँ पर भी स्कोर करना चाहेगा। लेकिन अर्जेंटीना सिर्फ अपने मेसी पर निर्भर नहीं करता, और ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं। डिफेंस में क्रिस्टियन रोमेरो, लिजांड्रो मार्टिनेज, इमिलियानो मार्टिनेज जैसे डिफेंडर हैं जो किसी भी अटैक को सह सकते हैं या फिर उन्हें तोड़ सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना एक ऐतिहासिक डबल पूरा करना चाहते हैं, यानी लगातार दो साल चैंपियन बनना। ऐसा सिर्फ ब्राजील ने किया था 1962 में। उसके सामने है इंग्लैंड के द थ्री लायंस, जो 60 साल बाद फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। यहाँ आने के लिए टोमास टूरेल के जवानों ने रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कोंगो को हराया, फिर मेक्सिको को, नॉर्वे को, और उनका आत्मविश्वास प्रबल है। उनके खिलाफ अर्जेंटीना की टीम को बच के रहना होगा। कप्तान हैरी केन के साथ साथ जूड बेलिंगम भी हैं, दोनों 6-6 गोल स्कोर कर चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है इंग्लैंड की टीम में वर्ल्ड कप में दो खिलाड़ी 6 गोल स्कोर कर पाए हैं। अटलांटा में ये मैच होगा। अब देखा जाएगा अर्जेंटीना या इंग्लैंड में से एक टीम जाएगी फाइनल में, जहां पर स्पेन पहले से इंतजार कर रहा है। दो महारथी लेकिन जगह सिर्फ एक।
1: विदेश की खबरों में, ईरान ने क्षेत्र में अन्य व्यापारिक मार्गों को भी ब्लॉक करने की धमकी दी है, क्योंकि अमेरिका ने सैन्य ठिकानों पर हमले की एक नई लहर शुरू की है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि जब तक अमेरिका अपने आक्रामक कृत्यों को बंद नहीं करता, तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र के अन्य तेल और गैस निर्यात चैनलों को भी बंद किया जा सकता है। नीतूषा जीहा।
2: ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिकी हमले खत्म नहीं होंगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा। तेहरान ने चेतावनी दी कि इस क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात तो या सभी के लिए उपलब्ध होगा या फिर किसी के लिए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम कागीबाबादी ने मंगलवार शाम को अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी के फिर से लागू किए जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि अमरीका ने दोनों देशों के बीच तय समझौते प्रोटोकॉल को प्रभावी रूप से समाप्त किया है। इस प्रोटोकॉल के तहत अमरीका ने ईरानी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का वादा किया था। हालांकि पिछले सप्ताह संघर्ष फिर से भड़कने के बाद तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 13 जुलाई सोमवार को ब्रेंट की कीमत 9% से अधिक बढ़ गई थी। इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में गुजरने वाले जहाजों पर 20% का टैक्स लगाने की योजना वापस लेने की घोषणा की, तब तेल की कीमतों में कुछ कमी देखी गई। ये प्रस्ताव तेहरान की उस योजना से प्रेरित है जिसके तहत वो इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना चाहता था, जबकि अब तक ये मार्ग निःशुल्क था।
1: और अब अंत में चली जाती है स्थानीय मौसम का हाल।
3: उत्तर पूर्व से पाए जा रहे बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और कभी कभी देश के पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल दोपहर बाद को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम 5:46 बजे

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय शाम के 6:21 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। नंबर 15 लाक्वाजे वाले दे प्रेत पोटलुई में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय प्रीतम जगलाल, जो लीली नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे कल सुबह 10 बजे उनकी मां श्रीमती किस्मतिया नीनोत के घर नंबर 15 लाक्वाजे वाले दे प्रेत पोटलुई से उठाकर सिपाही भोले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। एसएसओ लेन मोताबा में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती फुलबसिया रुतिया नायको, पैदाइशी नाम जिरपिया और जो राधिक नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके घर एसएसओ लेन मोताबा से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट नून। इंग्लैंड में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री ईश्वर दत्त बुस्तुन, जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। वे पहले बुस्तुन लेन लाफ्लोगा रहते थे। उनकी अर्थी शुक्रवार को सुबह सवा दस बजे उनके घर इंग्लैंड से उठाकर इंग्लैंड की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट 10:15। रेलवे रोड नोत्रदाम शुमेला में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुसमी काली, जो मैनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके घर रेलवे रोड नोत्रदाम शुमेला गल से उठाकर बामोशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल गुरुवार 16 जुलाई 2024 सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक ब्लूबे में और आसपास के इलाकों में, जैसे कि एवेन्यू कोडोनिये, एवेन्यू कारोंग और एवेन्यू जेग्रेट में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और गुरुवार 16 जुलाई 2024 सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रियांबेल, सुरीनाम, मोसलमान दनपत और सां ली सुर मेर रियांबेल में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道。

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

0: This is Radio Marxist.
1: 您好。
2: Assalamualaikum. Kim to Mauritius.
3: Namaskar.
4: ஸ்ரோதரந்தருக்கு ஹிருதயபூர்வக நமஸ்காரம்.
5: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
6: Radio Mauritius पर दिल से स्वागत है आप सभी का.
7: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर.
8: श्रोताओ, मन की ज्योत जलती रहे तो जीवन का हर मार्ग प्रकाशमय हो जाता है. तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं. कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम. हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें. हमेशा की तरह आपके चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान लाए हैं इस कार्यक्रम में. तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर.

श्रोताओ भजले प्रभु का नाम आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। चलिए गीतों का एक खूबसूरत सफर इसे हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे श्रोताओ मन की ज्योत वह दिव्य प्रकाश है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। यह ज्योत बाहर के दीपक से नहीं बल्कि श्रद्धा भक्ति ध्यान और आत्मविश्वास से प्रज्वलित होती है।

श्रोताओं, कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, आपके लाए हैं ये शुभ विचार। कहते हैं, जब मन ईश्वर के स्मरण में स्थिर होता है, तब भय, भ्रम और नकारात्मकता स्वतः दूर होने लगती है। भीतर का यह प्रकाश हमें सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। श्रोताओं, हमेशा की तरह।

भजले प्रभु का नाम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। जाने से पहले ये शुभ विचार आपके लिए। जब मन में आशा का दीप जलता है, तब कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती। इसलिए हर दिन अपने भीतर की ज्योत को प्रेम, करुणा, भक्ति और सत्कर्मों से उज्जवल बनाए रखें। तो चलिए, हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे। आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।

0: संगठनों घड़ी में लाले बखत रात के ठीक दो बजे बाद तू सुनते हो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन।
1: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Mauritius.
2: Continuous music.
3: RM3.
4: भोजपुरी
5: तड़का।
4: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा भोजपुरी तड़का।
6: गमट धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो
0: सब संगचारों के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम यहत और वन पर्सन रेडियो चैनल MBC रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन। आज बुधवार के रात 15 जुलाई 2026 तभी से लेकर रात के 11 बजे प्रस्तुत बात तो के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। मन करता को भोजपुरी गीत मांगे के टेलीफोन करा का जगो देवी जगो विद और बेशक हमने के साथ नाचब सा गावब सा कमरवा डुलावब सा संगे संगे और है प्रोग्राम से दुगो चैनल पर एक रेडियो मॉरिशस दूसरा का रेडियो मनोरंजन और ऑनलाइन सुनना चाहते हो तो दबाइए www.mbcrajo.tv फिर क्लिक करिए लिसन रेडियो मॉरिशस या रेडियो मनोरंजन। और अभी शुरू किया जाएगा बहुत ही प्यारा संगीत के साथ उरीद के तकारीबा है गीतवा गैले हवन। हाँ भाई दूरी गीतवा गैले हवन तो चल एक साथ सुने।

संगजा लोग हमने के जो मन है बड़ा चंचल है एगो प्लास नहीं रहेला बदलती रहेला त मन के चला काबू में रखे के मन बड़ा ही चंचल है एके काबू में नहीं रखबे त मन इधर उधर भटकते रही मन के जब काबू में कर लेब तब सकब कोनो काम करी बड़ा ही चंचल है मन कबू हाई बात सोचेला कबू हाउ बात सोचेला सोचते रहेला है मन जुन है तो अपन मन की कंट्रोल करिया हम के साथ दिया रिजमोशस रेडियो मनोरंजन पर अगला गीत सबसे मिल के लोलमन रोहित सिंह गीत वगैरह वन और यह गीत हम चलाओ तेईस खासम खास।

गीत चित्रा और ज्ञान विश्राम खती रहेलन मौदलबे सब विश्राम परिवार के नाम अनिता लाल जी मौदलबे सेवन अनिता फ्रीकॉन फ्लैग से और है गीत चलाओ अब जा सुदेवी जी के नाम सुदेवी जुन हवन बाकवा से हमने के साथ देवतवन और है गीत चलाओ अब जा खियोले की दीदी लालिता सब कुशल परिवार आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के सब राम रतन परिवार के नाम और जितना कोई भी रात के मन की सुनता है गीत तुलो के नाम भी सबसे मिल के लोलमन रोहित सिंह की आवाज़ में

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस
2: कोनो भी बिजनेस लेबा तो बिजनेस में कबो कबो प्रॉफिट होला, कबो कबो हानि होला, एक बिजनेस बुलाला। हमेशा प्रॉफिट खोजबा तो नामुमकिन है। हाँ, प्रॉफिट सकबा करे पर कबो लॉसो होला, प्रॉफिट लॉस दोनों होला। ये खातिर जो कोई बिजनेस करे रहा तो लोग जाने न सर कि हाई बिजनेस कोनो भी प्रकार के बिजनेस रही तो चेहरा सोच समझ के बिजनेस करके काहे के ओकर में MBC करब, पैसा लगेब, तो ऐसे न को बिजनेस करिए जोन से थोड़ा और पैसा मिली, थोड़ा आमदनी और बढ़ी। जैसे कि खाए पिए के बिजनेस या लोटो खरीद के बेचे के बिजनेस। तो खाए पिए के चीज़ तो हमेशा बेचाए, जब ले इंसान रही धरती पर और खाए पिए के तो चहला हो कि नहीं, और लोटो तो चहला एगो वाहन जो है हमने के सगरो घुमा के। तो दूगो बिजनेस जो खूब चलेगा, एगो है खाए पिए के बिजनेस और एगो है लोटो के किन के खरीद के बेचे के बिजनेस। पर और भी बिजनेस बा है, ढेर बिजनेस बा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है सब है। तो कोनो भी बिजनेस करब तो सोच समझ के बिजनेस करिए ताकि तोरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिली। अगला गीत डोले डोले डोले रे मना, डोले डोले डोले रे मना। सेकंड दिन जगह सैंक पर सकब SMS भेजे, याद दिलावत है सेकंड दिन पर तो लोग के SMS और फोन करके नंबर का जगह दे वो जगह विद सैंक। डोले डोले डोले रे मना है गीत रीता की नाम मोहतावा सेवन गर्दू को बहन रेणुका और अमृता खतीर और है गीतवा हम चलाओ अब जा ये सब संगत्या लोग खातिर जो भी हम के सुने कर रहता और सब सुने कर बच्चा बच्चे या टेलीफोन नहीं करके काहे काटे रह सब बोले है बड़ी बात मानस है ऐसे नहीं करिए जा तो प्रोग्राम सब की है तो एगो अनुशासन एगो डिसिप्लिन से होला सब काम कोई टेलीफोन करके काट दे वेलन सर वेरी बैड। हेलो
3: बेटा।
2: हेलो चाची ललिता, कैसे समाचार?
3: अच्छा बेटा, नमस्ते बेटा।
2: नमस्ते चाची, कैसे हो? सब ठीक?
3: सब कुशल मंगल।
2: आज लेता बड़ी जोरी रहल।
3: हाँ हाँ, आज बोलता रहल।
2: हाँ, और हाँ। बेशक कभी के याद करते हो क्या? हाँ। क्या क्या चीज मांगते हो?
3: है सौते वादा दिए बेटा, विशानी दीपा के गमत कराइला।
2: गमत कराइला? हाँ, के कर खातिर?
3: बहिन सुदेवी, ज्ञानी, छोटी दीदी, दादी प्रभावती, आत्माराम भैया, शुक्लाल मौसी खातिन और माला राम जियावन खातिन।
2: हाँ, और आज
3: दोहरो खातिन भाई।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आज के दिन अच्छा से बीतल ना?
3: हाँ बेटा, हाँ अच्छा।
2: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद टेलीफोन कर ला। और अगला गीत दो।

Dore dole re mana, dore dore dole re mana. Agi tua amni cerawati sesab sangat ya lukena jona bisnota radio mosha radio manoranjan. Or afes awan sampia se hai afes agi tua or katir mezabin plan debet se awan. Or Ibrahim Portu se bay abu kaise ba bakwa se bay abu kar garoli. और लेकर सब आबू परिवार के नाम दबिशा कर गीत सुन डोरे डोरे डोले रे मना क्षेत्र खिमिया गई मन और सकबत जाते रिफोने करे का जो दे हुई जो हुई सैंक पर या एस एम एस करिए सेकंड दिस सेकंड टेन सोनजी जीरो सैंक पर सेकंड दिस सेकंड टेन सोनजी जीरो सैंक पर

Dore dore dore re mana, dore dore dore re mana. हम जो दोरा तेरी से तलों के संगे संगे, अब हम तलों के वो कहानी सुना। अभी कहानी है तितली और छिपकली की। तितली यानी कि पापियों, छिपकली यानी कि लेजाओ। तो पापियों और लेजाओ की कहानी, तितली और छिपकली की कहानी। एक समय की बात है, एक

सुंदर बगीचा में रंग बिरंगे फूल पर एगो तितली उड़त रहल। वो तितली बड़ी सुंदर रहल। ओकर जुड़ी पंख रहल नीला पीला और लाल। और रोज फजीर के फूल पर मंडरात रहल, मीठा रस पियत रहल और खुशी से उड़त रहल। ओके देख के सब कोई प्रसन्न हो जाता रहल। तो वही रौदेवा में दीवार पर एगो छिपकली एगो लिजौ रहतल। तो वो पूरा दिन चुपचाप कीड़ा मकोड़ा के इंतजार करत रहल, ओके पकड़ के खात रहल। छिपकली अक्सर तितली के उड़त देख के सोचत रहल, काश हम भी है तितली की तरह सुंदर रहती और हमू शक्ति उड़े तो कितना अच्छा रहता। हम तो उड़े नहीं सके, हम तो खाई ले जाओ, हम ले जाओ खाली मिहाई में रह गया। तो एक दिन छिपकली तितली से बोलक, तू कितनी भाग्यशाली हुआ कि तू इतना सुंदर हुआ और तू सकेला उड़े। तो तितली मुस्कुरा के बोलक, सुंदरता अच्छा है लेकिन हर जीव के अपन अपन विशेषता बा। कोई सकेला उड़े, कोई सकेला घोंची पर चढ़े। जैसे कि तू सकेला दीवार घोंची पर चढ़े पर हम नहीं सकेला इसे दीवार पर चिपकल रहे, पर तू सकेला भगवान हमके दिलक बा एगो क्वालिटी और वह हम सकेला उड़े। और छिपकली जब सुनलक तो छिपकली के मन में एगो जालूजी आल कि काश ओके तितली की सुंदरता मिल जाता सकत उड़े। तो का करलक, वो माने करलक, वो खुदलक तितली के पकड़े के। तो तितली तो बड़ी मालिन रहल, तो जैसे देखलक कि छिपकली खोजा के पकड़े के, तो तितली उड़ के भाग गल। और है जो छिपकली है वो मियाई पर से नीचे धराम से धरती पर गिर गल। ओके घाव लगल। तो तितली वापस आके ओकर से बोललक, मित्र दूसरों के अच्छाई से जो आदमी जालू करेला ओकर है ये नतीजा होला। प्रकृति सब कोई के अलग अलग क्वालिटी दिलक बा। ऐ तो तोरा कहे चाहे जालू है कि हम सकीला उड़े, हम सकीला रस पिए, तो जालू काहे करेला। तो उ दिन से जो है छिपकली के एगो लेसों मिलल कि कोई के सुंदरता के देख के नहीं चाह जले कि सब में अपन अपन क्वालिटी बा। और ये कहानी से इस सीख है कि जो आदमी दूसर के जालू करेला वो कबो आगे नहीं बढ़ेला। हर जीव के अपन अपन पहचान और महत्व बा और संतोष और आत्मविश्वास ही सच्चा खुशी के आधार है। तो कहानी बड़ी जुड़ी रहल तितली और छिपकली की। तितली यानी कि पापियों और छिपकली यानी कि लिजार। अभी रात के 9:25 हुआ था और अगला गीत चलाओ अब गमत करे जाए बिस्वानी जी पो आ गई ले वन गीत। और एगो संगतिया बारा इनको मिल अब जा। हेलो हेलो हेलो। हाँ टेलीफोन नहीं करके बात नहीं कर रहा। मैं ऐसी ब्रावो, इसने कर दिया। अच्छा बा का बोल बा भैया। और अगला गीत पूर्णिमा फुकीरा और सब परिवार के नाम से लिए गीत तो आप प्यार से। और है गीत हमने चलावत ऐसा सब संगतियालों के नाम, धर्म गंगू भाई एदू रोसाई रसूल विरापेन दीना प्रतिमा शोभना और सैंटोबै SSS कॉलेज जो दक्षिण में बा वहाँ के सब अध्यापक टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट्स और रेक्टर मिस्टर रूबेन मुनसामी के नाम भी गीत चली गमत करे जाएला। और जितना निकालो कभी उनकी सुना था और इस सेमैन देने सेमैन है एग्जाम के मॉक एग्जाम हो जाए तब लेंदी से कौजे एक महीना के कौजे में रह सब अध्यापक और स्टूडेंट्स सभी का दिल बों को आज जितना लिखा लोग अभी एग्जाम में करा था घाट नेफ घाट थ्रेज घाट नेफ घाट हाँ घाट नेफ घाट ओं सा घाट थ्रेज अभी मॉक एग्जाम करा था उनसे तो बों को आज। और दो तीन गो पापी बा आज रहल काल भी रही बीफे के और सुख के और सुख के सब पापी फिर जाए और लेंदी से कौन से मेरा बात है। चलो सब स्टूडेंट्स और अध्यापक लोग के नाम है गीत गमत कर जाएला। चाची लाइट कुशल गीत हो रो नाम

और अब कुछ बॉलीवुड न्यूज हो जाए। जी हाँ, कुछ दिन पहले यानी कि 11 जुलाई के मशहूर गायिका एस जानकी के निधन हो गए। वो कर्नाटक में 88 साल की आयु में कर प्राण निकल गल। वो अस्पताल में रहल और ओके कॉर्डियस आरएस होल और डॉक्टर लोग बचाए कोशिश कर लग पर सफर रहलन कर मृत्यु हो गल। और उनका निधन पर भारत के संगीत और फिल्म जगत से में शोक के लहर दौड़ गल। चारों ओर ढेर मना कलाकार जकर में रजनीकांत, कमल हसन और अन्य प्रमुख हस्ती शामिल रहल। ओके गेलन सर श्रद्धांजलि देवे कर अंतिम संस्कार मैसूर के राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होल। और एस जानकी अपन 6 दशक से अधिक के लंबे कार्य में 1000 गीत गैले हवन, भारतीय संगीत जगत पर अमित छाप छोड़ गल हवन। और बेशक एस जानकी जुन है एगो बड़ा गायिका रहल, फीमेल प्लेबैक सिंगर और पूरा नाम रहल शीतला श्रीनामूर्ति जानकी। और सबसे महान पार्श्व गायिका में रहल उ। जन्म 23 अप्रैल 1963 के आंध्र प्रदेश में हो रहल और मधुर आवाज़ भावपूर्ण

गायकी और कई भाषा में वो गीत गैली रलन और ओके प्यार से साउस की नाइटिंगेल भी बोला तरंजा। और बचपन से ही जानकी जी को संगीत में गहरी रुचि रहल और कम उम्र से वो गीत कुमोसिकल गायके और एस जानकी अपन लंबी कार्यों में 20,000 से अधिक गीत गैले हवन कर में तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड हिंदी ओडिया बंगाली मराठी गुजराती तेलुगु और अन्य भारतीय भाषा में गीत गैले हवन। ओकर कार्य लगभग 6 दशक तक चलल और ओकर प्रसिद्ध संगीतकारों और गायकों के साथ काम करलन और उनके ढेर मना पुरस्कार भी मिलल। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में 4 बार उनके मिलल और विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक फिल्म पुरस्कार भी मिलल। संगीत जगत में जुनह एस जानकी के ढेर मान सम्मान मिलल। और अब सुनब जा अगला गाना, जी हाँ रेनबो एल्बम से ओ बलमा। जी हाँ, बहुत ही प्यारा संगीत और है गीत अच्छा होते। इससे हमने निशान सिंह चुबा के नाम, रहन थी को कर पत्नी को बेटा बेटी और सब चुबा परिवार के नाम, उमा जगनायक लू हवन लिस्का जी से कोई बेटी दृष्टि को दामाद चीजों फोन लोग सब बहादुर परिवार के नाम और उमा जगनायक को बेटा और पटु औंगलितिया में हवन है गीत लोग के नाम भी बहुत प्यार से। और है गीत हम चलावते इस रूबी के नाम, रूबी चुनह ओकर घरोला और दुगो लड़का लोग खातिर डॉक्टर अंजू के से मंगेतर खातिर और निवेन वेंकटा स्वामी हमके सुनत हवन तिवेन वेंकटा स्वामी है गीत तोहरों नाम बहुत बहुत प्यार से। और जितना कोई अभी कोशिश करता थोड़ा लाइन ना मिलता तो है गीत तोहरों नाम। और एगो ऐसे में सावता है गीत चलावती नानी दीपा खातिर नाना नंद जो यूके में हवन वाकवा से गोश्रोता भी SMS कर लन सब यूके में कुछ जो परिवार लोग बा वो लोग खातिर भी गीत चली ओ बलमा। चले एक साथ सुने

रात की 9:40 हुआ था। तू सुन तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन प्रोग्राम भोजपुरी तड़का रात के 11 बजे ले। और अब हमने थोड़ा सुन बात कर अब सब प्याज के बारे में। तब प्याज जो है वो एगो सब्जी और एगो फल भी है। भारत में प्याज के लोग फल लिखा खालन सा, जैसे हमें कोई आप खाला सा तो लोग प्याज के फल लिखा खालन सा। और है जो प्याज है कर में ढेर पौष्टिक तत्व बा, विटामिन से बा, विटामिन बेसिस बा, पोटाशियम बा, फाइबर बा, एंटीऑक्सीडेंट बा। और प्याज खैला से हमने के जो शरीर में जितना रोग रहेला वो दूर रहेला। और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमने की लिखिया खातिर अच्छा है। और प्याज जो है जब प्याज कर बड़े लिखा औंक लहरेला तो कर में तत्व है वो जो औंक साफ करेला था जो लोड चुएला। प्याज जब करवा जब भाई लहर से औंकवा चुएला लोड चुएला तब जान जी बक्की हर औंक नितवाई करा था। और डाइजेशन में साथ देवेला जब हमने भात खाएला सा या कौन चीज खाए के अगर अच्छी तरह से जगह नहीं होला तो जब प्याज खाइब तो वो तुहर डिजेशन की अच्छी तरह से मदद करेला। और प्याज जो है वो हड्डी के लिए भी बहुत लाभदायक है। जो आदमी के हड्डी हड्डी में दुलिया होला और तो वो लोग प्याज खा लन से। और प्याज जो है वो तरकारी के स्वाद बढ़ावेला। अब जो है प्याज जो है ये ढेर प्रकार से इस्तेमाल होला।

शायद ढेर कोई खैले होई प्याज के भिंडाई। हाँ, प्याज का अचार भी बनेगा, प्याज तरकारी में से भी होला, सलाद में से भी होला, गातो जो जैसा खैले हो ना प्याज के गातो कैसे अथी रहेला पकौड़ा रहेला भजिया, तो गोल गोल प्याज काट के बेसन में डाल के सब बता रहे या तो ज्वाइयों और ज्वाइयों जो है प्याज जो है सब तरकारी में चल रहा है, दाल भाजी कोनो चीज़ में भी डलवा तो वो उपयोगी है। तो ढेर लेका लोग प्याज नहीं खा लें सर, पर प्याज अच्छा है स्वास्थ्य खातिर है, ज़रूर खाया जा। अगला गीत खुशी के दिन नीरज गुप्त मधु गीत अगले हो ना गीत हम चाहते जिपोस के उदय दनी राम के नाम प्रीतम राज्य मिला सब बच्चन परिवार के नाम किशन गुरिया हेलो गीत तोहरों नाम इंदिरा चिंताराम मोतालोंग सेवन और बेटा बाल गोपाल और अजय और पूनम चिंताराम उस खाली में होन सर दीपा और केविन दुखित हवन कहाँ दाम है तुलों के नाम तुलों के लेखा के नाम और सब तिवारी परिवार और सब दुखित परिवार के नाम रंबा हवन स्विट्जरलैंड से गीत और खाते तोहर बेटी लोग तोहर घरोला और जानकी परिवार जो गुडलैंड रहे लंजा और है गीत हमने चलावते सा आशा जानू के नाम आप रहेलन को तेज बहुत बहुत प्यार से माँ कुमारी फिर दीदी आरती दीजाजी शुभम और है गीत सब और जे फैमिली के सदस्य के नाम खुशी के दिन

संगतिया लोग बोल सर कि जैसे जैसे हमने के उम्र बढ़ते जाला वैसे वैसे हमने के जो मेंटल कैपेसिटी है वो कमती होते जाला हमने के जो कैपेसिटी मोटार हो कमती होला जाला और हमने के जो शरीर में शक्ति है वो भी धीरे धीरे कमती होते जाला और जैसे याद कर जब तोरा जीवता रहल कितना शक्ति रहल तो लोग के शरीर में और आज देखा कितना शक्ति रगल बा हो कि नहीं तो ये सब समझ में होला है जब छोटा रब कैसे हम किसी हल्का फुल्का रहेला फिर जब बर्फ से ऐसे हम किसी को डेवलप होला पर समय के साथ जैसे बोली कि जब लास्ट में आप सकते कहते लास्ट मोटे हो ही जाए तक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मोटे होला और जैसे बोली हमने की मेंटल कैपेसिटी पागे ही नहीं रहेला जैसे कि एगो लेकर एगो जन जो ओंस कैंसों सीजों बा और हम इनके लास्ट भी वो कहाँ सेकंड में तो ढेर अंतर बा हो कि नहीं तो उम्र चाहे कितना भी बड़ी पड़ती हो जो है अच्छा काम करिए और हमके साथ देते हैं एमबीसी रेडियो मॉरिशस और एमबीसी रेडियो मनोरंजन पर अगला गीत समझी के लगल हिचकी गीत सब संगतियारों के नाम जो हमके सुना जाए बखत रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर खासकर राधा राधा के नाम राधा की ओर से सूरज खतेर और ये लोग हमसे कनाडा में हमने के सुना तो बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना को अभी भी रेडियो सेट ऑन कर लगभग और सोचे तक कौन प्रोग्राम मत बता दे रहा था प्रोग्राम भोजपुरीतर का और जय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे रे चला अगला गीत सुने समझी के लगल हिचकी

देखो मेहनत ही इंसान खातिर कोनो भी चीज़ डिफिसिल या इम्पोसिबल नहीं बा। अगर तोहर में मेहनत और लगन से तू काम करब तू हर परीक्षा में सकब सफल।

से काम करते रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और अब सुनब जा सुम्बावती दुमन गावल गीत ओ बलमा। और एक गीत चाहते इस रतन निहाल के नाम गौबे से कर पापा कर पत्नी करुणा और सब निहाल परिवार के नाम। और है गीत हम चाहते इस जितना कोई भी नाइट शिफ्ट करता है नाइट शिफ्ट में काम करता वन सा वो चाहे अस्पताल विभाग में हो स्वास्थ्य विभाग में मृत्यु स्टेशन में पुलिस विभाग में फायर सर्विसेज में कॉल सेंटर में जहाँ कहीं भी काम करता है उनके सोफे लोग हमने की सुना जाता है गीत तोहरों नाम। चल एक साथ सुने हैं गीतवा और सुमावती दुमन गईले वन गीतवा के शीर्षक है ओ बलमा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ
1: RM3 रेडियो।
0: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का
2: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमर, धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

टन टना टन टन टना टन बजेला थरिया। और जब शादी होला त दिमाग के जन्ह दुल्हा दुल्हन आके साथ फेरा लेवेलन सब के सतपति बुलाला। तो एगो महत्वपूर्ण एगो एगो विधि है कि दुल्हा दुल्हन आके साक्षी मान के अग्नि भगवान के कि हर जन्म में वो लोग वादा करेला कि वो लोग के जीवन साथी हो व्यक्ति बनी जेकर से वो लोग शादी करता।

शादी जो है खेल नहीं है, कोई बाजनात नहीं है। शादी जो है दफे से आइए है तो अभी ढेर कोई जो शादी नहीं कर लगभग घर सोचा तो कि अगला साल या आने वाले साल में शादी करेगी तो सोच समझ के शादी करिए, कहे कि शादी जीवन भर के साथ है। तो जब शादी करवाए को व्यक्ति से तो थोड़ा छा आपका साथ निभाए कि जीवन भर। हाँ तो हमेशा याद रखिए सुभेला दोनों के जोड़ी जैसे श्री राम और सीता। तो सजे पात हरी भाई गीत हरी हरी पारस कहानक के गावल गीत आई और एक गीत चरावती शोभना खातिर। शोभना बहुत बहुत प्यार के साथ एक गीत और नाम और तुम्हारे सब परिवार के लिए। और अभी है ये गीत चली मिंटा के नाम। हेलो मिंटा, मिंटा गीत और घरोला तो डुगोले क्या खातिर भी बीना भैरव भगी तो घरोला तो डुगो बेटा और सब भैरव परिवार के नाम। और चलक साथ सुने सुबेला दोनों के जोड़ी जैसे श्री राम और सीता।

हमने अक्सर भुला जाए सर कि हमने के शरीर जो है एक रोज सर्विसिंग होला। सर्विसिंग के मतलब कि हर एक महीना के अंत में अगर एक बार तो डॉक्टर लगे जाइब जाके एगो एक्स करेब या डॉक्टर से एग्जामिन करेब तो अच्छा है क्या कि सकब जाने के कोनो बीमारी भी हो तो सकब वो बीमारी के नियंत्रण में लाए पर ढेर कोई डॉक्टर लगे नहीं जाला और एकाएक सुनला सर कि फलना व्यक्ति गिरल तो ऐसे हो गल तो उसे हो गल खातिर चाहेला अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दे के तो छोटा लोग जाए तो काम करे सर पर महीना में कम से एक दिन निकलिए अपन स्वास्थ्य खातिर डॉक्टर लगे जाइए जाके देखिए कि कोई ना प्रॉब्लम स्वास्थ्य के लेके कि नहीं ये अच्छा थी इसे जनब कि हमके आसान तो कैसे होगा कहे कि हमके जो है लाश बढ़ते जाला और जब लाश मोते हुए जाला तो हर प्रकार की बीमारी भी आवेला अब थी कोनो कोनो बीमारी खाई में आवेला अब ढेर लागस की चीज़ खाई बात औते भूसी हो जाए है ऐसे न देखिए खाती बोल ऐसा कि बोल ऐसा कि जब तू भोजन करता हुआ तेरे को बैलेंस डाइट के भोजन करिए संतुलित आहार। रात के 10:26 चलग लगी सुनम जा फुलिया ललिता जलसा ग्रुप के साथ और है गीत हम चलावती से विशाल की ओर से ओकर घरोली ओकर दुगो ओकर तीन गो लड़का और सब परिवार के नाम और है गीत चलावती से पूनम के नाम पूनम और रक्षा के नाम जो हमके साथ जुड़ल हवन आशा बहनी है गीत और खातिर तुहार घर वाला तुहार लड़का लोग खातिर और सब बहनी परिवार के नाम फुलिया।

रिद्धि मॉरिशस और रिद्धि मनोरंजन के श्रोता लोग, साजन और साजन माया रामदीन के गावर हरित गीत के संगे भोजपीता का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था। कुछ ही सेकंड में रात के 11 बज जाए, ठीक 11 बजे सुन बजा सुनहरी पल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से कल फजीर के 6 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की दोनों की मुलाकात हुई शामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे ले MBC रेडियो मॉरिशस पर। और एक मुलाकात तक हमने की इजाजत दें और जी प्रताप सिंह की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते और सलाम, शुभ रात्रि, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: A very good evening to all of you, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, और दिल से स्वागत है आप सभी का सुनहरे पल में सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। मैं हूँ आपकी ही दोस्त, आपकी आजे गिनिशा, जो साथ निभाने आई हूँ रात के 12 बजे तक। वैसे दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें किसी तस्वीर में नहीं बल्कि किसी पुराने गीत में छुपी होती हैं। एक धुन सुनते ही बचपन याद आ जाता है, माँ की आवाज़, पापा की मुस्कान, दोस्तों की शरारत और वो सुकून भरे दिन। जी हाँ, आज के अगले लिखे एक घंटे में चलिए फिर से उन यादों को जीते हैं। तो चाय का प्याला ले लीजिए आप अपने हाथ में, दिल को आराम दीजिए और तैयार हो जाइए पुराने बॉलीवुड के हसीन नगमों के साथ एक खूबसूरत सी सफर के लिए।

0: वैसे देखा जाए जिंदगी में हर गाना सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते हैं, उसके साथ जुड़ी होती है एक कहानी, शायद किसी की पहली मोहब्बत, किसी की पहली मोहब्बत की या किसी की पहली मुलाकात की, या फिर वो दिन जो आज भी दिल के किसी कोने में हमने दबा के रखा है लेकिन फिर भी जिंदा है। और आज हम वही यादें दोबारा महसूस करेंगे। दोस्तों, दिल को हल्का कर लीजिए, हम तो चाहते हैं कि आप बस मुस्कुराइए और पुराने बॉलीवुड के उन अनमोल गीतों के साथ जुड़ जाइए जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गया है।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

तो कैसा लगा ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन सर जो आप लोगों के लिए हम पेश कर रहे हैं सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर। हम तो बस चाहते हैं कि आप सुकून से हमारा साथ दीजिए इस खूबसूरत सी सफर में, क्योंकि आज की भागदौड़ की जिंदगी में अगर कहीं सुकून मिलता है तो वो है पुराने गीतों की मधुर धुनों में। इन गीतों में एक अलग ही जादू होती है जो दिल को छू जाते हैं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आता है। तो बस दिल से सुनिए, महसूस कीजिए और इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनिए सिर्फ और सिर्फ किनिशा के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

वैसे दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ गीत कभी पुराने क्यों नहीं होते हैं? कुछ गीत कभी पुराने क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें सिर्फ संगीत नहीं होता है, उनमें जज्बात होते हैं। हर लफ्ज की कहानी होता है, हर सुर किसी की याद दिलाती है। और आज सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वही अमर नगमे जो हर जनरेशन को पसंद है। गिनिशाओ का साथ दे रहे हैं और ये सफर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

बिल्कुल दोस्तों, शाम होते ही पूरा परिवार रेडियो के पास बैठ जाता था और हर गीत के साथ एक नई याद बन जाती थी। आज रेडियो मॉरिशस पर हम वही एहसास दोबारा जिंदा करेंगे। बिल्कुल जी, सुनहरे पल में जहां हर गीत दिल से निकलकर दिल तक पहुंचा देते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आप दिल से महसूस कर रहे हो।

तो कैसा लगा आज का ये खूबसूरत सुनहरे पल जो बड़े टाइम लगाकर कीमती समय निकालकर चुन चुन कर लेकर आते हैं हर एक नगमे आपके लिए। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, हम वापस जरूर आएंगे एक और सुनहरे पल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना, प्यार बांटते रहना और बस शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट।
0: राइट।